बल दिवाहे गुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी के पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जस डठ सब दुख जाए। तेक बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवे ताए। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जे। सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहेगुरु बोलो जे। पंजा प्यारिया सोहा साहिबजादिया चालिया मुकटिया हठिया जापिया तापिया जिन्ना नाम जपिया वंड छगिया। देग चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता। तिना प्यारिया सच्यारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु बोलो जे। जिन्ना सिंगा सिंगरिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए। खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आ रिया नाल चराए गए। गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया। सिखी केसा सवासा नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु बोलो जे। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धर के बोलो जी वाहेगुरु बोलो जे। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचे आ रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीता। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाहा दान परुसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इसनान। चौंकिया झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे। सिखा दा मन नीमा मत उच्ची मत पात दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जियो। श्री ननकाना साहिब अते होर गुरुद्वारिया गुरधामा दे जिन्ना तो पंथ नू विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान। खालसा जी नू बगसो हे नमाने।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨਾ

0: ਕੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਕਿਸਨੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਕਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ
1: ਕੋਈ ਗਾਵੇ।
2: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣੀਏ ਸਮਾਚਾਰ।
3: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਅਲਕਾ ਸਿੰਘ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारी के विश्व के नवनिर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान की शुरुआत और ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी।
4: 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। समारोह के दौरान 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर द वर्ल्ड रिन्यूअल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति यूथ फॉर विकसित भारत अवेकनिंग इन द स्ट्रेंथ फॉर नेशन बिल्डिंग अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगी। महेश सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, बड़ौदा।
3: इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
5: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
3: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB Show

0: पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय उद्योग जगत से केवल कारोबार का आकार बढ़ाने की बजाय सुदृढ़, सुशासित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंपनियां बनाने पर ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण गुणवत्ता आधारित होना चाहिए और इसके लिए कॉरपोरेट क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास पर अधिक निवेश करना होगा। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के कार्यक्रम में कल वित्त मंत्री ने कहा कि कंपनियों को अपने यहां या शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी के माध्यम से R&D पर खर्च बढ़ाना चाहिए। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को मामला लंबित रहने के दौरान न्यायालय के दस्तावेजों को सोशल मीडिया पर साझा न करने की चेतावनी दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया कि माल्या ने जांच एजेंसी का हलफनामा औपचारिक रूप से प्रस्तुत होने से पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। मिजोरम के लोंगतलाई जिले की एक स्ट्रॉबेरी उत्पादक महिला जेट टी लालरी थांगी को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन संस्था द्वारा FAO 100 वीमेन हीरोज इन एग्री फूड सिस्टम्स एंड रूरल डेवलपमेंट के रूप में सम्मानित किया गया है। ये सम्मान अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 का हिस्सा है, जो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा शुरू की गई एक पहल है। संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों पर विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग और मनमाने ढंग से हिरासत में लेने का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस महीने की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 63वें सत्र को संबोधित करते हुए वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तान और भारत के सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों पर सरकारों की अलग अलग प्रतिक्रियाओं को उजागर किया। जापान एशियाई खेलों में आज भारत की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और मीराबाई चानू पदक के लिए दावेदारी पेश करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से ए आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। ज्ञान अमृत

भरत जी को चित्रकूट के मार्ग पर अग्रसर होते देख देवराज इंद्र के मन में जो सोच और चिंता हो गई थी, देवगुरु बृहस्पति के शीतल वचनों से उसका शमन हो जाता है। यमुना तट पर पहुंच प्रेम विह्वल भरत की आंखों में प्रेम और व्यथा के आंसू उमड़ आते हैं। श्री राम के विरह रूपी सागर में डूबते उतराते उनका विवेक जागृत होता है कि शीघ्र ही उन्हें अपने आराध्य के दर्शन होंगे। निषाद राज की सेवा और सहायता से उन्हें पूर्ण संतोष मिला है। मार्ग में जहां जहां श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण ने विश्राम किया था, उन स्थानों को वो श्रद्धा भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। आसपास के गांवों के स्त्री पुरुष भरत का रूप और भ्रातृप्रेम देख परम आनंदित हैं।

रंगली धरती का वेला रहेगा दोपहर 2:30 बजे। अज के इस प्रोग्राम विच तुसी ओम प्रकाश के लोक गीत सुनोगे। असी अपनी दूजी सभा के प्रोग्राम लैके हाज़र होवांगे शाम 4:02 ते तुसी सुनोगे सदाबहार गीत, जिस विच पुरानी हिंदी फिल्मों चो लए गए गीत पेश किते जाणगे।

0: ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਖੇਤੀ ਹਾੜੀ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਜਸ਼ਨਜੋਤ ਕੌਰ। ਸ਼ਾਮ 7:10 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨ ਸੇਵਾ ਸੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ। ਹਿੰਦੀ ਵਾਰਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਵੀ ਰਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦਿਨਕਰ ਸੁਣੋਗੇ ਸ਼ਾਮ 7:45 'ਤੇ। ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮ ਜੁਲਕਾ। ਰਾਤ 8:00 ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਸੀਨ ਹੈ। ਰਾਤ 9:00 ਨਿਊਜ਼ ਐਟ 9 ਅਤੇ 9:15 ਸਪੋਟਲਾਈਟ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਝਲਕੀਆਂ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ ਰਾਤ 10:00 ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਰਾਤ 10:20 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਚਾਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਣੀ
1: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੰਪ੍ਰਤੀ ਵਾਰਤਾ ਸ਼੍ਰੂਯੰਤਾਮ ਪ੍ਰਵਾਚਿਕਾ ਰਚਾ ਝਾ। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य गुजरातस्य वडोदरा नगरे महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालयस्य 75वें वार्षिके दीक्षांत समारोहे भागं भजिष्यति। समारोहावधौ राष्ट्रपति पदासीनया मुर्मू वर्यया 600+12,000 विद्यार्थिभ्यः उपाधयः प्रदास्यति। स्नातक स्नातकोत्तर कार्यक्रमेषु शैक्षणिकोपलब्धिभ्यः सा विद्यार्थिभ्यः सुवर्ण पदकानि अपि प्रदास्यति। तदनन्तरम् असौ वडोदरा नगरे ब्रह्मकुमारीज इति संस्थायाः ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। कार्यक्रमस्य अन्तर्गते सा विश्वस्य नवनिर्माणाय आध्यात्मिक जागरणम् इति परियोजनायाः उद्घाटनं करिष्यति तथा विकसित भारताय युवा राष्ट्र निर्माणाय आन्तरिक शक्तेः जागरणम् इति अभियानस्य दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन शुभारम्भं करिष्यति। राष्ट्रपतिः गुजरातस्य त्रिदिवसीय यात्रायाम् अस्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः ह्यः गुजरातस्य एकतानगरे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इत्यस्य भव्य पृष्ठभूमौ आयोजिते समारोहे भारतीय चलचित्र क्षेत्रस्य प्रमुख प्रतिभाभ्यः 24,000+ वर्षस्य 270वें राष्ट्रीय चलचित्र पुरस्कारान् प्रदत्तवती। चलचित्र जगतः जनान् संबोधयन्ती राष्ट्रपतिः मुर्मुः उक्तवती यत् चलचित्रं भारतस्य समृद्धां सांस्कृतिक वैविध्यतां प्रतिबिम्बयति तथा विभिन्न भाषाणां प्रादेशिक परिप्रेक्ष्यानां राष्ट्रियाभिलाषाणां च मध्ये सेतु रूपेण कार्यं करोति।
2: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़े लोग उपस्थित है। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं।
1: समारोहे सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव घोषितवान् यत् राष्ट्रीय चलचित्र पुरस्कार समारोह अधुना देशस्य प्रमुखेषु पर्यटन स्थलेषु आयोजयिष्यन्ते। सः राज्येभ्यः केन्द्र शासित प्रदेशेभ्यश्च भविष्ये पुरस्कार समारोहाणाम् आतिथ्याय प्रमुख स्थलानां चयनं कर्तुम् आह्वानं कृतवान्। समारोहे राष्ट्रपति वर्यया देशस्य आहत्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः आगतेभ्यः 92 पुरस्कार विजेतृभ्यः सम्माननं प्रदत्तम्। प्रसिद्धः कन्नड

0: नेता अनंत नागः भारतीय चलचित्र क्षेत्रे पञ्चदशकाधिक काल पर्यन्तं प्रदत्तस्य उत्कृष्ट योगदानस्य कृते प्रतिष्ठितेन दादा साहब फाल्के पुरस्कारेण सम्मानितः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्यां उडुपी इत्यत्र श्री पेजावर अधोक्षज मठस्य श्री श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामिना अन्यैः गणमान्यैः च सह मिलितवान्। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदिना पद्म विभूषण यतिकुल चक्रवर्ती श्री विश्वेश तीर्थ स्वामिनः जन्म शताब्दी समारोहस्य प्रतीक चिह्नस्य अनावरणं कृतम्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् श्री विश्वेश तीर्थ स्वामिनः भक्त्या ज्ञानार्जनेन सेवया च परिपूर्णं जीवनम् असंख्य जनान् निरन्तरं प्रेरयति। सः उक्तवान् यत् तस्य जन्मशताब्द्याः उपलक्ष्ये क्रियमाणाः विविधाः उपक्रमाः तस्य महनीयादर्शान् अग्रे नेतुम् अधिकं साहाय्यं करिष्यन्ति। भारतर्तुविज्ञानविभागेन आगामिषु द्विदिवसेषु छत्तीसगढ़ ओडिशा तटीय आन्ध्रप्रदेश तेलंगानानां पृथक् पृथक् स्थलेषु प्रबलातिप्रबलवृष्टेः सम्भावनां दृष्ट्वा रक्तवर्णपरा सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से यह आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। इस वेले सवेर के 7 बज रहे ने। पेश ने हुण तक दिया मुख खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात विखे 72वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड प्रदान किए। प्रसिद्ध अदाकार अनंत नाग नू वकारी दादा साहब फालके अवार्ड नाल नवाजिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नशीले पदार्थों खिलाफ एक सख्त ते फैसला कुन वार करन दा समा आ गया है। कहा कि 2029 तक सरकार भारत तो नशीले पदार्थों के व्यापार नू जड़ों पुट देवेगी। पंजाब दे राजपाल ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ दे प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया वल्लों नौजवानां नू नशा मुक्त भारत मुहिम दे दूत वजो काम करन दी अपील। पंजाब भाजपा दियां नशा मुक्त पंजाब यात्रावां नू मिल रहा भरवां हुंगारा। वक वक थावां ते लोकां वल्लों उसारू शमूलियत। भारत अते जापान ने हिंद प्रशांत खेतर विच रक्षा तकनोलॉजी सहयोग सांझियां फौजी मशकां अते खेतरी सुरक्षा नू मजबूत करन बारे चर्चा कीती। केंद्रीय सड़क आवाजाई अते शाहराह मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि खेतीबाड़ी खेतर विच तकनोलॉजी नवीनता अते खोज नू उत्साहित करना भारतीय किसानां लई जरूरी है। भारत ने पाकिस्तान वल्लों कुनार अते पक्तिका सूबियां विच अफगानिस्तान ते कीते गए हवाई हमलियां दी सख्त निखेधी कीती है। उड़ान योजना दे अगले पड़ा तहत 21 राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशां ने शहरी हवाबाजी मंत्रालय नाल समझौता पत्र ते दस्तखत कीते। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने नकोदर दे उस समय दे सब पोस्ट मास्टर नू 16 करोड़ रुपए तो वध दी धोखाधड़ी दे मामले विच दोषी ठहराया। बिजली निगम दे डायरेक्टर जनरेशन पुनरदीप सिंह बराड़ ने वक वक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मा ते सरकारी थर्मल प्लांटा दे बिजली उत्पादन यूनिटा दे बंद होन संबंधित प्रसारित कीतियां जा रही खबरां नू स्पष्ट करदियां कहा कि इन्हां विच दर्शाई जा रही स्थिति तथ्यां मुताबक नहीं है। अते अमृतसर कमिश्नरेट ने कहा है कि गैर हाई सिक्योरिटी प्लेट या नुकसानी हुई या टुटी हुई नंबर प्लेट वाले वाहन नू पेट्रोल या CNG नहीं दिता जाएगा। एम्बूलेंस वर्गे एमरजेंसी वाहन अते टेंपरेरी नंबर वाले वाहनों नू छोट। एसन हुन तक दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले सवेर के 7:02 हुए ने ते हुन वेला हो गया प्रोग्राम सोनी सवेर का।

कर्म भूमि पर चलो निरंतर, थमना यहाँ निषेध है। जीवन की हर राह कठिन है, संघर्षों का ही गे है। आशा मत बांधो पलकी, केवल कर्म तुम्हारा सत्य। प्रक्षम से ही खेलते हैं सफलता की मधुर रथ। या फिर कह लिए कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वह भी बड़े अभागी होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। किन्ने प्रेरणादायक शब्द ने ए अजिया 17 जो किसी देवी निराश जीवन दे विच जज्बा नवा जोश ते आशा पर दे। असी खुशकिस्मत आ कि अजय देश दे विच रहने आ जिथे ऋषियां मुनिया गुरुआं पीरां वेदा ग्रंथा ते अजय कविया दी रहनुमाई सानू हासिल है, जो हमेशा सड़ा राह रोशनाउंदे रहणगे चाहे किन्ने ही युग क्यों ना बीत जाण। रामधारी सिंह दिनकर उन्हां दी लिखिया इस 17 सन जिन्हां नू अज असी याद कर रहे हां। इन्हां नू खास तौर ते आधुनिक युग दे श्रेष्ठ वीर रस दे कवि वजो याद किया जाता है। आजादी संग्राम दौरान इन्हां दीआं क्रांतिकारी रचनावां ने हर भारती दे मन दे विच नवीं चेतना जगाई सी। इसी लई इन्हां नू राष्ट्र कवि नाम नाल भी जाणिया जांदा है। बहुत सारे अजिहे समें आए जदों उन्हां ने अपनी गलबात बहुत ही निडरता ते बेबाकी नाल कही। अज उसे ही महान कवि नू असीं याद कर रहे हां। वैसे देखा जाए तो यह साहित्य है जो सानू दृष्टिकोण दिंदा है, साहस ज्ञान ते विचारां दी अमीरी दिंदा है, ते इस तरह चंगा संगीत सानू एक मुस्कान दिंदा है, जिंदगी दे तनाव तो मुक्ति दिंदा है, आराम दिंदा है। आओ फिर सुनते हैं प्रोग्राम दा ये अगला खूबसूरत गीत सतिंदर सरताज दी आवाज़।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संघर्षों, व्यापार दबावों और जलवायु चुनौतियों के बीच विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने लातिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के साथ संबंध और मजबूत करने का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया। ऊर्जा से जुड़ी बुनियादी व्यवस्था को ईरान की चौकियों से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 11वां आयुर्वेद दिवस आज देश भर में मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय रोवर्स ने पुरुष सिंगल्स और डबल स्कल्स स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक चुनौतियों, जलवायु संबंधी आपदाओं और बहुपक्षीय व्यवस्था पर बढ़ते दबाव से निपटने के लिए विकासशील और अल्पविकसित देशों के बीच अधिक सहयोग की अपील की है। श्री जयशंकर कल अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक से अलग विकासशील और अल्पविकसित देशों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैश्विक स्थिति में बढ़ते संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार पर दबाव, निवेश के बिखरे हुए प्रवाह, बढ़ते ऋण के जोखिम और विकास के लिए अपर्याप्त वित्त की समस्याएं देखी जा रही हैं।
1: India's engagement with the Global South.
2: ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जुटता और साझा समृद्धि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। यह रिश्ता आपसी सीख और सहयोग पर आधारित है, साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य को तय करने में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का साझा हित भी शामिल है।
1: In determining the future of the international system.
0: श्री जयशंकर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले बदलावों का सही ढंग से प्रबंधन करने के महत्व पर भी बल दिया, ताकि विभाजन को रोका जा सके और विकासशील तथा अल्पविकसित देशों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। डॉक्टर जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तयानी से भी मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी बातचीत खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे और यूक्रेन संघर्ष पर केंद्रित थी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता अच्छी प्रगति पर है और दोनों देशों का दिसंबर में G20 शिखर सम्मेलन तक बातचीत पूरी करने का लक्ष्य है। श्री कार्नी ने कहा कि उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय कनाडा की यात्रा करेंगे, हालांकि इसकी सटीक तारीख अभी तय नहीं हुई है। G20 सम्मेलन 14 और 15 दिसंबर को अमेरिका के मियामी में होगा। श्री कार्नी ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वे अगले दशक में अमेरिका के अलावा अन्य देशों के साथ कनाडा का व्यापार दोगुना करना चाहते हैं। उन्होंने भारत को उस व्यापक प्रयास का हिस्सा बनाया है जिसका उद्देश्य कनाडा की अमेरिका पर निर्भरता कम करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान पश्चिम एशियाई देशों पर हो रहे कई हमलों को देखते हुए पश्चिम एशिया में ऊर्जा से जुड़े अवसंरचना को ईरानी सीमा क्षेत्रों से दूर ले जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा परिषद और अरब नेताओं के साथ बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति

0: ट्रंप ने कहा कि पड़ोसी देशों में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों ने इस क्षेत्र में ऊर्जा संबंधी अवसंरचना को बदलने की आवश्यकता को उजागर किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमरीका ने आर्थिक कदमों के माध्यम से ईरान को वित्तीय रूप से अलग थलग कर दिया है। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि एक समय ऐसा आ सकता है जब स्थिति को सुलझाने में बहुत देर हो जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बड़े शहरों में ऐसे एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाने की योजना है जहां व्यवसायों को विभिन्न सरकारी विभागों तथा एजेंसियों तक पहुंच की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सके। उन्होंने कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यशाला में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि सरकार भौतिक और डिजिटल दोनों तरीकों से निर्यात को सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्म कुमारी के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान के शुभारंभ के साथ ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी।
2: 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। इसमें कॉमर्स फैकल्टी के 6,713 और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग फैकल्टी के 1,102 विद्यार्थी शामिल हैं। समारोह के दौरान स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर द वर्ल्ड रिन्यूअल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति यूथ फॉर विकसित भारत अवेकनिंग इनर स्ट्रेंथ फॉर नेशन बिल्डिंग अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगी। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित रहेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, बड़ौदा।
0: इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने कल गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
3: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जब सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। मंत्रालय ने बताया कि ये समारोह आयुर्वेद से जुड़े प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा और ज्ञान के आदान प्रदान तथा व्यापक जुड़ाव के लिए मंच प्रदान करेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: 11वें आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन नागपुर के कविवर्य सुरेश भट्ट सभागार में आज सुबह 9 से 10 के बीच होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के कुलपति डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि इस वर्ष आयुर्वेद दिवस में प्रमाण, अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से आयुर्वेद को सशक्त बनाने के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। जामनगर स्थित ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की यूनिट हेड डॉक्टर गीता कृष्णन पिल्लई शाश्वत से विश्वास तक स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद और 2047 की ओर मार्ग इस विषय पर मार्गदर्शन करेंगी। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक ज्ञान से वैश्विक नेतृत्व तक आयुष विजन 2030 रिपोर्ट, भारत में आयुष संबंधित आविष्कारों पर स्थिति रिपोर्ट CCRAS अग्नि इस आकलन स्केल वेब पोर्टल का भी शुभारंभ होगा। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
0: आयुष मंत्री प्रताप जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद बेहतर और स्वस्थ जीवन का आधार है।

0: हमारे आयुष मंत्रालय ने जो थीम चुनी है वो है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। यानी कि अगर बुढ़ापे में भी अगर हम अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हैं, जिंदगी हम वहां पर जीना चाहते हैं, तो अभी से आयुर्वेद और आयुष को, योगा को अपनाइए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को भारत की सौर क्रांति में साकार किया गया है।
2: भारत की सौर क्रांति गुजरात के राज्य स्तरीय प्रयासों से शुरू होकर आज एक विशाल राष्ट्रीय अभियान बन चुकी है, जो देश को स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक अवसर और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है। वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट की स्थापित सौर क्षमता से आगे बढ़ते हुए भारत वर्ष 2026 तक लगभग 165 गीगावाट की सौर क्षमता हासिल कर चुका है। सौर ऊर्जा को हर घर तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 51 लाख से अधिक परिवार जुड़ चुके हैं और 14.8 गीगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित हो चुके हैं। इसने जहां लाखों परिवारों को बिजली बिल शून्य कर दिया है, वहीं युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के भी नए अवसर सृजित किए हैं। इस योजना के माध्यम से जमीनी स्तर पर आ रहे बदलाव और कौशल विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की एक लाभार्थी की प्रेरक कहानी साझा करते हुए कहा,
3: आज पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का प्रभाव देश के कोने कोने में दिखने लगा है। इस योजना की वजह से गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की पायल मुजपरा के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने सूर्य पहल के माध्यम से सोलर पावर टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग ली और 4 महीने का सोलर पीवी टेक्नीशियन का कोर्स पूरा किया। वो आसपास के जिलों में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का काम करती है और इससे उन्हें हर महीने हजारों रुपए की आय होती है।
2: सुरेंद्रनगर के निवासी दिनेश भाई मकवाड़ा ने बताया कि कैसे इस योजना ने उनके जीवन को सुगम बनाया है।
4: मैंने पास पीजीवीसीएल का बिजली कनेक्शन था, लेकिन उसके बाद पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू होने पर मैंने उसके आवेदन करके अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा लिया। इसमें सरकार की तरफ से मुझे 78,000 रुपए की सब्सिडी भी मिली।
2: आज गुजरात प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर इंस्टॉलेशन में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, बिहार, झारखंड, आंतरिक कर्नाटका, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। जापान एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों के पास पदक जीतने के कई अवसर होंगे। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और मीराबाई चानू आज भारत के अभियान का नेतृत्व कर रही हैं। मनु भाकर ने निशानेबाजी में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारोत्तोलक मीराबाई चानू महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में भाग लेंगी। नौकायन में भारत की पुरुष टीम ने सिंगल्स और टीम स्कल्स इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
5: धन्यवाद प्रियंका। भारतीय बेटियों की स्वर्णिम उड़ान, एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा देश के लिए पहला स्वर्ण पदक लाने की खबर को आज दैनिक जागरण और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, जापान में इस टूर्नामेंट में अब तक देश के कुल 7 में से 4 पदक महिलाओं के नाम हैं। अमर उजाला की खबर है, मोबाइल में इंटरनेट नहीं बल्कि सिर्फ वॉइस कॉल और मैसेज की सुविधा चाहने वालों के लिए अच्छी खबर। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार कंपनियों से मोबाइल रिचार्ज में बिना डेटा वाले सस्ते प्लान बढ़ाने को अनिवार्य किया। अब 30 दिन की वैधता लागू की जाएगी। नवभारत टाइम्स लिखता है, मोबाइल स्क्रीन गार्ड यानी स्क्रीन प्रोटेक्टर अब बिना गुणवत्ता जांच के नहीं बिकेंगे। नया नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा। टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू पर लाल हरा बिंदु अनिवार्य, देखते ही पता चलेगा कि उत्पाद शाकाहारी है या नहीं। दैनिक भास्कर के अनुसार केंद्र सरकार ने इस संबंध में जारी की अधिसूचना।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने संघर्षों, व्यापारिक

0: leaders on the sidelines of the UN General Assembly in New York yesterday. President Trump said attacks on commercial shipping in neighboring countries had highlighted the need to shift the region's energy infrastructure. President Draupadi Murmu will grace the 75th annual convocation ceremony of the Maharaja Sayaji Rao University at Vadodara today. She will also launch Brahma Kumari's campaign and inaugurate the Global Spiritual Palace at Vadodara. More from our correspondent.
1: In the 75th convocation ceremony, President Murmu will confer degrees to over 12,600 students. This includes 6,713 from the Faculty of Commerce and 1,102 from the Faculty of Technology and Engineering. During the ceremony, a total of 201 gold medals will be awarded to 160 students for their academic achievements in the undergraduate and postgraduate courses. After that, the President will inaugurate the Global Spiritual Palace Retreat Center of Brahma Kumaris in Vadodara. During the program, the President will also inaugurate the Spiritual Awakening for the World Renewal Project and will virtually launch the Youth for Viksit Bharat Awakening Inner Strength for Nation Building campaign. Gujarat Governor Acharya Devrat and Chief Minister Bhupendra Patel will be present on the occasion. Mayur Solanki, Akashwani News, Vadodara.
0: Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues today. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in this special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into India's solar revolution.
2: India's solar revolution has transformed from a state-level initiative in Gujarat into a massive national movement driving economic growth, energy self-reliance and clean power. From an installed solar capacity of just 2.8 gigawatt in 2014, the nation has achieved nearly 165 gigawatt by mid-2026. Taking solar power directly to households, Pradhan Mantri Surya Ghar Muft Bijli Yojana has empowered over 51 lakh families and commissioned 14.8 gigawatt of rooftop solar installations across the country. Highlighting this transformative impact of this scheme on ground-level entrepreneurship, Prime Minister Narendra Modi shared an inspiring journey of a beneficiary from Gujarat.
3: आज पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का प्रभाव देश के कोने कोने में दिखने लगा है। इस योजना की वजह से गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की पायल मुजपरा के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने सूर्य पहल के माध्यम से सोलर पावर टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग ली और चार महीने का सोलर पीवी टेक्नीशियन का कोर्स पूरा किया। अब वो एक कुशल सोलर टेक्नीशियन बन गई है। पायल एक सोलर उद्यमी के तौर पर अपनी पहचान बना रही है। वो आसपास के जिलों में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का काम करती है और इससे उन्हें हर महीने हजारों रुपए की आय होती है।
2: दिनेश भाई मकवाना, रेसिडेंट ऑफ सुरेंद्रनगर, शेयर्स हाउ द इनिशिएटिव हैज डायरेक्टली बेनिफिटेड हिज फैमिली।
4: मेरा नाम दिनेश भाई मकवाना है। मैं सालों से गुजरात के सुरेंद्रनगर शहर में रहता हूँ। मेरे पास पीजीवीसीएल का बिजली कनेक्शन था, लेकिन उसके बाद भारत सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू होने पर मैंने उसके आवेदन करके अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा लिया। इसमें सरकार की तरफ से मुझे 78,000 रुपए की सब्सिडी भी मिली और अब मेरे घर का बिल जीरो हो गया है।
2: टुडे गुजरात स्टैंड्स एज वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स इन सोलर इंस्टॉलेशंस अंडर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी न्यूज, अहमदाबाद।
0: दिस इज आकाशवाणी गिविंग यू द न्यूज।
5: Want more news? Follow us on X at AIR News Alerts and subscribe to News on Air Official on YouTube.
0: The Ministry of Ayush will host the 11th Ayurveda Day in Nagpur, Maharashtra today under the theme Ayurveda for a Healthier Tomorrow. The ministry said Ayurveda institutions, practitioners and stakeholders will participate in the celebrations across India and worldwide. The ministry said the celebrations will bring together key stakeholders from across the Ayurveda ecosystem, providing a platform for knowledge exchange and wider engagement. More from our correspondent.
6: The inaugural ceremony of 11th Ayurveda Day, based on the theme Ayurveda for a Healthier Tomorrow, will be held at the Kavivar

0: Takes trade pressures and climate challenges also stresses for stronger ties with Latin American Caribbean states as trade crosses $50 billion. US President Donald Trump backs India Middle East Europe economic corridor, stresses on shifting energy infrastructure away from Iranian checkpoints. 11th Ayurveda Day being observed across the country today. Forecast of heavy to very heavy rain in Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Odisha and Telangana today. And at Asian Games in Japan, Indian rowers qualify for finals of men's singles and doubles sculls event. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: नमस्कार ये आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संघर्षां आर्थिक चुनौतियां ते जलवायु आफता दौरान विकासशील घट विकसित अते गरीब देशां दरमियान वधेरे सहयोग लिखे है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिमी एशिया यूरोप आर्थिक लांघे की जोरदार हमायत की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वडोदरा विच महाराजा सायाजी राव यूनिवर्सिटी के 75वें सालाना कन्वोकेशन विच शामिल होंगे। 11वां आयुर्वेद दिवस आज देश भर विच मनाया जाएगा। एशियाई खेडां विच निशानेबाजी विच दोहरा ओलंपिक तमगा जेतू मनु पाकड़ ने औरतों के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले के फाइनल लिए क्वालीफाई किया। हॉकी विच भारत की औरतों की टीम आज सवेरे अपने तीजे पूल बी मैच विच थाईलैंड का सामना करेगी। हुण खबरां विस्थार नाल। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वध रहे भू सियासी तनाव आर्थिक चुनौतियां जलवायु नाल संबंधित आफतां ते बहुपक्षी प्रणाली ते वध रहे दबाव नूं हल करन लई दुनिया दे विकासशील घट विकसित अते गरीब देशां विचकार वधेरे सहयोग लई कहा है। श्री जयशंकर कल न्यूयॉर्क विच संयुक्त राष्ट्र महासभा दे 81वें सैशन दे मौके ते आलमी दक्खण दे देशां दी इक मीटिंग नूं संबोधन कर रहे सन। मीटिंग दौरान उन्होंने कहा कि आलमी स्थिति विच वधदे टकरा सप्लाई लड़ी अते व्यापार ते दबा खंडित निवेश प्रवाह वधदे कर्जे दे जोखम अते विकास लई नाकाफी मालिये दियां समस्यावां देखियां जा रही ने। उन्होंने कहा कि विकासशील अते घट विकसित देशां नूं सप्लाई लड़ी माली अते संपर्क रुकावटां वर्गियां मुख चुनौतियां दा हल करन लई इकट्ठे काम करना चाहिए है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा उपलब्धता अते कीमतां विच हेराफेरी नूं रोकण अनाज अते खास सप्लाई नाल संबंधित चुनौतियां नूं हल करके भोजन सुरक्षा नूं यकीनी बनाउण अते निरपक्ष ते आर्थिक ते व्यापारक ढंग तरीकियां नूं उत्साहित करन लई यतन करन दा सद्दा दित्ता।
2: ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जुटता और साझा समृद्धि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। यह रिश्ता आपसी सीख और सहयोग पर आधारित है, साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य को तय करने में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का साझा हित भी शामिल है।
1: श्री जयशंकर ने विकासशील अते घट विकसित देशां नूं प्रभावित करन वाले मुद्दियां ते वंड नूं रोकण अते फैसले लैण दीयां प्रक्रियावां विच वधेरे हिस्सेदारी नूं यकीनी बनाउण लई आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस वल्लों लियांदियां गईयां तब्दीलियां नूं सही ढंग नाल प्रबंध करन दी महत्ता ते विज़ोर। दोवें देश दिसंबर दे मध्य विच होण वाले G20 सिखर सम्मेलन तक गल्लबात नूं पूरा करन दा टीचा लै के चल रहे ने। कारनी ने भी कहा है कि उन्हों का मनना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय के नज़दीक कैनेडा का दौरा करेंगे, हालांकि सही तरीक नूं अजे तक अंतिम रूप नहीं दिता गया है। कैनेडा के प्रधानमंत्री ने यह बयान कल न्यूयॉर्क विच संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस विच दिता। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिमी एशिया यूरोप आर्थिक लांघे IMEC की जोरदार हमायत की थी। उन्होंने कहा कि जंग दौरान पश्चिमी एशियाई देशों से हुए कई हमलों को देखते हुए पश्चिमी एशिया विच ऊर्जा बुनियादी ढांचे नूं ईरानी सरहदी खेतरां तों दूर तब्दील करन दी लोड़ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह टिप्पणियां कल संयुक्त राष्ट्र महासभा कौंसल अते न्यूयॉर्क विच अरब नेतावां नाल एक मीटिंग नूं संबोधन करते हुए कीतियां। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि गुआंढी देशां विच व्यापारक जहाजां ते हमलों ने खेतर विच ऊर्जा बुनियादी ढांचे नूं बदलण दी जरूरत नूं उजागर कीता है। 2023 विच शुरू कीते गए भारत पश्चिमी एशिया यूरोप आर्थिक लांघे विच भारत नूं

0: ट्रंप ने भारत पश्चिमी एशिया यूरोप आर्थिक लांगे की जोरदार हमायत की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वडोदरा विच महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी के 75वें सालाना कन्वोकेशन विच शामिल होंगे ते 11वां आयुर्वेद दिवस आज देश भर विच मनाया जाएगा। इस नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म होंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन दोपहर बाद 1:10 होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले स्वेर दे 8:40 होए ने ते हुन वेला हो गया प्रोग्राम महक पंजाब दी दा।

0: मन की बात माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करनगे अपनी मन की बात एतवार 27 सितंबर दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नू प्रसारित करनगे नालो नाल नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी किया जाएगा प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज डीटीएच दी एआईआर पंजाबी सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज ते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी 138वीं कड़ी
1: अंतराल तो बाद एक बार फिर तुहाडे सारयां दा स्वागत है जी प्रोग्राम चल रहा है महक पंजाब दी प्रोग्राम च अगला गीत मोहम्मद रफी दी आवाज़ च

अनुराधा पौडवाल ते महेंद्र कपूर दे फिल्म सरपंच तो लए इस गीत तो बाद प्रोग्राम महक पंजाब दी च प्रोग्राम दा आखरी गीत मोहम्मद रफी ते लता मंगेशकर दी आवाज़ां च फिल्म गुड्डी चों।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज वडोदरा स्थित महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी के 75वें सालाना कन्वोकेशन समारोह च हिस्सा लैणगे। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल गुजरात च एक विशेष समारोह दौरान साल 2024 लई 72वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड प्रदान किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नशीले पदार्थों खिलाफ एक सख्त ते फैसला कुन वार करन दा समा आ गया है। कहा कि 2029 तक सरकार भारत तो नशीले पदार्थों के व्यापार नू जड़ों पुट देगी। पंजाब दे राजपाल अते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया वालों नौजवानों नू नशा मुक्त भारत मुहिम के दूत वजों काम करन दी अपील। पंजाब भाजपा दियां नशा मुक्त पंजाब यात्रावां नू मिल रहा भरवा हुंगारा। वख-वख थावां दे लोकां वल्लों उसारू शमूलियत। आयुष मंत्रालय अज महाराष्ट्र विच एक सेहतमंद कल लई आयुर्वेद विषय हेठ 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट ने नकोदर दे उस समय दे सब पोस्ट मास्टर नू 16 करोड़ तों वध दी धोखाधड़ी दे मामले विच दोषी ठहराया। बिजली निगम दे डायरैक्टर जनरेशन पुनरदीप सिंह बराड़ ने वख-वख सोशल मीडिया प्लेटफार्मां ते सरकारी थर्मल प्लांटां दे बिजली उत्पादन यूनिटां दे बंद होण संबंधी प्रसारित कीतियां जा रहियां खबरां नू स्पष्ट करदिआं कहा कि इन्हां विच दर्शाई जा रही स्थिति तत्थां मुताबक नहीं है। अमृतसर कमिश्नरेट ने कहा है कि गैर हाई सिक्योरिटी प्लेट जां नुकसानी हुई जां टुट्टी हुई नंबर प्लेट वाले वाहन नू पेट्रोल या सीएनजी नहीं दिता जाएगा। एंबूलेंस वर्गे एमरजेंसी वाहनों अते टेंपरेरी नंबर वाले वाहनों नू छोट अते संयुक्त राष्ट्र दे मनुखी अधिकारां दे हाई कमिश्नर वोल्कर ट्रक ने पाकिस्तानी अधिकारियों के विरोध मुजाहरियां नू दबाउण लई बहुत ज़्यादा मारू ताकतां दी वरतों का इल्जाम लाया। एशियाई खेडां विच हाकी विच भारत दी औरतां दी टीम अज सवेरे अपने तीजे पूल बी मैच विच थाईलैंड खिलाफ खेडेगी। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 9:02 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰ ਸਾਧਨਾ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਂਸੁਰੀ 'ਤੇ ਵਜਾਇਆ ਰਾਗ ਪਟਿਆਰ ਸੁਣੋਗੇ।

0: बाकी सब गंगा।
1: कुछ गजलां सिर्फ सुनिया नहीं जांदियां, वो दिल विच उतरदियां ने, एहसास जगांदियां ने, ते लंबे समय तक अपनी मिठी गूंज छड़ जांदियां ने। पंकज उदास की आवाज़ की यह मिठास शायद इसलिए दिल विच टिक जांदी है कि इस विच दिखावा नहीं, सिर्फ एक सच्चा, नरम ते खूबसूरत एहसास है। अजिहा एहसास जो देर तक दिल विच गूंजदा रहिंदा है।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से यह आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। इस वेले सवेर के 10 बज रहे ने। पेश ने हुण तक दियां मुख खबरां। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने संघर्षां आर्थिक चुनौतियां अते जलवायु आफतां दौरान विकासशील घट विकसित अते गरीब देशां दरमियान वधेरे सहयोग लई कहा है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पछमी एशिया यूरोप आर्थिक लांघे की जोरदार हमायत की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज वडोदरा विच महाराजा सयाजी राव यूनीवर्सिटी के 75वें सालाना कन्वोकेशन विच शामिल होंगे। 11वां आयुर्वेद दिवस आज देश भर में मनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नशीले पदार्थों खिलाफ एक सख्त ते फैसला कुन वार करन दा समा आ गया है। कहा कि 2029 तक सरकार भारत तो नशीले पदार्थों के व्यापार नू जड़ों पुट देगी। पंजाब दे राजपाल अते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया वल्लों नौजवानों नू नशा मुक्त भारत मुहिम के दूत वजो काम करन की अपील। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शहरी ते देहाती स्थानक संस्थावां लई मजबूत माली ढांचे की वकालत की है। पंजाब दे सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने वैक्टर बोन ते पानी राही फैलन वालियां बीमारियां की रोकथाम अते बचाव कारजां दा लिया जायजा। पंजाब दी 5 सहकारी खंड मिलां ने जितते कौमी अवार्ड। वपार अते सन्नत मंत्री पीयूष गोयल ने वड्डे शहरां विच एकीकृत वपार ते सन्नत दफ्तर कायम करन दी योजनावां दा ऐलान कीता है, जिस नाल कारोबार एक छत हेठ कई सरकारी विभागां ते एजेंसियां तक पहुँच कर सकनगे। अते एशियाई खेडां विच महेश्वरी सिंह, परिनास धालीवाल ते रायजा ढिल्लो दी भारतीय टिकड़ी ने औरतां दे टीम स्कीट निशानेबाजी मुकाबले विच कांसी दा तमगा जित्तिया। हॉकी विच भारत दी औरतां दी टीम अज सवेरे अपने तीजे पूल बी मैच विच थाईलैंड दा सामना करेगी। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से यह आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। इस वेले सवेर के 10:02 होए ने। तो हुण वेला प्रोग्राम हैलो फरमाइश का, बस इस अंतराल तो बाद।
1: मन की बात माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करनगे अपने मन की बात एतवार 27 सितंबर दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करनगे नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नैशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी कीता जाएगा। प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर FM 102.7 MHz DTH दी AIR पंजाबी सेवा DRM 864 KHz FM 100.6 MHz विविध भारती FM 103.6 MHz अमृतसर FM 100.9 MHz ते FM 100.8 MHz आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे। इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे। सुनना जरूर मन की बात दी 138वीं कड़ी।

एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिलिया जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, मलेरकोटला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मानसा, फिरोजपुर, मोगा अते फरीदकोट लई कॉन्ट्रैक्ट आधार ते पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट्स दे अहुदे लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मंग कीती जांदी है। अर्जी फार्म लैण अते भेजण लई पता हैड आफ आफिस आकाशवाणी नेड़े BMC चौंक जलंधर ए। उम्मीदवार अर्जी फार्म समेत वधेरे जानकारी आकाशवाणी दी वैबसाइट www.newsonair.nic

हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। प्रोग्राम शुरू हो गया जी। हेलो फरमाइश आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र ते प्रोग्राम लैके हाजिर हो गई है जी तुहाडी होस्ट ते दोस्त देविका। भाई दोस्तों तुहानू सारयां नू पता इस प्रोग्राम विच तुसी सुन सकदे हो अपने पसंदीदा हिंदी फिल्मी गीत ते इसलिए करना की है लो जी वह भी तुहानू सारयां नू पता पर जिहड़े साडे नवे लिसनर साडे नाल जुड़े है ना उन्हां नू दस देना जरूरी है। इस प्रोग्राम विच अपने पसंदीदा गीत सुनने लिए तुसी चुकना है फोन। जी हाँ फोन चुकना है मिलाना है साडा नंबर 2342173 ते पहुँच जाना साडे स्टूडियो साडे नाल करनियां गल्लां बातां ते सानू दसनी अपनी फरमाइश। ते जिहड़े लिसनर जलंधर तो बाहरों कॉल लगाएंगे ना वो जलंधर का एरिया कोड लगाना ना भुलन। जलंधर का एरिया कोड है 0181। फिर इंतजार किस गल का कर रहे हो चुक लो फोन ते मिलाओ नंबर पहुँचो साडे स्टूडियो ते सुनो अपने पसंदीदा फरमाइशी गीत प्रोग्राम हैलो फरमाइश च। ते जदों तक प्रोग्राम च पहले कॉलर साढ़े को पहुँचते हैं ना आओ प्रोग्राम की शुरुआत तो सुनवाने श्रेया घोषाल की आवाज़ च गाया एक खूबसूरत गीत।

0: प्रोग्राम हैलो फरमाइश तुसी सुनिया श्रेया घोषाल दी आवाज च गीत फिल्म एक्शन रिप्ले चो लिया गया। इस गीत तो बाद प्रोग्राम च साडे पहले कॉलर भी साडे नाल जुड़ चुके ने, आओ जानदे आ कौन आए ने ते कित्थों आए ने। हैलो
1: जी
0: सत श्री अकाल जी।
1: हां जी रशपाल सिंह मजीठा रोड फतेहगढ़ चूड़ियां जिला गुरदासपुर तो बोल रहे हैं जी।
0: रशपाल जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम विच, की हाल चाल ने? तपस्या तो घट नहीं, जो प्रोग्राम शुरू च ही कॉल लग जाए ना फिर मजा ही कुछ होर हुंदा।
1: ਰਖਵਾਲੇ
0: ਲਾ ਜੀ ਇਹ ਗੀਤ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।

0: मोहम्मद रफी दे गाए इस गीत तो बाद प्रोग्राम हैलो फरमाइश च साडे अगले कॉलर भी साडा नंबर 43-143 मिला के साडे कोल आ पहुंचे ने। आओ जानदे आ कौन आए ने, कित्थों आए ने ते केड़ी फरमाइश लेके आए ने। हैलो
1: हैलो मैम, सत श्री अकाल
0: जी, कौन बोल रहे ने ते कित्थों बोल रहे ने?
1: जगसीर सिंह गिल, पिंड जगतपुर जट्टा सरां तो बोल रहे हां
0: मैं। जगसीर जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम विच, की हाल चाल ने? करण अर्जुन फिल्म चो। लो जी एक गीत आ रहा तो हाडे रेडियो सेट ते, बस एक छोटे जे अंतराल तो बाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने लिए।
1: थैंक यू।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: फिल्म करण अर्जुन दे गाए इस गीत तो बाद प्रोग्राम हैलो फरमाइश च अगले कॉलर भी आ जुड़े ने साडे नाल। आओ जानदे हां कौन आए ने ते कित्थों आए ने। हैलो
1: हैलो हां जी भाई सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने ते कित्थों बोल रहे ने।
1: मैं जी रंजीत सिंह वट्टू पिंड कुड़ियाणा जिला फाजिलका तो बोल रहा जी।
0: रंजीत जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम विच, की हाल चाल ने।
1: गीत
0: आ रहा रेडियो सेट ते, बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने लई।
1: शुक्रिया।

समझी। अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके। हट तेरा रंग।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
3: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होने कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस

0: 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुन शाम 7:30 बजे दी बजाय रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
1: जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानने लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तो 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर दे वक-वक चैनल्स ते FM रेनबो प्राइमरी चैनल DRM ते DTH चैनल्स ते इहदे नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल ते 20 सितंबर तो 3 अक्टूबर तक। एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।
2: अंतराल तो बाद एक बार फिर तुहाडे सारयां दा स्वागत है जी। प्रोग्राम चल रहा हैलो फरमाइश ते अंतराल ते जान तो पहले सानू साडे कॉलर अपनी फरमाइश दस के सी, आओ उहनां दी फरमाइश पूरी करदे आ ते प्रोग्राम च अगला गीत सुनवाण जा रहे हैं मुहम्मद रफी दी आवाज़ च। ते जे तुसी भी अपना पसंदीदा हिंदी फिल्मी गीत सुनना चाहते हो तो तुहानू पता ही की करना है, बई तुसी नंबर डायल करना है 0181-3342-173 ते जदों तक असी अपने अगले कॉलर का इंतजार करते हैं आओ सुनिए मोहम्मद रफी का गाया एक गीत।

मोहम्मद रफी दे गाए इस गीत तो बाद प्रोग्राम हैलो फरमाइश च अगले कॉलर भी साडे कोल आ पहुंचे ने आओ जानते हैं कौन आए ने ते केड़ी फरमाइश लेके आए ने हैलो सत श्री अकाल जी कौन बोल रहे ने ते कित्थे बोल रहे ने रामनाथ जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम विच की हाल चाल ने हाल चाल सुन के ही वधिया हो जांदा जी जी ते अज फिर फरमाइश केड़ी लेके आयो केड़ा गीत सुना दी

ऐ मेरे हमदम रहे हमेशा तेरी सलामत जोड़ी। ऐ मेरे हमदम रहे।

0: मोहम्मद रफी दे गाए इस गीत तो बाद प्रोग्राम हैलो फरमाइश च अगले कॉलर भी साडा नंबर 243-173 मिला के साडे कोल आ पहुंचे ने। आ जानदे आ कौन आए ने, कित्थों आए ने ते केड़ी फरमाइश लेके आए ने। हैलो
1: हैलो मैडम जी, राम राम।
0: राम राम जी, कौन बोल रहे ने?
1: अजी श्रवण कुमार रणवा गांव रावली जिला फाजिलका पंजाब से बोल रहे हैं।
0: जी जी श्रवण कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम विच, की हाल चाल ने?
1: बहुत बढ़िया जी।
0: जी बढ़िया ही चाहिए। तो श्रवण कुमार जी, केड़ा गीत सुनना चाहोगे, केड़े गीत की फरमाइश लेके आए हो?
1: आज फिल्म है रिश्ता कागज का।
0: जी जी,
1: सुन सजना सुन गुस्सा, ये ऐसे कर कर गीत है।
0: सुन सजना मेरी,
1: पछताओगे।
0: जी जी, सुन सजना मेरी चाबी, लता मंगेशकर की आवाज में।
1: हाँ जी,
0: हाँ जी।
1: एक थोड़ा

लता मंगेशकर दे इस खूबसूरत जी गीत तो बाद प्रोग्राम हैलो फरमाइश च अज दे आखरी कॉलर भी साडे नाल जुड़ चुके ने। आओ जानदे आ कौन आए ने ते कित्थों आए ने। हैलो,

0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
0: आकाशवाणी जलंधर के सारे श्रोता और आरजे सारिया नु प्रकाश चंगोगिया अज में बाजार सीताराम पुरानी दिल्ली से तो सत श्री अकाल जी।
1: बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम विच। की हाल चाल ने? ट्रेन का आखरी डब्बा फड़ लिया छेती छेती फरमाइश भी दस दो ना, ये ना हो गल गीत ही सुनना भूल जाइए।
0: मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी।
1: ये गीत आ रहा रेडियो
0: सेट सारे श्रोतावां सारी जलंधर सैनी
1: जी जी ये गीत आ रहा रेडियो सेट ते। बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने।
0: जी धन्यवाद जी, नमस्कार।
1: शुक्रिया जी।

0: ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 11 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। आयुष्मान भारत के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इससे देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिला है। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। आयुष्मान भारत के सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 8 वर्ष पहले आयुष्मान भारत की शुरुआत इस सोच के साथ की गई थी कि हर भारतीय को बेहतरीन और किफायती स्वास्थ्य लाभ मिल सके। विदेश

0: मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच अधिक सहयोग की अपील की है। डॉक्टर जयशंकर कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 21वीं बैठक के अवसर पर विकासशील और अल्प विकसित देशों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया में बढ़ते संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार पर दबाव और बढ़ते ऋण जोखिम की समस्याएं देखी जा रही हैं।
1: India's engagement with the Global South.
2: ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जुटता और साझा समृद्धि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। यह रिश्ता आपसी सीख और सहयोग पर आधारित है, साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य को तय करने में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का साझा हित भी शामिल है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्म कुमारी संस्थान के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान के शुभारंभ के साथ वैश्विक आध्यात्मिक पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। मंत्रालय ने बताया कि ये समारोह आयुर्वेद के परिवेश से जुड़े प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएंगे और ज्ञान साझा करने तथा व्यापक संपर्क के लिए मंच प्रदान करेंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि आयुर्वेद बेहतर और स्वस्थ जीवन का आधार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बड़े शहरों में एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाए जाएंगे। इससे व्यवसायों को विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों तक पहुंच की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सकेगी। उन्होंने कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की कार्यशाला में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि सरकार भौतिक और डिजिटल दोनों तरीकों से निर्यात सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक में ईरान के विरुद्ध की गई सैन्य कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने सभी देशों से ईरान पर आर्थिक दबाव बनाए रखने का आग्रह किया। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के सामने समझौता करने या अमेरिका की और कड़ी सैन्य कार्रवाई का सामने करने का ही विकल्प है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि बातचीत दिसंबर में G20 शिखर सम्मेलन तक पूरी हो जाएगी। श्री कार्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा जाएंगे। सही तारीख अभी तय नहीं है। G20 सम्मेलन 14 और 15 दिसंबर को अमेरिका के मियामी में होना निश्चित है। खाड़ी सहयोग परिषद ने ईरान और उसके सहयोगी समूहों से खाड़ी के अरब देशों पर हमले बंद करने और दो महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों से मुक्त आवागमन की अनुमति देने का आह्वान किया है। परिषद के प्रमुख जासिम मोहम्मद अल बुदैवी ने कहा कि हुर्मुज जलडमरू मध्य और बाब अल मंदब जलडमरू मध्य से होकर जहाजों के आवागमन में व्यवधान ने दुनिया भर के तेल बाजारों और आपूर्ति प्रणालियों को प्रभावित किया है, जिसका विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा है। अनंतजीत सिंह नरुका, मेराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल ने 346 अंक के साथ पुरुष टीम स्केट निशानेबाजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। भारत के अब निशानेबाजी में 4 रजत और 3 कांस्य पदक हो गए हैं। भारतीय टीम ने 2018 के एशियाई स्वर्ण पदक विजेता ईरान को महिला कबड्डी स्पर्धा में आज दूसरे ग्रुप मैच में 37-23 से हरा दिया। इससे पहले भारतीय टीम ने शुरुआती मैच में बांग्लादेश को 42-21 से मात दी थी। अब भारत का सामना कल जापान से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज़, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़, आकाशवाणी अमृतसर और डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा का ये जलंधर केंद्र है। तुहाडा रेडियो बेली गौरव तुहाडे नाल है और 5 बजे तक तुहाडे नाल रहांगा। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਵੇਵਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਐਪ। ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 11:05 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ।

0: मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करनगे अपने मन की बात एतवार 27 सितंबर दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नू प्रसारित करनगे नालो नाल नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी किया जाएगा प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर FM 102.7 मेगाहर्ट्ज़ DTH दी AIR पंजाबी सेवा DRM 864 किलोहर्ट्ज़ FM 100.6 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती FM 103.6 मेगाहर्ट्ज़ अमृतसर FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ ते FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी 138वीं कड़ी
1: जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा कौन रचेगा इतिहास कौन चुम्मेगा जित दा सिखर भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम ये सब जानण लई सुनो जापान च हो रहीआं एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तों 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तों 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर दे वक-वक चैनल्स ते FM रेनबो प्राइमरी चैनल DRM ते DTH चैनल्स ते इहदे नाल नाल अपडेट्स जाणोगे FM रेनबो चैनल ते 20 सितंबर तों 3 अक्टूबर तक एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते
2: ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ
3: एक जरूरी सूचना आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिलिया जलंधर शहीद भगत सिंह नगर मलेरकोटला संगरूर बरनाला बठिंडा मानसा फिरोजपुर मोगा अते फरीदकोट लई कॉन्ट्रैक्ट आधार ते पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट्स दे अहुदे लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मंग कीती जांदी है अर्जी फार्म लैन अते भेजन लई पता हेड ऑफ ऑफिस आकाशवाणी नेड़े BMC चौंक जलंधर ए उम्मीदवार अर्जी फार्म समेत वधेरे जानकारी आकाशवाणी दी वेबसाइट www.newsonair.nic.in ते जाके वैकेंसी कॉलम तो भी डाउनलोड कर सकदे ने अर्जियां भेजन दी आखरी तरीक 7 अक्टूबर 2026 है ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार नहीं है

0: सारे जुड़े हुए और अगला जड़ा
1: फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन
0: पहला

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: लो जी, एक बार फिर जुड़ गए हैं प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी तुहाडा रेडियो बिजली गौरव तुहाडे नाल है। अगला मैसेज मजनू दे टल्ले यानी दिल्ली तो पहुंचे है। कमल बालूजा, मधु सागर, उमंग आकांक्षा, गुड़िया माही ते इशिता अरोड़ा ये भी जुड़ गए हैं साढ़े नाल। बहुत बहुत धन्यवाद मैसेज करन दे लई। पिंड टाणी लाल खां नौर तो जावेद खां, अरमान खान, इमरान खान, सीमा बानो, विनोद खान ते उन्हां दा सारा परिवार जुड़िया। उन्होंने भी सदा है जी आया। सतीश, बिमला, शेफाली, शेफी ते मास्टर डेविस ये चंडीगढ़ तो जुड़े ने और कहते हैं कि सानू तुहाडा प्रोग्राम बहुत चंगा लगता, बस इस तरह साडा नाम शामिल करते रहा करो। जरूर जी तुसी मैसेज करो 10 बजे तो 10:30 बजे तक प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी। और साडा व्हाट्सएप नंबर है 9465536070।

0: जी बिल्कुल, पंजाबी वैसे ही बहुत सोहने होंदे ने, क्योंकि पंजाबी जुबान जड़ी है वो इन्नी सोहनी, इन्नी मधुर, इन्नी प्यारी और इन्नी मिठी है। तो इस गीत दे नाल अज दा धमक जलंधर पैंदी प्रोग्राम हुण इत्थे ही खत्म हुंदा है। जे तुसीं भी चाहुंदे हो कि तुहाडे मैसेज पढ़े जाण तां तुसीं रोज़ 10 to 10:30 बजे दे विच 94-655-3670 ते सानूं मैसेज कर देना है, अपना नाम, अपने शहर का नाम और जिहड़ा गीत सुनना पंजाबी होवे। तो फिर अज दिओ अपने रेडियो बेली नूं, गौरव नूं इजाजत। धन्यवाद। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 kHz, DRM 864 kHz, FM बैंड 100.8 MHz, FM बैंड 100.9 MHz, FM बैंड 103.6 MHz, आकाशवाणी अमृतसर, DTH आकाशवाणी पंजाब की ए जलंधर सेवा है। तो आओ हुण सुनदे हां समाचार हिंदी दे विच, कुछ पल का इंतजार तो फिर होणगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड में रांची से इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 8 वर्ष पहले यह योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने आयुर्वेद दिवस पर सभी नागरिकों, आयुर्वेदाचार्यों और वैद्यों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जाधव ने नागरिकों से देश की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली अपनाने और एक स्वस्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्म कुमारी संस्थान के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान के शुभारंभ के साथ

0: वैश्विक आध्यात्मिक पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच अधिक सहयोग की अपील की है। डॉक्टर जयशंकर कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक से अलग विकासशील और अल्प विकसित देशों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया में बढ़ते संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार पर दबाव और बढ़ते ऋण जोखिम की समस्याएं देखी जा रही हैं।
1: India's engagement with the Global South.
2: ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जुटता और साझा समृद्धि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। यह रिश्ता आपसी सीख और सहयोग पर आधारित है, साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य को तय करने में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का साझा हित भी शामिल है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक में ईरान के विरुद्ध की गई सैन्य कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने सभी देशों से ईरान पर आर्थिक दबाव बनाए रखने का आग्रह किया। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के सामने समझौता करने या अमेरिका की और बड़ी सैन्य कार्रवाई का सामना करने का विकल्प है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बड़े शहरों में एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाए जाएंगे। इससे व्यवसायों को विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों तक पहुंच की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सकेगी। उन्होंने कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की कार्यशाला में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि सरकार भौतिक और डिजिटल दोनों तरीकों से निर्यात सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता प्रगति पर है। उन्होंने कहा है कि बातचीत दिसंबर में G20 शिखर सम्मेलन तक पूरी हो जाएगी। श्री कार्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान कनाडा जाएंगे। G20 सम्मेलन 14 और 15 दिसंबर को अमेरिका के मायामी में होने की संभावना है। भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा है। भारत ने आज निशानेबाजी की पुरुष स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया। अनंतजीत सिंह नरुका, मेहराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। भारत के अब निशानेबाजी में 4 रजत और 3 कांस्य पदक हो गए हैं। महेश्वरी सिंह, परिणाज धालीवाल और रायजा ढिल्लों की भारतीय तिकड़ी ने भी महिलाओं की स्की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 37-23 से हरा दिया है। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 42-21 से मात दी थी। अब भारत का सामना कल जापान से होगा। घरेलू शेयर बाजार सूचकांक करीब 0.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 355 अंक बढ़कर 74,884 पर और निफ्टी 110 अंक की बढ़त के साथ 23,439 पर आ गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा ये जलंधर केंद्र है और समा हो गया है भैणा दे अपने प्रोग्राम वसदे वेड़े दा। ते आओ फिर शुरू करदे हां भैणा दा प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: नमस्कार।
1: प्रोग्राम अज दे वेले लैके हरप्रीत हाजिर है जी
0: ते गगन भी हाजिर है जी। की हाल है हरप्रीत?
1: गगन जी देखो जदों भी रेडियो आना हुंदा ना हाल अपने आप ही वधिया हो जांदा चाहे जिन्ना मर्जी ढिल्ले होईए।
0: बिल्कुल जी। हाँ। क्योंकि असि अपनी गल दियां जिहड़ियां दिल दियां गल्लां हुंदियां सांझियां करदे आं, अपने दुख सुख करदे आं और खास दिन भी मनाने आं। और क्यों ना असि मनाए, क्योंकि साडा जिहड़ा प्रोग्राम है ओह मनोरंजन ते जानकारी दा बहुत ही खूबसूरत सुमेल है।
1: बिल्कुल जी। और अज दा दिन भी वाकई बहुत वधिया है। अज असीं 11वां आयुर्वेदिक डे मना रहे हैगे आं अंतरराष्ट्रीय लैवल ते। और सब तो वड्डी गल्ल है

0: है, तत्वग्नि है, ऐसब सत तत्व, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ए ते मल क्रिया एक्सक्रीटरी सिस्टम, ए सारे बैलेंस्ड होन। उस दे आत्मा इंद्रिय अते मन बिल्कुल खुश होन, ओही इंसान आयुर्वेद अनुसार स्वस्थ कहा जाता है। आयुर्वेद विच हर व्यक्ति का इलाज उस दे शरीर दी प्रकृति दे हिसाब दे नाल वखरा कीता जाता है। इस विच शामिल ने पहली जड़ी स्टेप है, वो है जड़ियां बूटियां दा नाल इलाज करना, जिवें कि तुलसी, निम, हल्दी, अश्वगंधा, आमला, हरड़, बहेड़ा, इस तरह दियां कुदरती चीजां दी वरतों। इस नूं असी काष्ट औषधियां भी कहिंदे हां। इस तों बाद जिहड़ा है अगे रस शास्त्र दियां औषधियां दी वरतों करन बारे दस्या होया है। फिर है आहार विहार, डाइट अते लाइफस्टाइल, सही समय ते खाना खाना, रुत दे अनुसार भोजन करना जिसनूं ऋतुचर्या कहा जाता है, अते रोजाना दी दिनचर्या, तुहाडी डेली रूटीन। तीजा स्टेप है पंचकर्मा, शरीर दे अंदरले जहरीले तत्व जो टॉक्सिन्स है उन्हां नूं बाहर कढ के शरीर दी सफाई करनी, डिटॉक्सीफिकेशन करन दी विधि। इस नूं स्वस्थ व्यक्ति, सेहतमंद व्यक्ति अते रोगी व्यक्ति रोग दे अनुसार ए दोनों ही तरह के जिहड़े व्यक्ति ने ए करवा सकते ने। चौथा है योग अते ध्यान, योगा अते मेडिटेशन मानसिक शांति अते शारीरिक तंदुरुस्ती दे लई। योग जिहड़ा है तुहानू किस तरह जीवन जीना है ए सिखाउंदा है। संखेप दे विच आयुर्वेद सानू कुदरत दे नियमां दे अनुसार जीवन जीवना सिखाउंदा है तां जो असी बीमार होईए ही ना। भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के वल्लों पहली बार राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2016 दे विच मनाया सी। पहला ए दिवस धनतेरस धनवंतरी जयंती के मौके पर मनाया जाता सी, पर ग्लोबल पद्धर से इकसारता लियाउण दे लई भारत सरकार ने मार्च 2025 विच ऐलान किया कि हुण हर साल आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर शरद संपत ऑटोमनल इक्विनॉक्स नूं ही मनाया जाएगा, क्योंकि यह दिन मन शरीर ते आत्मा दे संतुलन दा प्रतीक है। इस दिन दिन ते रात बराबर होंदे हन। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2026 दी मुख सेलिब्रेशन नागपुर महाराष्ट्र विखे कीती जा रही है। केंद्रीय मंत्री श्री प्रताप राव जादव जी दी अगवाई हेठ इस मुहिम नूं पूरे देश विच एक लोक लहर बनाउण दा सद्दा दित्ता गया है। लगभग 90 लख नागरिकां ने ऑफिशियल डिजिटल कैंपेन आयुर्वेद संबंधी सौंह चुकी है। 12,000 तों वध फील्ड एक्टिविटीज़ां कीतियां जा रही हन, जिस विच आयुर्वेदिक मेडिकल कैंप, आयुष दियां एग्जीबिशन, क्विज पार्टिसिपेशन, मेडिसिनल प्लान डिस्ट्रीब्यूशन शामिल हन। ए सब राष्ट्रीय अते अंतरराष्ट्रीय 150 देशों तो भी वध विच कीता जा रहा है। राष्ट्रीय तनवंतरी इनाम विच काबिल आयुर्वेद एक्सपर्ट्स नू सम्मानिया जा रहा है। आयुर्ज्ञान स्कीम, आयुर स्वास्थ्य योजना, केंद्रीय रिसर्च इंस्टीट्यूट CCRAS अपग्रेडेशन शामिल हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस आयुर्वेद नू विश्व पद्धर ते अगे लेके आंदा है। इस दे नाल कई मंतव पूरे होंदे हन, जिवें कि राष्ट्रीय सेहत पॉलिसी नेशनल हेल्थ पॉलिसी अते राष्ट्रीय सेहत प्रोग्राम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स विच आयुर्वेद दा रोल होर वधाउणा, क्रॉनिक डिजीजेस स्पेसिफिकली लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स नू ठल पौणी। इसे दे नाल आयुर्वेद नू इस्तेमाल करके मौत दर अते रोग दर ते काबू पाउणा, इंसानां दे नाल पूरा वातावरण, रुख पशुआं दी सांभ संभाल करनी, विद्यार्थियां, किसानां, आम पब्लिक विच आयुर्वेद दी जागरूकता नूं वधाउणा, आयुर्वेद नूं एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक मेडिकल सिस्टम वजों पेश करना, मेडिकल टूरिज्म नूं वधाउणा। अंत विच मैं यही कहना चाहवांगी कि सरकार पूरे उपराले कर रही है, हुण साडी वारी है आयुर्वेद नूं मुड़ अपनाउण दी। आयुर्वेद अपनाओ अते कुदरत दे संग सेहतमंद जीवन पाओ। धन्यवाद।
1: वाह जी वाह, डॉक्टर साहब ने तो वाकई बहुत वधिया सुनेहा सानू दिता है।
2: और वैसे मैं लगता है

0: अपना दुख सांझा नहीं सी करना चाहुंदी, पर फिर भी तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद जिन्हां मेरा दुख सांझा कीता, धन्नवाद।
1: वाह जी वाह, ए ते सानू संगीता पुखराज जी ने कहानी सुनाई साडा सिलसिला मेरी कलम तो उस तहत। ते आपां गगन होर अगे वधण तो पहला एक ब्रेक ले लईए।
2: जी बिल्कुल।
3: कहानी है सुना रही आकाशवाणी

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
3: जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानन लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तों 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तों 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर दे वक-वक चैनल्स ते FM रेनबो प्राइमरी चैनल DRM ते DTH चैनल्स ते। इहदे नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल ते 20 सितंबर तों 3 अक्टूबर तक। एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।

मन की बात माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करेंगे अपनी मन की बात एतवार 27 सितंबर दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इसनू प्रसारित करेंगे नालो नाल नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी किया जाएगा प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज डीटीएच दी एआईआर पंजाबी सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज ते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी 138वीं कड़ी

0: हेलो,
1: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
2: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: देखो जी, गीत भी सुन लिया और ढेर सारी जानकारी भी ले ली प्रोग्राम वजदे वेड़े दे विच। उम्मीद करते हैं कि साढ़े सुनने वाले सारे स्रोतियां नू साडा प्रोग्राम बहुत वधिया लगा होएगा।
4: बिल्कुल, वाकई बहुत मनोरंजन असी भी मिलके किया और जानकारी भी असी कट्टे हासिल की
3: जी। तो हुण घड़ी दियां सुइयां कह रही ने कि सानू कल मिलण दे वादे नाल अज इजाजत लैनी चाहिए है।
4: तो लईए इजाजत
3: जी। नमस्कार, नमस्कार।

0: तुसी सुनदे सी प्रोग्राम वसदे वेड़े। मिनी वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीएनएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स, आकाशवाणी अमृतसर और डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा का ये जलंधर केंद्र है। स्टूडियो घड़ी के मुताबिक दोपहर के 1 बज रहे हैं। आओ सुनते हैं समाचार हिंदी दे विच।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से एआई की नई तकनीक इंटरनेट और डेटा का उचित उपयोग करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से कहा कि डेटा आपको सूचना दे सकता है, लेकिन निर्णय आपका होगा।
2: टेक्नोलॉजी को अपनाने समय आपका विवेक होना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान दे सकता है, लेकिन सही प्रश्न पूछना आपका कर्तव्य होना चाहिए। टेक्निक आपको गति दे सकती है, लेकिन ये तय करना है, आपका काम है कि आपको किस दिशा में जाना। डेटा आपको सूचना दे सकता है, लेकिन उस सूचना के नैतिक उपयोग कैसे करना है ये निर्णय आपको ही करना है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि एआई से सही से सवाल पूछना चाहिए और आपको कभी कभी असफलता का सामना भी करना पड़ सकता है। राष्ट्रपति ने जियो और जीने दो की सोच के साथ आगे बढ़ने को कहा। उन्होंने विद्यार्थियों से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देने का भी आह्वान किया।
2: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्यों को लेकर देशवासी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भारत जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचे, ऐसा भारत जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो।
1: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची से इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है

0: और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 8 वर्ष पहले यह योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुष आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने आयुर्वेद दिवस पर सभी नागरिकों, आयुर्वेद आचार्यों और वैद्यों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जाधव ने नागरिकों से देश की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली अपनाने और एक स्वस्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर प्रशासन कागजी प्रक्रियाओं से हटकर डेटा आधारित डिजिटल माध्यमों से संचालित प्रणाली की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक के उद्घाटन सत्र में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत के फेसलेस आकलन, पहले से भरी हुई रिटर्न, रियल टाइम इनवॉइस प्रमाणीकरण और एआई सक्षम करदाता सहायता के अनुभव ने ब्रिक्स साझेदारों के बीच रुचि पैदा की है। मेघालय में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यूडीपी के 8 विधायक आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। इनमें लक्ष्मण रिम्बुई, पीयूष मार्विन, किरमेन शाला और मायराल बोन सीएम प्रमुख हैं। भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता किरेन रिजिजू, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा और अनिल एंटनी की मौजूदगी भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के जय मीणा ने आज सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने एशियाई खेलों में निशानेबाजों की स्कीट स्पर्धा के महिला और पुरुष वर्ग के कांस्य पदक भी जीत लिए हैं। अनंत जीत सिंह नरुका, मेहराज अहमद खान, भवतेज सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में महेश्वरी सिंह, परिणाज धालीवाल और राइजा ढिल्लो की भारतीय तिकड़ी ने तीसरा स्थान हासिल किया। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 23 के मुकाबले 37 अंक से हराया। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 21 के मुकाबले 42 अंक से मात दी। प्रतियोगिता में कल भारत का सामना जापान से होगा। घरेलू शेयर बाजार का सूचकांक आज दोपहर तक 0.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 383 अंक बढ़कर 74,912 पर और निफ्टी 115 अंक की बढ़त के साथ 23,444 पर था। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ थे। आकाशवाणी का ये जलंधर केंद्र है। तो हुण तुहानू दसते जांदे आ साडे अज दे बाकी रहिंदे प्रोग्राम और उन्हां दा वेरवा।

0: है बबल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
3: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1 ये परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकते हो हर बुधवार शाम 6:30 देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
3: नमस्कार फौजी वीरो, की हाल चाल है? तुहाडा रेडियो बेली गौरव तुहाडे नाल है। एक बार फिर तुहाडा सारयां दा स्वागत है। इह प्रोग्राम जिहदे विच असीं अपने फौजी वीरां लई खास करके गीत संगीत जिहड़ा है ओह चलाने हैं। और अज दे इस प्रोग्राम दी जिहड़ी शुरुआत करन जा रहे हैं ना, एक अजिहे गीत दे नाल करन जा रहे हैं जिस गीत नूं तुसीं बहुत प्यार दिंदे हो, बहुत सुणदे हो। मुहम्मद रफ़ी साहब दा ओह गीत है जिन्हां करके उन्हां नूं फिल्म फेयर अवार्ड भी मिलिया सी। आओ फिर सुनिए ये गीत।

आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जीत दा शिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानने लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तो 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर के वक् वक् चैनल्स से FM रेनबो प्राइमरी चैनल DRM ते DTH चैनल्स से ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟਸ ਜਾਣੋਗੇ FM ਰੇਨਬੋ ਚੈਨਲ ਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਅਕਟੋਬਰ ਤੱਕ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਸਿਰਫ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੇ।

मन की बात मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करेंगे अपनी मन की बात एतवार 27 सितंबर दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालों नाल नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी किया जाएगा प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज डीटीएच दी एआईआर पंजाबी सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज ते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी 138वीं कड़ी।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक बार फिर स्वागत है प्रोग्राम फौजी वीरा दे विच। और फौजी वीर हुण जिहड़ा अगला गीत तुहानू सुनाउण जा रहे हैं ना, उस गीत ने भी बहुत लोगों के नाल, बहुत लोगों की जिंदगी दे नाल अपनी सांझ पाई है। सांझ किदां पाई है, वह गीत किहड़ा है, सब कुछ दसांगा। कुमार सानू की दिलकश आवाज़ उस गीत दे विच जुड़ी हुई है। और जिथे कुमार सानू का नाम आ जाता है ना, तो उत्थे मखमली और मधुर जिहड़ा गीत है वह अपने आप हो जाता है, क्योंकि तुसी सारे जानते हो उन्हां दी आवाज़ जिहड़ी है वह है ही इदां दी। तो फिर सुनिए कुमार सानू ते नाल उन्हां दे कौन है, अलका याग्निक। अलका याग्निक, कुमार सानू दी आवाज़, ये मेल जिहड़ा है ना, ये मेल है जो कन्ना दे विच ये आवाज़।

ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली में ब्रिक्स टैक्स सरबराहान के इजलास का इफ्तिताह किया और आलमी सतह पर होने वाले टैक्स मुजाकरात में ब्रिक्स की मजबूत आवाज की जरूरत पर जोर दिया। भारतीय रेलवे ने पहली मरतबा जनूब वस्ती रेलवे पर कोच 4.2 नस्ब करने का अमल शुरू किया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने पूरे मुल्क में अवामी सेहत की सहूलियात तक रसाई को तब्दील करने के 8 साल मुकम्मल कर लिए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मुत्तहिदा अरब अमारात और फ्रांस के हम मनसबों के साथ मसनूई ज़हानत एआई खला और तवानाई के शोबों में तआवुन के बारे में तबादला ख्याल किया। खलीज बंगाल के ऊपर बना हवा का गहरा दबाव साहिल के करीब आ रहा है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साहली इलाकों में शदीद बारिश जारी है। और एशियाई खेलों 2026 में जापान में भारतीय मर्दों और खवातीन की स्कीट टीमों ने कांसे के तमगे जीते। मीरा भाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में चांदी का तमगा हासिल किया। खबरें तफसील से। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि टैक्स इंतजामिया कागज पर मबनी और रिवायती बाहमी राबते पर मुनहसर तरीकेकार से निकलकर डेटा से चलने वाले डिजिटल तौर पर मुनज्जम सिस्टम की तरफ बढ़ रही है। आज नई दिल्ली में ब्रिक्स टैक्स सरबराहान के इजलास के इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि फेसलेस असेसमेंट, पहले से भरे हुए रिटर्न, बरवक्त इनवॉइस तस्दीक और एआई पर मबनी टैक्स दहिंदगान की मदद जैसे इकदाम ने ब्रिक्स के शराकतदार ममालिक की तवज्जो हासिल की है। वजीर खजाना ने कहा कि इस साल ब्रिक्स टैक्स ट्रैक से तीन अहम शोबे उभर कर सामने आए हैं जिनमें टेक्नोलॉजी, इंतजामिया और इंसानी वसाइल शामिल हैं। भारतीय रेलवे ने रेलवे की हिफाजत के शोबे में एक अहम संगे मील हासिल किया है। जनूबी वस्ती रेलवे पर पहली मरतबा कवच वर्जन 4.0 को कामयाबी के साथ फआल किया गया है। वजारत रेलवे के मुताबिक हैदराबाद डिवीजन के मलकाजगिरी कामरेडी में 108 किलोमीटर के हिस्से पर कवच वर्जन 3.2 से वर्जन 4.0 में अपग्रेडेशन कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली गई है। कवच 4.2 में ज्यादा बेहतर हिफाजती खसूसियात, जदीद टेक्नोलॉजी, ज्यादा काबिल एतमाद निज़ाम और ट्रेनों की महफूज आमद और रफ्त की सहूलत मौजूद है। वजारत ने बताया कि इस जदीद तरीन वर्जन में कवच

0: 3.2 को जुनूबी वस्ती रेलवे के 1465 से ज्यादा रूट किलोमीटर पर नस्ब करने के तजुर्बे की बुनियाद पर मजीद तकनीकी बेहतरियां शामिल की गई हैं। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: कवच अंदरून मुल्क तैयार करदा एक खुदकार ट्रेन हिफाजती निज़ाम है, जिसका मकसद ट्रेनों के ऑपरेशन को ज्यादा महफूज बनाना है। ये निज़ाम लोको पायलट को मुकर्रर रफ्तार की हद के अंदर ट्रेन चलाने में मदद देता है, और ज़रूरत पड़ने पर अगर लोको पायलट ऐसा ना करे तो खुदकार तौर पर ब्रेक भी लगा सकता है। कवच को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यह खतरे के सिग्नल को अबूर करने के वाक़ात को रोकने में मदद दे और ट्रेनों के टकराव के खतरे को भी कम करे। ये निज़ाम नाजुक हालात में ट्रेन की रफ्तार को कंट्रोल करने के साथ साथ मौसम के ख़राब हालात में भी ट्रेनों के ज़्यादा महफूज ऑपरेशन में मदद फराहम करता है। जुनूब वस्ती रेलवे पर कवच 4.0 की कामयाब तंसीब भारतीय रेलवे की घरेलू हिफाजती टेक्नोलॉजी को मजबूत बनाने और भारतीय रेलवे के मुकम्मल नेटवर्क में जदीद खुदकार ट्रेन हिफाजती निज़ाम की सलाहियतों को वसअत देने की जानिब एक अहम कदम है। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने आज 8 साल मुकम्मल कर लिए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह स्कीम सितंबर 2018 में झारखंड के रांची से शुरू की थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी माली एयानत से चलने वाली सेहत बीमा स्कीम बन चुकी है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि इस स्कीम ने तिब्बी अखराजात में रिकॉर्ड बचत करने और गरीब और मुतवस्सित तबके को फायदा पहुंचाने में अहम रोल अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि 8 साल कबल आयुष्मान भारत इस मकसद के लिए शुरू किया गया था कि हर भारतीय को मयारी और काबिल इस्तेताअत तिब्बी सहूलियात तक रसाई हासिल हो। उन्होंने बताया कि आज 60 करोड़ से ज्यादा मुस्तफीद अफराद को सालाना 5 लाख रुपए तक का सेहत बीमा कवरेज हासिल है, जिसकी वजह से ये दुनिया की सबसे बड़ी सेहत देखभाल की स्कीम बन गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अब तक 500 करोड़ से ज्यादा अफराद आ चुके हैं, जिससे बुनियादी सेहत की सहूलियात को जमीनी सतह तक मजबूत बनाने में मदद मिली है। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि अब तक 48 करोड़ 54 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष की वजारत आज महाराष्ट्र के शहर नागपुर में 11वें यौम आयुर्वेद का एहतमाम करेगी, जिसका मौजू है सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए आयुर्वेद। वजारत ने कहा कि इस तकरीब में भारत और दुनिया भर के आयुर्वेद इदारे, माहिरीन, मुआलिजीन और दीगर मुतालिका अफराद शिरकत करेंगे। इस तकरीब के जरिए आयुर्वेद के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अहम अफराद को एक प्लेटफार्म पर यकजा किया जाएगा, जहां मालूमात के तबादले और वसी तर बाहमी तआवुन को फरोग दिया जाएगा। 11वें यौम आयुर्वेद की तकरीबात में आयुर्वेद को मजबूत बनाने और मआशरे की फलाह बहबूद को आगे बढ़ाने में साइंसी शवाहिद, तहकीक और जिद्दत तराजी की अहमियत को उजागर किया जाएगा। इस मौके पर पहली मरतबा आयुष खिदमात के सेक्टर से मुतालिक रिपोर्ट भी जारी की जाएगी। इसके अलावा गोक्शुरा और चंद्रसूरा से मुतालिक हिफाजती मालूमाती दस्तावेजात और जल्दी अमराज के म्यारी इलाज के लिए रहनुमा उसूल भी जारी किए जाएंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आलमी खत्ते जनूब के मुल्कों के दरमियान मजीद तआवुन के लिए कहा है, ताकि बढ़ती हुई जोग्राफियाई और सियासी कशीदगी, इक्तिसादी चैलेंजेस, आबो हवा में अचानक तब्दीलियों और कसीर मुल्की निज़ाम पर दबाव से निपटा जा सके। वजीर मौसूफ कल न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की 81वीं जनरल असम्बली से अलग आलमी खत्ते जनूब के मुल्कों की मीटिंग से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आलमी हालात, बढ़ते हुए तनाज़ात, सप्लाई चेन और तिजारत पर दबाव, सरमायाकारी जिसकी राह में रुकावटें हायल हैं, बढ़ते हुए कर्ज के नतायज और तरक्की के लिए नाकाफी मालियात का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि आलमी खत्ते जनूब के मुल्कों को चाहिए कि सप्लाई चेन, मालियात और कनेक्टिविटी के लिए किए जाने वाले इकदाम समेत अहम चैलेंजों से निपटने के लिए काम करें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु में 16 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दे रही है, जिसका ताल्लुक इंजीनियरिंग फर्म मैकनिली भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड MBECL से है। ईडी ने बताया कि तलाशी की यह कार्रवाई गैर मुल्की जर मुबादला इंजिबाती एक्ट 1999 फेमा के तहत की जा रही है। यह कार्रवाई फेमा के खिलाफ वर्जी और MBECL का कंट्रोल हासिल करने में इस्तेमाल होने वाले फंड्स के जराए और लेन देन से ताल्लुक रखती है। खारजी उमूर के वजीर डॉक्टर एस जयशंकर, मुत्तहिदा अरब अमारात UAE के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान और फ्रांस के वजीर खारजा जॉन नोएल बेरूज ने न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास से अलग भारत UAE फ्रांस सह फरीकी मीटिंग में शिरकत की। तीनों रहनुमाओं ने खला, तवानाई, मसनू जहानत और तहजीब व सकाफत समेत मुश्तरक फवायद के मामलों में हुई पेशरफ्त का जायजा लिया। ढाका की एक अदालत ने कलअदम पार्टी अवामी लीग के 3 रहनुमाओं को जेल भेज दिया है। इस केस का ताल्लुक 11 सितंबर को

0: राजधानी के गुलशन इलाके में अचानक निकाले गए जुलूस से है। ढाका के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का ये ऑर्डर पुलिस की तरफ से अदालत में तीनों मुलजिमों को पेश करने और तहकीक मुकम्मल होने तक उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा करने के बाद सामने आया है। खलीज बंगाल के ऊपर बना हवा का गहरा दबाव शिमाली आंध्र प्रदेश, जनूबी ओडिशा के करीब बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ओडिशा में मौसम की खराब सूरत हाल का सामना है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: भारतीय मौसमियात महकमे ने जनूबी ओडिशा के हिस्सों में आज और कल शदीद से इंतहाई शदीद बारिश होने की वार्निंग जारी की है। आज कालाहांडी, नबरंगपुर, कोराहाट और मलकानगिरी के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है और नबरंगपुर के लिए कल भी वार्निंग जारी की गई है। लोगों से अपील की गई है कि वो इंतजामिया की जानिब से जारी की गई एडवाइजरी पर अमल दरामद करें। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए नीतिका त्यागी।
0: जापान में एशियाई खेलों में ओलंपिक में तमगा जीतने वाली मीराबाई चानू ने खवातीन के 49 किलोग्राम जुमरे के वेटलिफ्टिंग मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल करते हुए एशियाई खेलों का अपना पहला तमगा जीता। इसके साथ ही भारत के तमगों की मजमू तादाद 9 हो गई। भारत की 3 खिलाड़ियों महेश्वरी चौहान, प्रीनाज धालीवाल और रायसा ढिल्लो ने खवातीन की टीम के स्कीट निशानेबाजी के मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। एक दूसरे मुकाबले में मर्दों के सॉफ्ट टेनिस में भारत के जयमीना ने इस खेल में अपना पहला तमगा जीतकर तारीख रकम की। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली में ब्रिक्स टैक्स सरबराहान के इजलास का इफ्तिताह किया और आलमी सतह पर होने वाले टैक्स मुजाकरात में ब्रिक्स की मजबूत आवाज की जरूरत पर जोर दिया। भारतीय रेलवे ने पहली मरतबा जनूब वस्ती रेलवे पर कवच 4.0 नस्ब करने का अमल शुरू किया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने पूरे मुल्क में आवामी सेहत की सहूलियात तक रसाई को तब्दील करने के 8 साल मुकम्मल कर लिए हैं। खलीज बंगाल के ऊपर बना हवा का गहरा दबाव साहिल के करीब आ रहा है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के साहली इलाकों में शदीद बारिश जारी है और एशियाई खेलों 2026 में जापान में भारतीय मर्दों और खवातीन की स्कीट टीमों ने कांसे के तमगे जीते। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में चांदी का तमगा हासिल किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: फौजी वीरो एक बार फिर स्वागत है थोड़ा अपना प्रोग्राम फौजी वीरा लैके थोड़ा रेडियो बिल्ली गौरव हाजिर है। हुण जिहड़ा गीत तुहानू सुनाउण जा रहा ना, यह वो गीत है जिहड़ा पिछले कुछ दिनों दे विच सारयां दे दिलो दिमाग ते छाया होया है और बिलबोर्ड ग्लोबल ते ना इहनू पहला स्थान भी मिलिया और ये चार्ट दे विच चौथे नंबर तक पहुँच के इतिहास बनाया इन्हें। ग्लोबल वायरल की गल करा तो पहले स्थान पर पहुँचे, बिलबोर्ड ग्लोबल की गल करा तो चौथे नंबर पर। बहुत वड्डी गल है। ऐ मैं जिस गीत की गल कर रहा हूँ वह गीत है फिल्म सैयारा का। जी हाँ, सैयारा का यह गीत ब्लॉकबस्टर बनेगा और ब्लॉकबस्टर बनेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि कश्मीर तो बॉलीवुड तक का 14 दिन का सफर ये शामिल होंगे। इस गाने के जड़े गायक ने और सह संगीतकार फहीम अब्दुल्ला ते अरसलान निजामी दोनों कश्मीर के रहने वाले ने और अरसलान सिविल इंजीनियर ने अपनी नौकरी छड़ के फहीम के नाल उन्होंने संगीत दे विच अपनी किस्मत अजमान लई मुंबई पैर पाए सन और दोनों के कोल मुंबई रुकन लई सिर्फ 14 दिनों के पैसे बचे सी। 13वें दिन उन्हां दी जिहड़ी भेंट हुंदी है ना वो तनिष्क बागची नाल हुंदी है और यह जिहड़ा ट्रैक फाइनल किया जाता है। देखो किस्मत किदां तुहानूं मिलांदी है जदों उन्हें कोई काम कराना हुंदा और फिर तिन्हां ने मिल के एक गीत नूं कंपोज किया और इहदे विच तुसीं देखो कश्मीरी लोक संगीत ते जिहड़ा इंडी रॉक है उहदा एक कंबीनेशन देखण नूं मिलदा है और जादू वखेरिया इरशाद कामिल दे बोलां ने और मोहित सूरी जिन्होंने आशिकी टू और एक विलन जैसी फिल्म का शानदार संगीत दिता है ना। सैयारा फिल्म का निर्देशन उन्होंने किया है। सुनिए फिर वो गीत जी इन्नी असी गलबात की है फिल्म सैयारा चो लिया गया ये गीत है।

0: जी फाची मेरो एक गीत तुसी सुन रहे सी फिल्म सही आ रहा तो और प्रोग्राम चल रहा है थोड़ा सारे दा अपना पसंदीदा फौजी वीरा लई ते एक छोटा जा अंतराल छोटे जे ब्रेक तो बाद एक बार फिर मिलते हैं।
1: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनूं एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
4: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
4: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, एचआईवी किवें फैलदा है?
2: एचआईवी
4: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, एचआईवी किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
4: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, एचआईवी किवें फैलदा है?
2: एचआईवी
4: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, एचआईवी किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
0: जी फौजी वीरो, अगला जिहड़ा गीत सुनान जा रहे हैं ना, उस गीत नूं लिया गया फिल्म फाइटर दे विच्चों, और इहदे च ओ हीर दी गल करदे ने, लेकिन इह ओ हीर नहीं है जो वारिस शाह ने लिखी है। ਇਹ ਉਹ ਹੀਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਫੌਜੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਪਰਾਕ ਦਾ ਦੇਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਦਲਾਨੀ ਔਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਸਟਰਨ ਰੌਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਗਿਟਾਰ ਰਿਫ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੀਤ।

0: ਇਸੇ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਵੀਰੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਬੇਲੀ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, युवाओं के प्रयासों से भारत वर्ष 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक का उद्घाटन किया। वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच के चौथे चरण की शुरुआत की। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 8 वर्ष पूरे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा। और जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला इसकी टीमों को कांस्य पदक। जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस का कांस्य पदक हासिल कर इतिहास रचा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि युवाओं के प्रयासों से भारत वर्ष 2047 से पहले ही विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वडोदरा में आज महाराजा सयाजी राव बड़ौदा विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने ये बात कही।
2: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्यों को लेकर देशवासी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भारत जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचे, ऐसा भारत जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि आज हर क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से AI की नई तकनीक, इंटरनेट और डेटा का उचित उपयोग करने का आह्वान किया।
2: टेक्नोलॉजी को अपनाने समय आपका विवेक होना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान दे सकता है, लेकिन सही प्रश्न पूछना आपका कर्तव्य होना चाहिए। टेक्निक आपको गति दे सकती है, लेकिन ये तय करना है, आपका काम है कि आपको किस दिशा में जाना है।
1: राष्ट्रपति ने शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की प्रशंसा की।
2: बेटी देश के लिए काम कर रहे हैं, आगे पीढ़ी को बनाने में। घर पे रह करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाना, उनके भविष्य तैयार करना, ये भी तो देश का काम है। चाहे वर्कफोर्स में आप दिखाई दे या ना दिखाई दे।

0: लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयासरत है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की और 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू आज वडोदरा में ब्रह्म कुमारी संस्थान के वैश्विक आध्यात्मिक पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति विश्व नवीकरण के लिए आध्यात्मिक जागरण परियोजना का शुभारंभ करेंगी। वे विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक के उद्घाटन सत्र में वित्त मंत्री ने ये बात कही। उन्होंने वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि कर प्रशासन कागजी प्रक्रियाओं से डेटा आधारित और डिजिटल प्रणालियों की ओर बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने इस वर्ष ब्रिक्स कर सत्र से उभरने वाली तीन व्यापक क्षेत्रों प्रौद्योगिकी प्रशासन और लोगों की पहचान के बारे में जानकारी दी।
2: Look at what has emerged from the BRICS.
3: इस साल ब्रिक्स के टैक्स ट्रैक में विशेष रूप से टेक्नोलॉजी, डेटा का इस्तेमाल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा सटीक और आसान बनाया जा सके और ये लोगों के मनमाने फैसलों पर कम निर्भर रहे। प्रशासन, गवर्नेंस का ढांचा, साझा मानक और व्यावहारिक टूल्स, ये सब मिलकर सहयोग को एक मजबूत संस्थागत रूप प्रदान करते हैं।
2: A durable institutional shape.
1: श्रीमती सीतारामन ने कहा कि बैठक में दो नए कार्य समूहों अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण तथा राजस्व सांख्यिकी के लिए प्रारंभिक दस्तावेजों पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच का चौथा चरण की शुरुआत करते हुए रेल सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि हैदराबाद मंडल के मलकानगिरी कामारेड्डी रेलखंड पर 104 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर कवच संस्करण को अपग्रेड करते हुए चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: कवच भारत में विकसित की गई एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिसका उद्देश्य रेल संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। यह प्रणाली लोको पायलट को ट्रेन की निर्धारित गति सीमा में चलाने में मदद करती है। यदि किसी स्थिति में लोको पायलट समय पर ब्रेक नहीं लगाता तो जरूरत पड़ने पर कवच अपने आप ब्रेक लगा सकता है। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य खतरनाक परिस्थितियों में ट्रेन की गति को नियंत्रित करना, ट्रेनों के बीच टक्कर के जोखिम को कम करना और खराब मौसम और कम दृश्यता जैसी परिस्थितियों में ट्रेन संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। दक्षिण मध्य रेलवे पर कवच 4.0 का सफलतापूर्वक संचालन शुरू होना भारतीय रेलवे की स्वदेशी सुरक्षा तकनीक को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने कहा कि 8 वर्ष पहले यह योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। एक रिपोर्ट।
6: आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में 13 करोड़ से अधिक लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है, जिस पर सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। इस योजना के तहत 38,000 सरकारी और निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है और यह योजना देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इससे देश भर में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल रही है और गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा भी मिल रही है। हाल ही में मोदी सरकार ने इस योजना का लाभ 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के साथ साथ 37 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवारों तक भी बढ़ाया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद

0: जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और संतुलित आहार, अनुशासित दिनचर्या, अच्छी नींद, योग और प्रकृति के साथ सामंजस्य के माध्यम से स्वास्थ्य बनाए रखने का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। नागपुर में 11वें आयुर्वेद दिवस के राष्ट्रीय समारोह में श्री जाधव ने कहा कि इस वर्ष के आयुर्वेद दिवस का विषय एक स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद है। आयुर्वेद से जुड़ी जीवन शैली के महत्व पर बल देते हुए श्री जाधव ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल का पहला केंद्र घर है और स्वास्थ्य की पहली नींव केवल दवाओं से नहीं बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
1: पीएम स्वनिधि योजना से तेलंगाना में विक्रेताओं को आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन में मदद मिली है। ये योजना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, मार्च 2023 तक बढ़ाई गई इस पहल के तहत 10,000, 20,000 और 50,000 रुपए की तय किश्तों में बिना गारंटी के ऋण दिए जाते हैं। शहरी स्थानीय निकायों और राज्य स्तरीय बैंकर समिति के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लागू की गई इस योजना में तेलंगाना लगातार देश में बेहतर प्रदर्शनकर्ताओं में शामिल रहा है। राज्य में लगभग 4,47,000 विक्रेताओं तक 1,240 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पहुंची है। खास बात यह है कि स्थानीय लाभार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 65% है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की प्रशंसा की है, क्योंकि इसने विक्रेताओं के परिवारों की आय में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है और लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है।
2: पीएम स्वनिधि ने देश के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल सिस्टम से जोड़ा और अब इन साथियों के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है, यानी इनके पास एक फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस का टूल है। और स्टडीज बताती है कि स्वनिधि के इन बेनिफिशियरीज की एवरेज एनुअल इनकम 20% से ज्यादा बढ़ी है। यही नहीं, इससे इन परिवारों की हाउसिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एक्सेस और बच्चों की एजुकेशन, इनमें भी बहुत सुधार हुआ है।
1: करीमनगर के सब्जी विक्रेता रमेश ने पीएम स्वनिधि के तहत मिलने वाले लोन का इस्तेमाल करके अपने छोटे से कारोबार को बढ़ाया और अब वे रोजाना 1,00,000 रुपए का स्टॉक रखते हैं।
3: माय नेम इज रमेश।
4: मेरा नाम रमेश है। पिछले 3 सालों से मैं करीमनगर में सब्जी का कारोबार कर रहा हूँ। पीएम स्वनिधि योजना की मदद से मुझे 10,000 रुपए का पहला लोन मिला। मैंने इसे 12 महीनों के अंदर सफलतापूर्वक चुका दिया। इसके बाद 20,000 रुपए का दूसरा लोन मंजूर हुआ, मैंने उसे भी 22 महीनों में चुका दिया। अभी 50,000 रुपए का लोन चल रहा है। मैं हर महीने बैंक की किस्तें समय पर चुका रहा हूं। जिस कारोबार को मैंने 10,000 रुपए से शुरू किया था, वो अब इतना बढ़ गया है कि मैं रोजाना 1,00,000 रुपए का स्टॉक रखता हूं।
3: स्टॉक वर्थ 1,00,000 रुपए।
1: लचीले और बिना ब्याज वाली पूंजी के लिए UPI लिंक्ड रुपए स्वनिधि क्रेडिट कार्ड शुरू करने के साथ ये कार्यक्रम अनौपचारिक कर्ज के चक्र को खत्म कर वित्तीय सम्मान और सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है। हैदराबाद से श्रीनिवास एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान और फ्रांस के विदेश मंत्री जियां नोएल बेरोट ने न्यूयॉर्क में त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। तीनों नेताओं ने संस्कृति और विरासत सहित आपसी हित के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे निम्न दबाव के कारण उड़ीसा में मौसम खराब है। यही स्थिति उत्तर आंध्र प्रदेश, दक्षिण उड़ीसा तट की ओर बन रही है। इसके चलते राज्य के दक्षिणी और तटीय जिलों में तेज बारिश हो रही है।
6: राज्य सरकार ने उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 33 टीमें तैनात की है और चक्रवात और बाढ़ आश्रय स्थलों को तैयार रखा गया है। कई संवेदनशील जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए

0: सेहत के तौर पर कंधमाल में कलिंगा घाट को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो उफान पर चल रही नदियों और नालों से दूर रहे और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करें। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के जय मीणा ने आज सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने एशियाई खेलों में निशानेबाजी की स्कीट स्पर्धा के महिला और पुरुष वर्ग के कांस्य पदक भी जीते। अनंतजीत सिंह नरुका, मेहराज अहमद खान और भवदेव सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में महेश्वरी सिंह, परिनाज धालीवाल और रायजा ढिल्लों की भारतीय टिकड़ी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 23 के मुकाबले 37 अंक से हराया। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 21 के मुकाबले 42 अंक से मात दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में महिला इसकी टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर परिनाज धारीवाल, रायजा ढिल्लों और महेश्वरी चौहान को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, युवाओं के प्रयासों से भारत 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक का उद्घाटन किया। वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच के चौथे चरण की शुरुआत की। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 8 वर्ष पूरे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस की विदेश मंत्रियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। और जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मन की बात माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करनगे अपने मन की बात एतवार 27 सितंबर दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करनगे नालों नाल नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी किया जाएगा प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज डीटीएच दी एआईआर पंजाबी सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज ते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी 138वीं कड़ी
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से आकाशवाणी का ये जलंधर केंद्र है और आओ शुरू करते हैं लोग गीतों का साड़ा प्रोग्राम रंगली धरती जिदे विच आज ओम प्रकाश सिद्धू ते उन्होंने साथियों वालों गाए लोग गीत तुहानू सुनाए जाएंगे जिदी शुरुआत करन जा रहे हैं किस्सा पूरन भगत का इस लोग गीत नाल बस इस छोटे जे अंतराल तो बाद
2: जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा कौन रचेगा इतिहास कौन चुम्मेगा जित दा सिखर भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम ये सब जानण लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तों 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तों 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर दे वक्-वक् चैनल्स ते एफएम रेनबो प्राइमरी चैनल डीआरएम ते डीटीएच चैनल्स ते इहदे नाल नाल

मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करनगे अपनी मन की बात एतवार 27 सितंबर दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नू प्रसारित करनगे नालो नाल नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी किया जाएगा प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज़ डीटीएच दी एआईआर पंजाबी सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़ एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज़ अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ ते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी 138वीं कड़ी।

0: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिलिया जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, मलेरकोटला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मानसा, फिरोजपुर, मोगा अते फरीदकोट लई कॉन्ट्रैक्ट आधार ते पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट्स दे अहुदे लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मंग कीती जांदी है। अर्जी फार्म लैण अते भेजण लई पता हेड ऑफ ऑफिस आकाशवाणी नेड़े बीएमसी चौंक जलंधर ए। उम्मीदवार अर्जी फार्म समेत वधेरे जानकारी आकाशवाणी दी वेबसाइट www.newsonair.nic.in ते जाके वैकेंसी कॉलम तो भी डाउनलोड कर सकदे ने। अर्जियां भेजण दी आखरी तारीख 7 अक्टूबर 2026 है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार नहीं है।
1: प्रोग्राम चल रहा है रंगली धरती और आओ सुनते हैं ओम प्रकाश सिद्धू का गाया हुआ मैया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों नूं एआई दी नवीं तकनीक इंटरनेट अते डाटा दा सही इस्तेमाल करन दी कीती अपील। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा, टैक्स प्रशासन कागज तो डाटा संचालित अते डिजिटली संचालित प्रणाली दे वल रहे वध। पंजाब दियां पंज सहकारी खंड मिलां माली प्रबंध गन्ना विकास अते तकनीकी कुशलता दे लई राष्ट्रीय अवार्ड दे नाल सन्मानित। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के सदे से बैंकों की 28 तो 30 सितंबर की हड़ताल के मद्देनजर सारे निजी खेत्र और खेतरी दिहाती बैंकों के 27 सितंबर एतवार को होगा कामकाज। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने अज 8 साल किए पूरे ते पंजाब राज मानसिक सेहत अथॉरिटी के फैसले के मुताबिक पंजाब भर के चल रहे सारे 83 निजी मनोविज्ञानिक नर्सिंग होम क्लीनिक अपने आप को रजिस्टर करना होगा लाजमी। अज पंजाब समेत देश भर के मनाया जा रहे 11वां राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस से पंजाब का सूबा पदरी समागम पटियाला स्थित सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज के विच। भारतीय जनता पार्टी के वलों करवाई जा रही नशा मुक्त पंजाब यात्रा अज अमृतसर के अजनाणा विधानसभा हल्के विच पहुंची। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने वोटर सूची की विशेष गहन सोध SIR 2026 को सफलता के नाल किया पूरा। ओलंपिक तमगा जेतू मीरा बाई चानू ने जापान के एशिया खेडों के औरतों के भार चुकन के मुकाबले की 49 किलोग्राम श्रेणी के जितया चांदी का तमगा।

प्रोग्राम चल रहे चिट्ठी मिठी बोलते टीम के पंजाब आज की जो गल करिए बहुत ही स्पेशल दिन है। अज है कौमांतरी संकेत भाषा दिवस। इस दिन का एक खास मकसद है कि संकेत भाषा की भी एक महत्ता है, जागरूकता के बारे पैदा करना। जो

एड्स सब हाथ रहे हैं आपको, तो वैशाली शनेश गंभानकर, सुमित गंभानकर, कुमारी धोनी गंभानकर, परी इन्हों का करता नाम, तो सुंदर खेड़ राजमाता नगर बुलडाणा महाराष्ट्र, तो नरेंद्र नरवाणे, ज्योति आकांक्षा, आकाश कुमार इन्हों सुरेंद्र सिंह अनीता, रोहित रितेश, शिखा प्रतिशा, मैक्स लिख रहे हैं जी कुलाम रोड हरगोबिंद नगर नवा शहर तो चिट्ठी, तो फरमाइश है सारे रणजीत बाबा की खूबसूरत आवाज़।

प्रोग्राम चल रहे चिट्ठियां मिठियां ते तुसी टीम कीता है ए पंजाब डब वाली हरियाणा तो जेके बकवालिया श्रीमती सुनीता बकवालिया संजानिया ते मीनू बकवालिया चिट्ठी लिख रहे ने छत्तीसगढ़ दतरेंगी तो भागवत वर्मा लेवई तो गुलाबदास मानकपुरी लक्षणपुर तो विश्वनाथ साहू चरण डोंगरी पिपरिया तो दुर्गा राम साहू ते पिंड हरियाणा दा रायपुर डब्बा ते लिखण वाले ने जी मक्खण सिंह फौजी बुट्टा बब्बी शनि ते बली ते बाकी सारा लद्दड़ परिवार ते रूपला नाहर शेखर नाहर हरियाण नाहर अंबा मंत्री ते परमिंदर राजा अपरा सिटी तो यह चिट्ठी एक राजा ते एक मंत्री ते लिखण वाले ने जी रिंगी छत्तीसगढ़ तो दिनेश वर्मा ते करुणा वर्मा ते लिखण वाले ने जी मक्खू फिरोजपुर तो बिल्ला बजाज हैप्पी कपूर फिरोजपुरी मनीष बजाज तेरा ते साथी फरमाइश ने सारे की गोल्डी की खूबसूरत आवाज़।

लेता हुए एयर पंजाब ते गुरु रविदास नगर मलोट तो है चिट्ठी नानक चंद ते बंटी कुमार ते सुनील कुमार ते विजय कुमार ते रवि कुमार जसल ते लिखण वाले ने जी सहारनपुर तो आशा नरंग ते सुरेश नरंग ते टालीवाला जट्टा तो साहेब सिंह सुखजीत कौर बलविंदर हरजिंदर ते गिदड़वाहा तो मनजीत तनेजा ते परवीन तनेजा मलोट तो जगतार गिल परमजीत कौर गिल ते गैवी ते अमन गिल ते सुखबीर सिंह छाजली तो इन्हों के बोर्जा सिधवा मलोट तो सरबजोत सिद्धू अविताज सिद्धू जगतार जग्गा तौरा किंगरा तो इन्होंने रिंगी छत्तीसगढ़ तो दिनेश वर्मा करुणा वर्मा ते पिंड है पजोनिया ते जिला है इन्हों का जालौन उत्तर प्रदेश तो है चिट्ठी सत्येंद्र कुमार चंसौलिया ते आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया इन्हों का नाम ते फरमाइश सेंटर की खूबसूरत आवाज़

आकाशवाणी अपने सारे श्रोतियों का एक बार फिर निघा स्वागत करती है। सभा की शुरुआत आओ झात मारते हैं हूं तक।

तो इसे सुन रहे थी फिल्म कन्यादान चले आ गया, मोहम्मद रफी दा ए अमर गीत। अगला जड़ा गीत तुम्हें सुना जा रहे हैं ना, वो भी गीत सदाबहार गीतों की जी है फहरिस्त सूची है ना, ये हमेशा लिए दर्ज है। इस गीत में गाया किशोर कुमार होर ने और फिल्म है मिस्टर एक्सन बॉम्बे। ये नाम अंग्रेजी लगता है लेकिन फिल्म हिंदी है। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने इनू संगीतबद्ध किया और आनंद बख्शी ने कलमबद्ध किया। तो आओ फिर सुनिए ये गीत।

चल रहा है सदा बहार गीत। और अगला गीत जरा साझा करन जा रहे हैं उन गाया मुकेश ने, फिल्म है आवारा, संगीत बद किया है शंकर जयकिशन ने और लिखा है शैलेंद्र ने। शैलेंद्र दे बोल और शंकर जयकिशन दा अंदाज, फिल्म आवारा, मुकेश की आवाज़।

साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी बहु उपदेशात्मक है। इस बाणी विचों मनुख मातर नूं आदर्शक बनन वास्ते सुचज्जी जीवन जुगत प्राप्त हुंदी है, जिसका अनुसरण करके मनुख मर्यादा विच रहिंदा है ते अनुशासित रहिंदा होया सफल जीवन बतीत करता है। ये तां ही संभव हुंदा है जेकर संग चंगा होवे। कानड़ा राग विच पंचम दातार फरमाउंदे ने कि संत जना दी संगत विच सहज अवस्था विच विचरदे हुए प्रभु दे गुणा दी बात करनी चाहीदी है ते सर्वव्यापी ते सर्वउच्चे नूर परमेश्वर दा नाम सिमरदिआं हलत पलत विच इज्जत माण हासिल कर लईदा है। साध संग विच आवागमन दी पटकणा मुक जांदी है, ए थकेवा नहीं हुंदा। कथी है संत संग प्रभ ज्ञान, पूरन परम जोत परमेसर सिमरत पाई है मान। सरवण करदे हां भाई दिलबाग सिंह ते भाई गुलबाग सिंह होरां दे रागी जत्थे वलों गायन कीता होया ए शब्द।

कथी है संत संग प्रज्ञान, पूरन परम ज्योत परमेसर सिमरत पाई है मान। इस शब्द गायन की तसी पाई दिलबाग सिंह ते पाई गुलबाग सिंह होरां दे रागी जत्थे ने। हरकियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया, बलिहारी गुर अपने गुर कौ बल जाइया। इस महावाक मुताबक करते क्या बातां गुरु के मीत अर्थात संत जना पास जाके ही सरवण करनु मिलदियां ने। बिलावल राग विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी सत संगत दी महिमा बयान करदे ने कि प्रभु की बात करते क्या बातां सिर्फ सत पुरशां दी संगत विच ही सुनन नु मिलदियां ने, जिथे दिने रात लगातार प्रभु दी सिफत सलाह गुण गायन कथा विचार दियां तुना गूंजदियां ने, ते आत्मिक आनंद दे हुलारियां दी रौं चलदी रहिंदी है। क्योंकि प्रभु कृपा करके अपनी अमुली नाम दी दात जीव नू बख्शदा है, ते वडभागा जीव अठे पैर प्रभु दे गुण गायन करदा होया अपने तन नू विकारां तों मुक्त कर लैंदा है। संतन कै सुनियत प्रभ की बात, कथा कीर्तन आनंद मंगल तुन पूर रही दिनस अर रात। इस शब्द का गायन किया भाई राज बिरेंद्र सिंह होरां ने।

0: संतन के सुनियत रब की बात। आप जी सरवण कर रहे सो पाई राज बिरेंदर सिंह होरां वल्लों गायन कीता होया ए शब्द। हुण सरवण करदे आं इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी सुखविंदर सिंह।
1: ए पावन पवित्र शब्द शहीदां दे सरताज पाणी विच रहण वाले पंजवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग बिलावल अंदर उच्चारण कीता होया साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 820 उत्ते सुभाए मान है। इस पावन पवित्र शब्द दा समुच्चा भाव सतगुरु जी ने रहाउ दियां पंगतियां विच बख्शिश कीता है। बचन हन संतन कै सुनियत प्रभ की बात, सत संगत विच आके प्रभु परमेश्वर दी सिफत सलाह सुनी जा सकती है। कथा कीर्तन आनंद मंगल धुन पूर रही दिन सियर रात रहाओ। सत संगत विच दिन अते रात हर वेले प्रभु जी दियां कथा कहानियां कीर्तन हुंदा है, जिस विचों आत्मिक आनंद खेड़े दी एक धुन पैदा हुंदी है। संगत दी बहुत वड्डी महत्ता मनुखी जीवन विच है। संगत दा प्रभाव बहुत वड्डा है। आम कहावत भी है, जैसी संगत वैसी रंगत। भाई सह भाई गुरदास जी ने भी जदों चंगी अते मंदी संगत दा जिक्र कीता तां उन्हां ने भी अपने 549 नंबर कवित विच दर्ज कीता, फरमान है, काहू दशा के पवन गवन कै बरखा है, काहू दशा कै पवन बादर बिलात है। किसे दिशा दी हवा चलण नाल वर्खा पै जांदी है अते किसे दिशा दी हवा चलण नाल बदल उड़ जांदे हन, मीह बंद हो जांदा है। काहू जल पान किए रहत अरोग देही, काहू जल पान व्यापै बिरथा बिललात है। किसे जल नू पीण दे नाल रोग दूर हुंदा है, शरीर अरोगी हो जांदा है अते किसे जल नू पीण नाल शरीर रोगी हो जांदा है, जीव करलौंदा है, रोंदा है। काहू ग्रह की

अगन पाक साक सिद्ध करे, काहू ग्रह की अगन भवन जरात है। रसोई विच बलदी अग भोजन आदि तैयार करती है, पर अग ही है किसे घर जंगल आदि नू साड़ भी देंदी है। उसे तरह भाई गुरदास जी संगत की शोभा का जिक्र करते हैं, काहू की संगत मिल जीवन मुक्त होए, काहू की संगत मिल जमपुर जात है। किसे साध संत रब्बी प्यार विच भिजे की संगत विच कोई मिल जाए तो जीवन मुक्त हो जाइदा है, अते किसे माड़ी मत बुद्ध वाले पुरश की संगत विच बैठिया जीवन खुआर हो जाइदा है। इसलिए सतगुरु जी बचन कर रहे हैं, भाई सत संगत विच आके प्रभु की सिफत सलाह कीतिया जीवन परम पद तक पहुँच जाता है। गुरु अर्जन देव जी अंग 10 उत्ते फरमान करते हैं, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया। सतगुरु जी शब्द विच अगे बचन कर रहे हैं, कर किरपा अपने प्रभ कीने, नाम अपने की कीनी दात। जेड़े संत जन संगत विच आउंदे हन, प्रभु दी मेहर हो जांदी है, प्रभु उन्हां नू अपने सेवक बना लेंदा है। ऐसे रब्बी प्रीत विच भिजे सेवकां नू प्रभु अपनी सब तो उत्तम दात, श्रेष्ठ दात, नाम दी दात बख्श देंदा है। जिन्हां सेवकां कोले दात हुंदी है, ओ सेवक आठ पहर गुण गावत प्रभ के, काम क्रोध इस तन ते जात। ओ सेवक अठे पहर प्रभु दे गुण गाउंदे हन, उन्हां दे गुण गाउण दे नाल इस शरीर विच्चों काम क्रोध आदिक पंज विकार दूर हो जांदे हन, क्योंकि नाम दी बरकत नाल अंदर दी मैल कट्टी जांदी है, जीवन अंदरों अते बाहरों बिल्कुल निर्मल हो जाता है। गुरु अमरदास जी राग श्री राग विच अंग 69 ते फरमान करते हैं, सतगुर सेवे हैं मन निर्मला, भय पवित शरीर मन आनंद सदा सुख पाया, भेटिया गहर गंभीर सच्ची संगत बैसना, सच नाम मन धीर। सतगुरु जी शब्द विच अगे फरमाउंदे हन, त्रिपत अकाए पेख प्रभ दर्शन, अमृत हर रस भोजन खात। रब्बी प्यार विच भिजे रब्बी प्यारे नाम दे रंग विच रंगे होए प्रभु दे दर्शन करदे हन, ओ रब्बी दर्शन करके पूरी तरह रज जांदे हन, ओ सदा ही नाम दा भोजन छकदे हन। जिमें शरीर लई चंगा भोजन जरूरी हुंदा है, उसे तरह ही रब्बी रंग विच रंगे मन लई भजन जरूरी हो जांदा है। चरण शरण नानक प्रभ तेरी, कर किरपा संत संग मिलात। पंजवें जामे विच गुरु नानक देव जी आखदे हन, हे प्रभु जेड़े मनुख तेरे चरण कमलां नाल जुड़ जांदे हन, उन्हां नूं तू किरपा करके सत संगत विच मिला देंदा है। जिन्हां दे मिलाप सदका मैं भी तेरे गुण गाउंदा हाँ। गुरु अर्जन देव जी तो रोज़ सोहिला साहब की बाणी विच पुकार करते हैं, अंतर जामी पुरख बिधाते शरदा मन की पूरे। हे हरेक दे दिलां दे जानन वाले अंतर जामी प्रभु जीओ, मेरे मन की एक इच्छा जो पूरी कर, नानक दास एह सुख मांगै मोको कर संतन की धूरे। दास नानक तेरे कोलों यही सुख मंगदा है कि मैनू रब्बी प्यार वालियां दे चरणां दी धूड़ बना के उन्हां दे कोल रहण दा बल बख्श, तां कि मैं भी तेरे नाल जुड़ सकां। श्रोमणी भगत कबीर जी अंग 481 उत्ते राग आसा विच बचन करदे हन कि सत संगत विच बैठिया ओ बवेक

पूछो संत मेरो ठाकुर कैसा, हेऊं अरापाऊं देहो संदेसा। इस शब्द गायन की तसी पाई मोहिंदरजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जैगवार, हॉक और सुखोई 30 एमकेआई जैसे विमानों से दागा जा सकता है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। इसमें 60% स्वदेशी सामग्री होगी। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इसके वायुसेना में शामिल किए जाने से उसकी परिचालन क्षमता बढ़ेगी। इससे देश की रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ त्रिपक्षीय बैठक में शामिल हुए। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। तीनों नेताओं ने संस्कृति और विरासत सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक में उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं और उन्होंने महत्वपूर्ण घरेलू कर क्षमता का निर्माण किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मकुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को ऐसी युवा शक्ति की आवश्यकता है जो ईमानदारी, जिम्मेदारी, करुणा, सह अस्तित्व और देशभक्ति की भावना से प्रेरित हो।
1: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सबकी जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त हो, साथ ही वे आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: इससे पहले राष्ट्रपति ने वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पिछले 12 वर्ष में 23,000 से अधिक पदोन्नतियों को स्वीकृति दी है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को काम के लिए एक बेहतर और अनुकूल माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे प्रेरित रहें और अपने दायित्वों को प्रभावी ढंग से निभा सकें। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के रविवलसा के पास रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 विद्यार्थी मारे गए और एक अन्य घायल हो गया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री नायडू ने अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली और घायल विद्यार्थियों के बेहतर उपचार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी नाउरुम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलो के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुम निंगा तियास को हराया। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारतीय उल्लक मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता। जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस के सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। निशानेबाजी में स्केट स्पर्धा में महिला टीम और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। भारत 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ 13वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 874 किलो हर्ट्स, डीआरएम 854 किलो हर्ट्स, डीटीएस दी एयर पंजाब सेवा दाए जलंधर केंद्र है। तुसी साड़े प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साड़े स्टूडियो की कड़ी ते 6:05 हो

पर तो सुनोगे जन सेवा से देश सेवा दे रहित विशेष प्रोग्राम। सतवज के 45 मिनट पे हिंदी वार्ता प्रोग्राम च वार्ता सुनोगे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनवर्ते। वार्ताकार होंगे डॉक्टर नीलम जुलका। उस फौरन बाद

की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करेंगे अपनी मन की बात एतवार 27 सितंबर दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नु प्रसारित करेंगे नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी किया जाएगा प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज डीटीएच दी एआईआर पंजाबी सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज ते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी एक

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी।

0: अपने जिलिया जा सूबे तो परे घर बैठे ही एक नवे बाजार तक पहुंच नू यकीनी बनाया। राजेश बाली, आकाशवाणी खबरां, जलंधर।
1: ये खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साड़ा एक्स हैंडल है @radioirnu जलंधर, यूट्यूब से साड़ा चैनल है @radioir जलंधर। चंडीगढ़ में नशा मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बनाने लिए शहर भर के घरों का घर घर सर्वेखण जल्द ही किया जाएगा, ता जो उन्होंने व्यक्तियों के परिवारों की पछाण की जा सके जिन्होंने नशे संबंधित मुद्दों नजिठण लिए मदद की जरूरत है। एक गल पंजाब के राज्यपाल ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में नशा विरोधी हैल्पलाइन नंबर की शुरुआत करद आखी। ए मानस हैल्पलाइन नंबर 1933 तो इलावा मोबाइल नंबर 82 38 40 100 ने। उन्होंने कहा कि लोगों की भागीदारी मुहिम का सब तो महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने अगे आन नशा तस्करी ते नशे की दुरवरतों के मामलों की रिपोर्ट करन ते समर्पित हैल्पलाइन राही मदद लैन की अपील की। उन्होंने कहा कि कॉल करने वाले जां शिकायतकर्तावां की पछाण ते संपर्क वेरवे पूरी तरह गुप्त रखे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वालों शुरू की गई नशा मुक्त पंजाब यात्रा नूं सूबे भर विच लोकां वालों भरवां हुंगारा मिल रहा है। सीनियर केंद्रीय आगू अनुराग सिंह ठाकुर अज जिला रूपनगर विखे नशा मुक्त यात्रा की अगवाई करन ते लोकां नूं नशे खिलाफ जागरूक करन लई उचेचे तौर ते पहुंचे। उन्हां दे नाल सीनियर आगू इकबाल सिंह लालपुरा समेत पंजाब बीजेपी की सीनियर लीडरशिप भी मौजूद रही। इस मौके श्री ठाकुर ने कहा कि हुण समा आ गया है कि पंजाब नूं नशे तों बचाउण लई सूबे दे लोकां नूं इकट्ठा होना होगा।
2: आम आदमी पार्टी पूरी तरह फेल नशा मुक्त पंजाब करन लई होई है, इस तो कोई दो राय नहीं। दूजा इत्थे गैंगस्टर दी गैंग वॉर ते फिरौती ए बहुत वध गई। तीसरा इत्थे भ्रष्टाचार भी बहुत वध गया। चौथा इत्थे जिहड़े जनता ने वायदे कीते पूरे नहीं कीते गए। पंजवां पंजाब नूं नशे दे नाल नाल करजे च भी डबोता है। छेवां कमां ते किसानां नूं कहा सी केंद्र देवे ना देवे बाकी सारियां फसलां ते पंजाब MSP देगा। केंद्र ने तां MSP दित्ता, पंजाब दी सरकार ने नहीं दित्ता। भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय करेगी पंजाब दे हित करे, क्योंकि पंजाब दे नौजवानां नूं चंगा भविख देण दी ते पंजाब नूं नशा मुक्त करन दी असीं सौं खाधी है ते सौं ते खरे उतरांगे।
1: उधर श्री मुक्तसर साहब जिले दे लंबी तो नशा मुक्त पंजाब यात्रा पहले गेट लई रवाना हुई। इस दौरान अमृतसर दे अजनाला विधानसभा हल्के विच भी अज इस यात्रा दा भरवां स्वागत कीता गया। जिला मानसा विच बीजेपी वल्लों नशियां खिलाफ चलाई मुहिम दी चुनी रैली तो वापस परतदे हुए पार्टी वर्करां दी कार नूं पिंड कोट तमू नेड़े एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दित्ती, जिस विच एक नौजवान दी मौत हो गई ते पंज बीजेपी नेता जख्मी होए ने। इस संबंधी मानसा बुटलाडा ते बोहा च होण वालियां रैलियां रद्द कर दित्तियां गईयां ने। बीजेपी दे जिला जनरल सकत्तर मुनीश बब्बी दानेवालिया ने दस्सिया कि इस हादसे विच रमदित्ते वाला वासी अर्शदीप सिंह दी मौत हो गई है, जदकि बीजेपी नेता विनोद कुमार काली गंभीर रूप च जख्मी होए ने। उन्हां नूं लुधियाना दे एक हस्पताल विच भर्ती करवाया गया है। राष्ट्रीय महिला कमिशन की चेयरपर्सन विजय रहाटकर आज महिलाओं नाल संबंधित वख-वख मामलों की समीख्या करन ते जमीनी पद्धर ते उन्हां दीआं समस्यावां जानन लई तरन तारण पुजे। अपने दौरे दौरान उन्हां पेंडू विकास भवन विखे करवाई गई महिला जन सुनवाई च महिलाओं दीआं वख-वख शिकायतां ते समस्यावां सुणियां ते संबंधित अधिकारियों नूं इन्हां दे हल लई लोड़ींदी कारवाई करन दे निर्देश दित्ते। संसद मैंबर डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल ने अज फगवाड़ा के भुला राय पिंड विखे मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना तहत योग लाभपात्रियों नूं सेहत कार्ड वंडे। सरकार की प्रमुख सेहत बीमा योजना का जिक्र करदिआं उन्होंने कहा कि योजना की शुरुआत तो हुण तक 1,27,00,000 तो वध सेहत कार्ड रजिस्टर्ड किए जा चुके ने, जिस राही करीब 54,00,000 तो वध परिवार कवर हो गए ने। ते आखर च खास खबरां एक बार फिर तो पंजाब सरकार वालों 8,00,000 मुलाजमान ते पेंशनरां नूं डीए दा 8% वाधा सितंबर दी तनखाह दे नाल मिलेगा, वादे दा नोटिफिकेशन जारी। बैंक यूनियनां दी संयुक्त फोरम वालों 28 तो 30 सितंबर तक बुलाई गई तजवीजशुदा 3 दिना देशव्यापी बैंक हड़ताल दे मद्देनज़र एतवार 27 सितंबर नूं बैंक खुले रहणगे। चंडीगढ़ दे प्रशासक गुलाब चंद कटारिया वालों नशा विरोधी हैल्पलाइन नंबरां दी शुरुआत, लोकां नूं नशा तस्करी दे मामलों की रिपोर्ट करन दी कीती अपील। सीनियर केंद्रीय आगू अनुराग सिंह ठाकुर ने जिला रूपनगर विखे नशा मुक्त यात्रा की अगवाई की। नशा मुक्त यात्रा तो वापस आते हुए बीजेपी वर्करां की कार मानसा विच हादसाग्रस्त, एक की मौत, 5 जख्मी हुए। इस दे नाल ही प्रदेशक खबरां दा यह बुलेटिन खत्म हुंदा है। राष्ट्रीय खबरां दा अगला बुलेटिन तुसी सुनोगे रात 8:30। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। लो हुण पेश है देहाती प्रोग्राम।

0: न्याया के प्रशंसा ही प्रशंसा सुनू ने, कोई मंत्री आता है तो उनके कुछ अच्छा अच्छा बुलवा दो। देखो मैं मंत्री का मतलब ये नहीं मानता कि मैं कोई बड़ा आदमी हूं, मंत्री मतलब अपनी जनता का सेवक होता है, तो मैं तो किसानों का सेवक हूं जी, और किसानों की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है जो काम मुझे मिला है। और इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि बड़ी सभाओं के बजाय पूरे देश में मैं कोशिश करता हूं कि किसानों से बात करूं, खेतों में जाऊं, नए प्रयोग देखें, जो समस्या आती है उसका समाधान कैसे हो सकता है। अभी जो व्यथा आपने यहां प्रकट की, पंजाब वो प्रदेश है जिसने देश पे होने वाले हर हमले के बार को पहले अपने सीने पे झेला है, भारत पे आंच ना आए इसलिए पंजाब ने अपना सीना आगे किया है। पंजाब वो राज्य जहां आज भी अगर आप हमारी सेना में आर्मी में देखें तो आबादी 2% है, 2%, और फौज में 10% हमारा है। मतलब आज भी देश की सीमाओं की सुरक्षा का मामला होता तो सबसे पहले पंजाब का जवान जाके खड़ा होता है, और अगर मेडल वीरता के मिलते हैं तो मेडल में 50% पंजाब के जवानों को मिलते हैं। तो मैं पंजाब की जनता को बारंबार प्रणाम करता हूं, देश की रक्षा के लिए जब जरूरत थी किसान भाइयों को, ये पंजाब था। एक जमाना था जब हम अमेरिका का लाल गेहूं खाते थे, जिसको शायद वहां के लोग बादल साहब खाते नहीं होंगे, राजेंद्र जी भी बैठे, वो जो लाल गेहूं आता था हम वो खाने पर मजबूर थे। और एक समय ऐसा था जब हमारे प्रधानमंत्री जी को ये कहना पड़ा था कि खाने की कमी है तो एक दिन मत खाओ, व्रत रखो, शास्त्री जी ने कहा था, आपको ध्यान होगा। लेकिन ये पंजाब के किसानों की मेहनत थी कि हरित क्रांति लाके देश के अन्न के भंडार भर दिए, गेहूं कनक की कोई कमी नहीं, तब वो हमारी जरूरत थी। लेकिन आज जो आपने कहा क्राप पैटर्न अगर हमने नहीं बदला, मैं सरकार को भी कह रहा हूं, सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, यूनिवर्सिटी को, केबीके को, वैज्ञानिकों को, सबको मिलो, किसानों, मैं, हमारे बादल साहब बैठे हैं, राजेंद्र जी भी बैठे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के साथी भी बैठे हैं, और मैं सचमुच में आप जो काम कर रहे हैं मुझे जो फीलिंग हुई वो ये हुई कि आप मेहनत से, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो फीलिंग मेरी है कि आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं केबीके के माध्यम से किसानों के लिए, जो यहां बैठ के फीलिंग हुई और किसानों ने बताया तो मुझे अच्छा लगा। और मैं जो यहां आया हूं मैं इसलिए नहीं आया कि प्रशंसा ही प्रशंसा सुनू ने, कोई मंत्री आता है तो उनके कुछ अच्छा अच्छा बुलवा दो। देखो मैं मंत्री का मतलब ये नहीं मानता कि मैं कोई बड़ा आदमी हूं, मंत्री मतलब अपनी जनता का सेवक होता है, तो मैं तो किसानों का सेवक हूं जी, और किसानों की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है जो काम मुझे मिला है। और इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि बड़ी सभाओं के बजाय पूरे देश में मैं कोशिश करता हूं कि किसानों से बात करूं, खेतों में जाऊं, नए प्रयोग देखें, जो समस्या आती है उसका समाधान कैसे हो सकता है। अभी जो व्यथा आपने यहां प्रकट की, पंजाब वो प्रदेश है जिसने देश पे होने वाले हर हमले के बार को पहले अपने सीने पे झेला है, भारत पे आंच ना आए इसलिए पंजाब ने अपना सीना आगे किया है। पंजाब वो राज्य जहां आज भी अगर आप हमारी सेना में आर्मी में देखें तो आबादी 2% है, 2%, और फौज में 10% हमारा है। मतलब आज भी देश की सीमाओं की सुरक्षा का मामला होता तो सबसे पहले पंजाब का जवान जाके खड़ा होता है।
1: किसान मेला होया सीगा जी, किसान मेले दौरान मुख्यमंत्री अवार्ड द्वारा सम्मानित किसानों बारे प्रोग्राम सुनाने हैं, तुहानू
2: सुनाओ जी।
3: मैं बेनती करदा हां कि जो साडे अगां वधू उगे किसान और तुहाडे विचों ओ किसान, असीं उहनां नूं इस मंच तों कर कमलां नाल मुख्यमंत्री साहब अवार्ड प्रदान करन। प्लीज थोड़ा अगे आ जाओ सर। सो मैं साडे प्रबंधकी बोर्ड दे मैंबर डॉक्टर अशोक कुमार जी, चीमा साहब, ढिल्लों साहब विशेष तौर पर भी थोड़ा अगे आ जाण, और सब तो पहला आवाज

0: गुरु अंगद देव ते वैटनरी यूनिवर्सिटी वालों भी वक्-वक् किसानां नूं सन्मानित किया जाता है। और सरदार जरनैल सिंह जी, सरदार जरनैल सिंह जी मुख्यमंत्री पुरस्कार अवार्ड गुणवत्ता भरपूर पशु उत्पाद तैयार करने लई विशेष तौर पर इन्हां दा योगदान जाणिया जाता है। और गुरु अंगद देव ते वैटनरी यूनिवर्सिटी नूं सरदार जरनैल सिंह नूं इनाम प्रदान करते हुए अथाह खुशी महसूस हो रही है। सरदार बलविंदर सिंह मुख्यमंत्री पुरस्कार गावां पालन के किते लई सरदार बलविंदर सिंह जी, पुत्र सरदार सुरजीत सिंह जी जिन्हां ने गावां दा आधुनिक फार्म चला रहे ने और रोजाना 10 क्विंटल दुध उत्पाद करके वधिया दुध उत्पाद करके लोगों के विच दे रहे ने और गुरु अंगद देव वैटनरी यूनिवर्सिटी नूं माण महसूस कर रही है। मुर्गी पालन लई श्री राजेश गर्ग जी, रजेश गर्ग जी सुपुत्र श्री चमन लाल जी 35 साल तो मुर्गी पालन के किते विच लगे हुए ने, गुरु अंगद देव वैटनरी यूनिवर्सिटी नूं इन्हां नूं नाम प्रदान करते हुए अथाह खुशी महसूस हो रही है।
1: तो कल दे प्रोग्राम ते मौसम दी हाल बयानी भी दसो जी फिर।
2: जरूर जी, कल दे प्रोग्राम च सवेरे 6:30 बजे खेतीबाड़ी प्रोग्राम च शहद दीयां मक्खियां दी देखभाल दी जानकारी दित्ती जाएगी। शाम 6:30 बजे किसान वाणी प्रोग्राम प्रसारित किया जाएगा।
1: अच्छा जी।
2: मौसम आम तौर ते खुश करेगा, चेतावनी नहीं है। चलिए जी फिर।
1: चलो जी, जय

0: जी
1: पैन इंडिया बोलते हैं, एक मौका मिला जो कि यहाँ भी 12 साल से उस तरह का जो प्रक्रिया है, वो जो एक्सपेरिमेंट गुजरात में हुआ था उसको लाया गया और आपने स्वच्छता की जिक्र किया। वहां जो मेन कैरेक्टर उसका था निर्मल गुजरात का, वो था कि कम्युनिटी को मिलाया जाए। ये जो स्वच्छता कार्यक्रम है या सरकार के कार्यक्रम है नहीं, ठीक है सरकार अगुवाई करेगा, पॉलिसी बनाएगा, मिशन बनाएगा, पैसा कुछ हो सकता है लगाएगा, लेकिन लोग इसको सम्मान के हिसाब से लें। विलेज कम्युनिटी हो, अर्बन कम्युनिटी हो, पंचायत हो, ब्लॉक हो, ग्राम सभा हो, ये सब ऐसे मिलकर जुड़े कि ये उनका कार्यक्रम है, कि वो उनके बच्चों की हेल्थ के सवाल है, उनकी महिलाओं की इज्जत के सवाल है, सिक्योरिटी के सवाल है, पूरा समुदाय की हेल्थ के सवाल है। और स्वच्छता जो सामने आ जाकर जान नहीं ले लेता है, उसका बहुत दूरगामी जो परिणति होते हैं, और वो पता लगा है जब ये स्वच्छ भारत मिशन निर्मल गुजरात से शुरू होके, स्वच्छ भारत मिशन का स्केल ही कुछ अलग था, क्योंकि हम लोग 6.5 लाख, गुजरात तो एक स्टेट हुआ, वहां वो इस मिजाज को लेकर आए कि हमें स्केल पर करना है, पूरे शहर में करना है, पूरे गांव में करना है, पूरे देश को स्वच्छ करना है, तो 12 करोड़ टॉयलेट बने, उसमें एक्सेस और यूसेज ये दोनों मूल मुद्दे थे, और गांव के मुद्दे ज्यादातर थे, ऐसे नहीं कि शहर में समस्या नहीं था, शहर की समस्या में अभी जूझ रहे हैं सेकंड फेज में, वेस्ट मैनेजमेंट में, कचरा का प्रबंधन में, लेकिन जो पहला फेज था जिसमें स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुआ, कुछ गुजरात की न्यू बना था उसमें जो पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स आए और स्वच्छ भारत मिशन का अभियान का शुरुआत हुआ 2014 में लाल किला की प्राचीर से लेकर, वहां एक पॉइंट रखा गया था, एक लक्ष्य कि 2019 तक खुले शौच से मुक्त कराना है देश को। उस टाइम आपको अगर सुनकर अभी भी लोगों को ताज्जुब होगा, हमारे श्रोताओं को, कि 60 करोड़ देश में खुले शौच करने वाले थे, जो कि पूरे दुनिया की खुले शौच करने वाले लोगों की 60% था, और 2019 में खुले शौच से देश को मुक्त कर दिया गया। सारे गांव, सारे जिले, 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी अपने को डिक्लेयर किए अक्टूबर 2019 में कि हम खुले शौच से मुक्त है, लेकिन अभी भी रास्ता सफर बाकी है।
0: बिल्कुल। और अब रोशन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहले स्वच्छता को सिर्फ सरकार या सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी माना जाता था, लेकिन अब लोग खुद कचरा फैलाने से बचते हैं और आसपास सफाई भी रखते हैं, तो अगर हम बात करें गुजरात में स्वच्छता की, तो जमीनी स्तर पर आपको किस तरह का बदलाव वहां पर देखने को मिला है?
2: देखिए, जब 2007 में निर्मल गुजरात योजना शुरू हुई थी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस समय मुख्यमंत्री थे, तो पहला उनका ये अनुभव था कि लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए, और उन्होंने जो निर्मल गुजरात की शुरुआत की, तो उन्होंने कहा केवल सफाई नहीं, इसमें कचरा प्रबंधन भी होना चाहिए, स्वच्छ पानी भी होना चाहिए, और लोगों के पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पूरे राज्य को उन्होंने एक साथ जोड़ा, लोगों को उन्होंने इसमें भागीदार बनाया, और वो इसलिए बनाया कि जैसे आपने कहा कि इसमें केवल सरकारी कर्मचारी और सरकारी सफाई कर्मचारी अगर केवल इसमें भाग लेंगे तो नहीं हो पा रहा था। लोगों की मानसिकता बदली कि ये आपका है, आपको स्वस्थ रहना है, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको बीमारी नहीं होगी, या जो खर्च आपका बीमारी में खर्च होता है वो आपका बच जाएगा। और हमने देखा कि जब वो अभियान चला पूरी

0: हिंदुस्तान में उसकी चर्चा हुई और कुछ राज्यों ने उसको एडॉप्ट किया और उसके बाद भारत सरकार ने भी निर्मल भारत अभियान के नाम से उसको एडॉप्ट किया। और जब प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी जी 2014 में तो वहां उन्होंने फिर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। तो बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट था कि लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे हो, जन भागीदारी कैसे हो, इसकी शुरुआत 2007 से निर्मल गुजरात से हुई थी और उसमें जनता की भागीदारी और वो किस बड़े स्तर पर हो सकता है वहां से शुरुआत हुई।
1: जी, तो हम चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले सुन लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
2: श्रोताओं, स्वच्छता हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। साफ घर, साफ गली, साफ गांव और साफ शहर का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन से है। इसी सोच के साथ 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य देश में स्वच्छता को बढ़ावा देना और लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करना था। इसकी शुरुआत सबसे पहले लोगों के घरों में शौचालय की सुविधा पहुंचाने और खुले में शौच की समस्या को खत्म करने पर था। वर्ष 2014 में ग्रामीण स्वच्छता लगभग 39% थी। वर्ष 2019 तक ग्रामीण भारत में 100% स्वच्छता हासिल की गई और 2014 से 2019 के बीच 10 करोड़ 28 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ। लेकिन श्रोताओं, स्वच्छता का मतलब केवल शौचालय बनाना नहीं है, अब ध्यान इस बात पर भी है कि गांव और शहर कचरे से मुक्त और साफ सुथरे रहें। इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन के अगले चरण में ठोस कचरा और गंदे पानी के प्रबंधन पर भी जोर दिया जा रहा है। 17 सितंबर 2026 तक देश में 5.69 लाख से अधिक गांव ODF प्लस हो चुके थे। इनमें 5.25 लाख से ज्यादा गांव ODF प्लस मॉडल की श्रेणी में है। वही 5.38 लाख से अधिक गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन और 5.65 लाख से अधिक गांवों में तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था स्थापित की जा चुकी है। अब सवाल है कि ODF प्लस का मतलब क्या है? आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब सिर्फ खुले में शौच से मुक्ति नहीं है, गांव में शौचालयों का इस्तेमाल जारी रहे, कचरे का सही प्रबंधन हो, गंदा पानी सही तरीके से संभाला जाए और गांव साफ दिखाई दे, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। इसी दिशा में स्वच्छता ही सेवा अभियान भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2026 में ये अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है और इसकी थीम है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इसका जोर लोगों की भागीदारी, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, कचरा प्रबंधन, सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा तथा सम्मान पर है। श्रोताओं, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, स्वच्छता के काम में लगे सफाई कर्मचारियों का सम्मान। सफाई कर्मचारी हमारे गांव और शहरों को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए स्वच्छता के साथ उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा 2026 में सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर के माध्यम से स्वास्थ्य जांच, सुरक्षा उपकरण और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया है। श्रोताओं, स्वच्छता की ये यात्रा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हर नागरिक की भूमिका है। घर का कचरा अलग रखना, सड़क पर कचरा नहीं फेंकना, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना और दूसरे लोगों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करना, ये छोटे छोटे कदम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छ भारत मिशन अब केवल शौचालय निर्माण का अभियान नहीं रहा, बल्कि स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, लोगों के व्यवहार में बदलाव और जन भागीदारी से जुड़ा एक व्यापक प्रयास बन चुका है। क्योंकि जब हमारा घर साफ होता है तो परिवार स्वस्थ रहता है, जब गांव और शहर साफ होते हैं तो जीवन बेहतर होता है, और जब सफाई करने वाले व्यक्ति को भी सम्मान और सुरक्षा मिलती है तब स्वच्छता वास्तव में सम्मान से जुड़ती है। यही है स्वच्छता से सम्मान तक की यात्रा। उत्पल कुमार की रिपोर्ट के साथ मैं मनोज।
1: अक्षय जी, आपसे इंदौर की अगर बात की जाए तो 7 बार नंबर 1 ये बना, कैसे बना?
3: देखिए, उसका एक मिसाल छोटी सी बताता हूँ। मैं इंदौर बार बार गया हूँ। बोलते हैं झोलाधारी इंदौरी बोलते हैं वहाँ लोगों को।
1: अच्छा।
3: मतलब कोई अगर घर से निकलेगा अपने पास एक झोला लेके जाएगा कि रास्ते में कोई कचरा अपना जो अपने जरिए से हो या कहाँ से कचरा दिखा या अपने कोई खरीदा कुछ छिलके निकले तो उसको झोला में लेके घर में आएगा, उसको डिब्बे जो है उसका निपटान करेगा। जबकि भारत अभी तक भी हारा नीला में जूझ रहा है और स्वच्छ भारत मिशन की जितना काम करते हैं लोग, अर्बन लोकल बॉडीज हो, पंचायत हो, वो लोगों को समझा समझा के थक गए कि भाई हारा नीला, एक सूखा और गीला कचड़े अलग अलग रखो।

0: ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो, वेट या ड्राई हो, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने और आने वाले जो कचरा प्रबंधन के 26 के रूल्स के मुताबिक चार अनिर्वाय कर लिया, दो से नहीं चलेगा, चार करना पड़ेगा, जो स्पेशल कचड़े हैं और सैनिटरी कचड़े हैं उसको अलग अलग रखना पड़ेगा। लेकिन इंदौर में आप जाएंगे बहुत पहले 6 कचड़ों के डिब्बा होता है लोगों के घर, माने हर कचड़े का अलग अलग तरीके से निकाल कर उसको रोज डालना, उसके लिए समय लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, रिसोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन करते हैं लोग। और क्योंकि जो कचड़ा सेग्रीगेट होता है या जो कचड़ा को भाग भाग अपना तरीके से किया जाता है वो सोना बनता है, वो बोलते हैं ना कचड़ा से कांचन बनता है, लेकिन जो सेग्रीगेटेड नहीं होता है वो बीमारी का जड़ बनता है, क्योंकि वो जाके फिर लैंडफिल में डालता है या रास्ते की साइड में छोटे हिप्स बनते हैं, फिर बड़ा लैंडफिल शहर के बाहर बनते हैं और दुनिया भर का उससे प्रॉब्लम निकलता है। जब तक हम लोग चाहे जो सोर्स है, जो कचरे का सोर्स है, चाहे घर हो, फैक्ट्री हो, कॉलेज हो, मॉल हो या इंस्टीट्यूशनल एरिया हो, जहां अगर जहां से निकलता है कचरा वहां से अगर डिवाइड होकर नहीं रहता है तो प्रॉब्लम है। तो इंदौर में वो होता है, इंदौर के लोगों ने अपने सम्मान के साथ, अपना शहर के सम्मान के साथ सफाई को जोड़ा है, यहाँ तक वहाँ सफाई टूरिज्म होता है, लोग आके देखते हैं कि भाई सफाई यहाँ कैसे हुआ, वहाँ पार्क बने हैं सफाई की, जो कचरे के जो बहुत बड़ा बड़ा होता है जमावड़ा उसको निकालकर एकर्स जमीन निकाल के वहाँ पार्क बना जाता है और सबसे बड़ा बायोफ्यूल का वहाँ प्लांट भी बना है, क्योंकि उसी से शहर का ट्रांसपोर्ट भी चलता है और ये एक देखने की जगह है। एक जगह में तो वहाँ एक फूड मॉल्स उन्होंने बनाया है जो की कचरा की जगह को साफ करके तो वो बना है, और वहाँ की जो सैनिटेशन वर्कर्स की जो डिग्निटी है, लाइफ कंडीशन है, उनको जो फैसिलिटी है, उनका जो तरीके है, वो देखने के लिए बाहर के लोग जब आते हैं, वो तीर्थ में जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, उज्जैन वो इंदौर में एक स्टॉप ओवर लेते हैं कि हाँ देखें। लेकिन मैं आपको एक चीज पर क्वेश्चन करता हूँ, एक इंदौर से देश का काम नहीं चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन के जो मैनेजर्स हैं और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी इसको समझते हैं, इसीलिए अभी एक नया बनाया गया है कि इनको गोल्ड लेवल डाल के इनको कॉम्पिटिशन से अलग कर दिया जाए और दूसरों को भी मौका दिया जाए, जैसे सूरत, नवी मुंबई, दूसरे शहर भी आ रहे हैं उसके साथ शामिल होने के लिए। और ये सारे चीज के लिए जो गवर्नेंस मॉडल को मैं फिर एम्फसाइज करता हूँ, जो गुजरात से गवर्नेंस, और स्वच्छता में खाली कंसंट्रेट नहीं है, पानी के पर भी है और पंचायती सिस्टम पर भी है, वो जीएसटी सिस्टम पर भी है, वुमेन्स एम्पावरमेंट पर भी है, हेल्थ डिलीवरी पर है, बहुत सारी चीज जो कि पब्लिक सर्विसेस होते हैं उसका एक तरीका है काम करने का, उसको मैं पॉलिसी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बोलूंगा। भाई आपका पॉलिसी, सब लोग सोचते हैं कि पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन दो है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ ये गवर्नेंस मॉडल जो 25 साल से जारी है ये भाई खाली पॉलिसी नहीं, पूरा देश में होगा, सब जगह होगा और इम्प्लीमेंट बढ़िया से होगा, इस तरह से चल रहा है, इसलिए स्वच्छता में काम हो पाया है, स्वच्छ भारत मिशन का सक्सेस के राज है।
1: बिल्कुल, आपने नागरिकों की बात बताई वहां पर, तो एक बहुत ही जरूरी चीज हो जाती है सरकार और आम नागरिकों के बीच में तालमेल बिठाना, तो जिसे हम सिविक सेंस के तौर पर भी कह सकते हैं, तो वहां के लोगों में सिविक सेंस कैसे जागा?
0: सिविक सेंस ना, ये जो लोगों ने अगर शहर की, मेरा शहर की बात छोड़ दीजिए, मेरा घर की, मेरा टोली की, मेरा कॉलोनी की, मेरा आरडब्ल्यूए की सम्मान के साथ इसको जोड़ूंगा, ये इंदौर वाले जो हैं अपना इज्जत के साथ इसको जोड़ दिए हैं इसे, और वहां जो नेचुरल सिटीजन का रेस्पॉन्स जो है ना बहुत अच्छा रहा है। लेकिन बात है कि ये जो चीज है, ये जो इज्जत की जो अपना जो चस्का, ये बाकी शहरों में भी लगना शुरू हुआ है, लेकिन जितना जल्दी होके लगे तो ये जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन और ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन दो अलग अलग इकाई है और एक महुआ के अंदर है और दूसरा है जल शक्ति के अंदर, मंत्रालय के अंदर, ये काम तो जारी है, लेकिन एक दो साल में मुझे लग रहा है कि अगर लोगों का निरंतर प्रयास रहा तो हमारे शहर भी आगे आगे ठीक हो जाएंगे।
1: बिल्कुल रोशन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्वच्छता सर्वेक्षण को आपने कैसे जाना और क्या इससे नगर पालिकाओं में वाकई काम करने का डर और सम्मान दोनों आया है?
2: जो सर ने भी बात कही है, इंदौर से ही मैं इसकी शुरुआत करूंगा, क्योंकि जब ये स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो 2016 में कहा गया कि आप स्वच्छ सर्वेक्षण कीजिए और शहरों के बीच में एक कंपटीशन कराया गया कि जो नंबर एक पे आएगा, नंबर दो पर आएगा, तो वो जो है हर शहर ने उसमें पार्टिसिपेट किया, तो शुरुआत में 73 शहर थे उसमें, यही इंदौर जो 25वें नंबर पर था 2016 में और 2017 में नंबर एक पर आ गए, और वो सिर्फ इसलिए आया कि उन्होंने जो मानसिकता बदली कि जो हम लोग क्या करते हैं कि अपने घर से कूड़ा उठा के किसी एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और वो एक जगह फिर धीरे धीरे धीरे वो पहाड़ बनता चला जाता है, तो इंदौर में लोगों ने जो घर घर से कूड़ा उठाना शुरू किया और उसमें उन्होंने, जैसे सर ने कहा कि उन्होंने अलग अलग डिब्बे बनाए, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, सैनिटेशन का अलग, हैजार्डियस अलग, तो उनको ठिकाने लगाना का भी इंतजाम फिर ठीक हो गया, तो यहाँ से कंपटीशन शुरू हुआ। तो ये सर्वेक्षण का फायदा हुआ कि अब इसमें सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने दिल्ली में देखा कि जो नई दिल्ली नगर पालिका है

0: ये तो साफ रहता है, लेकिन जो हमारा दिल्ली नगर निगम का क्षेत्र है वहां हमने देखा कि अभी भी वहां समस्याएं हैं। तो कंपटीशन में आने के से क्या हुआ कि लोगों की पार्टिसिपेशन तो रहा ही, उनके साथ साथ जो इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मंत्रालय हैं, इसमें बहुत सारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इसमें सरकार के बहुत सारे जो विंग हैं, वो सबने मिलकर काम किया। तो उसका सर्वेक्षण का फायदा ये हुआ कि सभी शहर इसमें कंपटीशन में आ गए और कंपटीशन में एक दूसरे से अच्छा कैसा करें, इसलिए शहरों में अच्छा काम हो रहा है।
1: अक्षय जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, इंदौर के बाद हम सूरत की बात कर लेते हैं। तो 1994 में सूरत को प्लेग सिटी कहते थे, लोग शहर छोड़कर भाग रहे थे। फिर 2006 में तापी में भयानक बाढ़ आई, सूरत ने इस तबाही को मौके में कैसे बदला?
2: आप दूसरी बात पर अभी चले गए हैं, लेकिन रिलेटेड है, एक पानी की बात पर चले गए हैं। जो फ्लड था वो तापी रिवर के साथ कनेक्टेड था और उसका गेट खुलने नहीं खुलने पर था। कभी कभी उसका होता है कि वो नेचुरल डिजास्टर था, एक एस्टिमेट किया गया है। हो सकता है कि कोई लोगों का मैनेजमेंट में भी कुछ दिक्कत हो, लेकिन उसके बाद वो 6 है, जैसे भूज का अर्थक्वेक भी हुआ था, मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा बाढ़ था। करीब करीब सूरत शहर के काफी एरिया डूब गए थे उसमें, और उससे एक तो एक रिलीफ और रिहेबिलिटेशन क्विक रिस्पॉन्स कैसे हुआ वो एक देखने की बात है। हम अभी स्वच्छ भारत से थोड़ी एक बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हम फ्लड मैनेजमेंट वाटर गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितना गुजरात से स्वच्छ भारत के निर्मल गुजरात के जरिए से सीख आया है, जिसे स्वच्छ भारत बनना है, ऐसे ही नर्मदा का वाटर को लाके पहुंचाना डिफिकल्ट एरिया में, ड्रॉट प्रोन एरिया में, और पानी को रोकना जहां रोकना है, फ्लड मैनेजमेंट करना, और जहां सूखा है वहां पानी देना, और घर घर में टैप पहुंचाने का प्रबंधन करना। इसमें भी उसी टाइम में सरकार जो हम लोग बात कर रहे हैं 2000 से 2012 सरकार की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम में गवर्नेंस में ये प्रयोग बहुत हुए थे, और उसकी नतीजा आगे बढ़ाकर अभी जल जीवन मिशन मान लीजिए, जो कि अभी 80% घरों में टैप वाटर कनेक्शन दिया हुआ है रूरल एरियाज में, माने क्योंकि वो पानी की, घर में पानी की फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन देना बहुत बड़ी बात है। वो भी गुजरात की ये सारे प्रयोग जो आपने जिक्र किया, सूरत वगैरह सा, वो क्योंकि पानी बहुत होता है तो लोगों का विनाश होता है, पानी का कम होता है लोगों का प्यास बढ़ता है, विनाश होता है। तो दोनों की चीज को इससे संतुलन करने का, नर्मदा की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को गुजरात के लिए उपलब्ध कराना, और जो स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनमें सहमत लाना, इसमें उस टाइम का गुजरात सरकार, जिसमें कि श्री नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर के हिसाब से अगुवाई कर रहे थे, बहुत बड़ा भूमिका रहा है, उससे सीख मिला है। सूरत प्लेग सिटी के नाम में मैंने कष्ट लोगों को बहुत मिला था, और वो प्लेग क्यों हुआ था, सफाई नहीं होने के कारण, उसका मूल कारण सफाई, इसीलिए बहुत अचंबा की बात है। और लगता है भारत कितना आगे बढ़ा है कि जहां प्लेग हुआ था शहर लोग छोड़ दिए थे, शहर का लोग जाना बॉयकट कर दिया था कि भाई गंदगी इतना है कि यहां प्लेग होकर लोग मरते हैं, तो वो हुआ भारत की सबसे स्वच्छ शहर, वही इंदौर के साथ कंपटीशन करके आया, क्योंकि काम ऐसे हुआ है, और वो स्वच्छ भारत मिशन की टाइम में हुआ ज्यादातर वहां न्यू पड़ गया था, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के टाइम में हुआ। वो स्वच्छ सर्वेक्षण के रिजल्ट के हिसाब से सूरत 2 साल पहले पहली बार आया वो पैदान पर, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और नवी मुंबई भी आया है, बहुत कुछ शहर और भी कुछ शहर हैं जो आगे बढ़कर आए हैं। इंदौर पहले आया, लेकिन इन्होंने सब क्लब अभी अलग अलग कर दिया है, इनको गोल्ड क्लब अलग कर दिया है, क्योंकि सो दैट कि ऐसे नहीं होंगे कुछ शहर बार बार, और पॉपुलेशन के हिसाब से करते हैं, छोटे छोटे शहरों को मौका मिलता है। मुझे लेकिन लग रहा है कि फिर भी मान लीजिए 4,800-5,000 शहरों में आज की तारीख में जो 3-स्टार रेटिंग बुलाया जाता है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि हाँ पूरी तरह स्वच्छ माना जाएगा, मुझे लग जाए कई 100 हैं, 1,000 तक भी नहीं है। तो इसीलिए हमें कुछ सफर

0: बड़े जो हैं, चाहे बड़े भाई हो, पिताजी हो, माँ बहन हो, तो छोटे बच्चों को सिखाएंगे कि भाई सफाई तुम्हारा काम है, तुम साफ रहो और साफ करते रहो चारों तरफ। ये विदेशों में, सारे ईस्ट एशियन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में ये इनबिल्ट है, इनबिल्ट है। तो हमारे परिवार ये जो, क्योंकि ये अपने आप बायोलॉजिकली नहीं आता है, ये सोशियली आता है, एजुकेशनली आता है। इसीलिए जो कैंपेन है, इसलिए प्रधानमंत्री बार बार, कभी ऑफिशियली इसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन वो बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान, वो हमेशा बोलते हैं, क्योंकि ये कैंपेन है, निरंतर चलता रहेगा। लोगों को उसकी तरफ पुश करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में भी, जिसको स्वच्छ भारत मिशन के लिए सक्सेस का न्यू माना गया है, चार पी, फर्स्ट पी है पॉलिटिकल लीडरशिप, वो प्रधानमंत्री जी ने दिखाया, वो हमेशा आगे रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन में। सबको वो सबसे टॉप कम्युनिकेटर, टॉप लीडर्स, वो स्वच्छ भारत मिशन उनका दिल की स्पंदन है, ऐसे मुझे लग रहा है। दूसरा है पब्लिक फाइनेंस। कभी सैनिटेशन के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर देश में इतना पैसा नहीं लगा था जितना पैसा इन्होंने दिया है और फाइनेंस मिनिस्टर्स ने भी दिया है। तीसरा है पार्टनरशिप, क्योंकि ये कोई छोटा मंत्रालय का काम नहीं है, सारे मंत्रालय, सारे कॉर्पोरेट, सारे मीडिया, सारे सिविल सोसाइटी लोग और सारे इंटरनेशनल एजेंसी मिलकर करेंगे पार्टनरशिप। चौथा सबसे बड़ा स्तंभ है पीपुल्स पार्टिसिपेशन, और लोग, ये लोगों का मूवमेंट है, लोगों को संभालना पड़ेगा, लोगों को साफ होना पड़ेगा, लोगों को साफ करना पड़ेगा, साफ नहीं तो माफ नहीं।
1: बिल्कुल। अब रोशन जी, अब आपसे हम सवाल करना चाहेंगे कि जब हम सफाई मित्र की बात करते हैं, सुरक्षा, वेस्ट मैनेजमेंट, महिलाओं की गरिमा की बात करते हैं, तो स्वच्छता का अर्थ कैसे बदला?
2: देखिए, इसमें दो तीन बातें समझनी जरूरी है
1: जी।
2: पहले, हम चूंकि मैं गांव से आता हूं, तो हम लोग खुले में ही शौच जाते थे
1: जी।
2: और गांव में तो इतनी समस्या नहीं थी, लेकिन शहरों में मैंने देखा कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते थे इसके कारण होते थे, इसलिए महिलाएं अंधेरा का इंतजार करती थी। और प्रधानमंत्री ने जब 2014 में लाल किले की प्राचीर से भी यही कहा था कि महिलाओं को जब इंतजार करना पड़ता है, या तो सुबह उनको जाना पड़ता है और या फिर उनको शाम को इंतजार करना पड़ता है, इसके कारण उनके कई बीमारियों से जूझती हैं। तो अभी मैं आंकड़े पढ़ रहा था WHO के, तो WHO ये कहता है कि कम से कम 3 लाख मौतें हैं जो स्वच्छ भारत अभियान से बची हैं, उनकी बीमारियां दूर हुई हैं। और प्रति घर से अगर हम अनुमान लगाएं तो 50,000 रुपए की दवाइयां जो लोग खाते थे वो बची हैं। और इसके अलावा जो सर्कुलर इकोनॉमी
1: जी,
2: जो भी सब बात कर रहे थे कि कचरा है, कचरे का ढेर लग रहे हैं, तो अभी केवल हम उसको कचरा नहीं मान रहे, यानी जो वेस्ट टू वेल्थ, जो हमारा कचरा है, उसको हम कैसे उसकी उपयोगिता करें, तो अभी हम उसे बिजली बना सकते हैं, हम उसे सड़कें बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सर्कुलर इकोनॉमी पे भी फोकस जा रहा है। तो जब ये अभी स्वच्छ भारत अभियान 2 जब शुरू हुआ था, तो उसका जो स्वच्छ भारत अभियान प्लस जो चल रहा है, तो उसमें यही है कि जो ठोस कचरा है और जो गीला कचरा है, जो आपका तरल कचरा है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए कि ताकि उसका वेल्थ हम बना सके। और चूंकि अभी अर्बनाइजेशन हो रहा है और इतनी बड़े पैमाने पर है, अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में तो 90% शहरीकरण हो गया है और ये सब जगह होने वाला है, तो उसमें जो कचरा प्रबंधन है वो सबसे बड़ी चुनौती, जैसे सर अभी कह रहे थे। तो अगर कचरा प्रबंधन, जो अभी हमारे पास आंकड़े हैं कि 1,58,000 टन प्रतिदिन हमारे यहाँ ये कचरा पैदा होता है, जिसमें से हम 1,31,000 टन हम इसको ठिकाने लगाते हैं, लेकिन अभी भी करीबन 27,000 टन प्रतिदिन है जो अभी बच जाता है, तो उसको ठिकाने लगाने की चुनौती है। तो अभी जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है कि हम उसका बिजली बना सकते हैं, हम उसका दूसरे उपयोग कर सकते हैं, तो अगर हम उस टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई, तो आप सोचे कि हम फिर जो हमारा कचरा है, जिसको हम कचरा कहते हैं, वो हो सकता है कि फिर हमारे वो सोना बन जाए।
1: बिल्कुल। तो अगर हमने अभी पहले शौचालय की बात करी और अब कचरा प्रबंधन की आपने उसके बारे में हमें बताया, तो अब हम हाइजीन पर आ जाते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे, हाथ धोना हो चाहे सैनिटरी नैपकिन का सही निपटारा हो, तो ये अभी भी शर्म की बात समझी जाती है, तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे?
2: अभी तो जो स्वच्छ भारत अभियान प्लस है, उसमें ये अलग है कि आप सैनिटेशन जो पैड वगैरह है, इनके लिए इनका प्रबंधन अलग से होना चाहिए। और स्वच्छता के साथ अगर वो सफाई केवल ऐसा नहीं कि आपको जो है शौचालय आपके घर में बना दिए उसकी स्वच्छता, क्योंकि स्वच्छता सीधे आपके स्वास्थ्य से है। और जैसे मैंने कहा कि अभी WHO के जो आंकड़े हैं कि लोगों की जो बीमारियां होती थी, उन बीमारियों से जो हमारी मृत्यु दर है
1: जी,
2: जो बच्चों की जो इन्फेंट्री जो डायरिया है, हैजा है, आंत्रशोध होता था, वो सारों में बचत हो रही है। और हम मोटा मोटा तौर पर लगाएं, अगर आप हॉस्पिटलों में चले जाते थे उस वक्त, आज नहीं, आज से 10 साल पहले, तो मोस्टली जो केसेस होते थे वो डायरिया के होते थे, हैजा के होते थे। अभी तो मुझे नहीं लगता कि 10 साल के अंदर हमने हैजा के केस सुने, पहले कितने केसेस होते थे। तो कम से कम ये स्वच्छ भारत अभियान की बहुत बड़ी सफलता है कि लोगों को हैजा नहीं हो रहा है, डायरिया नहीं हो रहा है।
0: ये सारे जो स्टडीज हैं ये कहता है कि इंडिया को कितना इससे फायदा हुआ है, बच्चों को काफी फायदा हुआ है और एम्प्लॉयमेंट का जो बचत की बात हुआ उनका हुआ है और ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन उसमें बहुत फायदा हुआ है क्योंकि जो खुले में सोच होता है वो ग्राउंड वाटर का अफेक्ट करता है, फिर वो उस चीज के जरिए से पानी के जरिए से इंसान के अंदर जाता है, उससे बहुत हेल्थ से फर्क पड़ा है। खाली इंडियन एजेंसी

0: नहीं, बाहर की एजेंसीज, बाहर की जो बड़े बड़े हेल्थ के मैगजीन्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, स्टडीज हैं, वो भी इसको एस्टेब्लिश किए हैं, तो बहुत तरह तरह के फायदा मिला है गंदगी रहने की। या हाइजीन का बात आपने कहा, अगर हैंड वॉश नहीं करें तो हैंड वॉश नहीं करने का इसका सारा जो इम्पैक्ट है कुछ टाइम के बाद होता है और इमीडिएटली नहीं दिखता है, तो वही तो खराब बात है।
1: हाथ जो है मुंह में लगाना, ये सब चीजें
0: हाइजीन का कॉन्सेप्ट है, इसको इसलिए वॉश बोलते हैं। वॉश को एक सेक्टर माना जाता है, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, वो साथ में देखा जाता है। तीनों चीज इंटरनेशनली नेशनली जहां प्रोग्राम होता है ये तीनों चीज एक साथ रहते हैं, क्योंकि तीनों चीज का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ है। तो हाइजीन का एक बड़ा कॉन्सेप्ट आपने जैसे कहा कोविड के समय में आया, बिकॉज हाइजीन के बिना आप मर जाएंगे, आपको लगा। और लोगों को उस टाइम में यही तो विडंबना है कि लोग जो अच्छी चीज है वो डर कर ही जानते हैं, भाई ये नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, हाथ धोना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इसी तरह का अगर इनको लोगों को इस तरह का, इसको ट्रिगर्स बोलते हैं, बिहेवियर चेंज के बाद आपने कहा लोगों का, उसमें ट्रिगर्स क्या है, माने कभी आपका जागरूकता किस ट्रिगर से, कभी डर कर करते हैं, कभी बोलते हैं कि नहीं प्यार से, जो भाई बहन का भाई, जो आप जानते हैं शौचालय, शौचालय का जो मूवमेंट चला था पहला 5 साल 14 से 19 तक, उसमें बहुत सारे रक्षाबंधन में भाई बहनों को टॉयलेट्स दिए हैं गिफ्ट में, और शादियों में जैसे गिफ्ट देते हैं तो उसमें भी टॉयलेट्स दिया गया है। तो माँ की बेटे के लिए जो प्यार है, बच्चों को रखने के लिए, बच्चे के आदर करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, तो उसका निशान है कि उसका उसका जो सैनिटेशन एस्पेक्ट है उसको ठीक से ख्याल रखा जाए। ये सब चीजों को मानना पड़े, तो बिहेवियर जो चीज है बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि सस्टेन करना है अगर आगे, इसमें बिहेवियर को तो मजबूत करना पड़ेगा, खाली एक्सेस से इंफ्रास्ट्रक्चर बना देने से नहीं होगा। इसलिए स्वच्छ भारत मूवमेंट को लार्जेस्ट सैनिटेशन मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लार्जेस्ट इन बिहेवियर चेंज मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है।
1: तो सर 2047 तक विकसित भारत के लिए स्वच्छता का अगला लक्ष्य क्या होना चाहिए?
0: कंप्लीट, मतलब मुझे लग रहा है कि स्पॉटलेस कंट्री होना चाहिए। स्पॉटलेस जैसे आप जाते हैं ना, आप विदेश में क्या जाते हैं, जब कोई आइकॉनिक प्लेस जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस जाते हैं, बड़े बड़े, अरे क्या साफ सफाई है बोलते हैं ना, ऐसे भी इंडिया में हर शहर, हर जगह जहां फुटफॉल है, टूरिस्ट सेंटर हो, पिलग्रिमेज सेंटर हो, ऑफिस हो, दफ्तर हो, जहां पब्लिक एरिया हो, पार्क हो, रेलवे स्टेशन हो, लोग जैसे उनको लगे कि ये सबसे साफ साफ जगह है, इंसान कहां भी बैठ सकता है, कहां भी खड़ा हो सकता है, कहां भी बदबू नहीं आ रहा है। जो बोलते हैं अर्थ, एयर, वाटर, तीनों चीज जो है हमारा साथ जुड़ा हुआ है, ये तीनों चीज ही कंप्लीटली साफ रहे, ये मेरा 2047 को मैं जो विकसित भारत देखूंगा, मैं जानूंगा कि मेरा देश की हर मिट्टी, हर हवा, हर पानी साफ हो, हर शहर साफ हो, संपूर्ण तरह से, एक है ना कंप्लीट क्लीनलीनेस, एक है स्वच्छ, एक है कंप्लीट क्लीनलीनेस, और पूरा संपूर्ण तरह से स्वच्छ हो हर गांव, हर शहर।
1: और रोशन जी, स्वच्छता की हम बात कर रहे हैं तो इसमें सफाई जो कर्मी हैं उनकी भूमिका बहुत अहम होती है, उनको यूनिफॉर्म मिलती है, पीपीई किट मिलती है, उनके बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसे लगता है कि देश उसे देख रहा है, तो क्या स्वच्छता से सम्मान तक का सफर यही है?
2: असल में जो सफाई कर्मचारी हमने अपनी आंखों से देखे हैं, और चूंकि जब हम कवर करने जाते हैं तो हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं कि सफाई कर्मचारी सीवर में जाते हैं तो उनके गैस के कारण उनकी मौत हो जाती
1: है। ये सबसे बड़ी चुनौती थी, बहुत लोगों की मौतें हो जाती,
2: बहुत मौतें हुई, और उसमें फिर सुधार हुआ कि उनको पीपीई किट मिलना चाहिए, और वहां अभी तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है उसमें, गवर्नमेंट ने भी उसमें नोटिफिकेशन कर दिया है कि कोई भी इंसान गटर के अंदर नहीं जाएगा, मशीन से सफाई होगी। और देखिए मेंटेलिटी बदलने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ने उनको सफाई मित्र कहा कि आप उनको सफाई कर्मचारी मत कहिए, क्योंकि असल में वो आपका कचरा उठा रहे हैं, वो आपके जो काम आपको करना चाहिए आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो आपका बदले आपका काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी तो बहुत बड़ी भूमिका है, तो उनको तो जितना सम्मान मिलना चाहिए, जितनी उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जितनी उनके बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, तो उतना मुझे लगता है कमी कम होगा। एक बात और जो अभी आपने कही कि भय जरूरी है, जैसे अभी कोविड में भय था तो लोगों ने अपने हाथ पांव धोना और सैनिटाइज करना जरूरी था, एक भय और दिखाना जरूरी है कि अभी जैसे हमारी सरकार ने कर रखा है कि अगर कोई सार्वजनिक जगहों पर अगर थूकता है तो उस पर 200 रुपए का जुर्माना है, लेकिन असल में हो नहीं रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पान खाने वाले लोग बहुत हैं, और जितना सरकार साफ करे, लोग साफ करे, कोई ना कोई पान की पीक मारकर उसे गंदा कर देता है, तो यहाँ मुझे लगता है कि सरकार को यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। यहाँ दंड और डर दोनों, भय भी जरूरी है और दंड भी जरूरी है, तो मुझे लगता है कि जो हम बात कर रहे हैं जो 2047 तक पूरा हमारा भारत बहुत सुंदर दिखे और हमारे गांव बहुत खूबसूरत दिखे, जितने हमारे जो मॉन्यूमेंट है, हमारे जो टूरिस्ट स्थल है, उसमें जो सरकार ने भी पीपीपी मॉडल शुरू कर दिया है कि वो कोई भी कंपनी आकर सीएसआर मॉडल के तहत किसी भी, जैसे लाल किला को, ताजमहल को, किसी को भी वो एडॉप्ट कर ले, उसकी साफ सफाई का अपने हाथ में ले ले।
0: काम तो बहुत हो रहा है लेकिन बहुत जल्दी और ज्यादा होने की जरूरत है, और लेकिन ये हमेशा डिबेट रहेगा कि ये पनिशेबल किया जाना चाहिए एजुकेशनली, जनरली हमारे डेमोक्रेटिक इथर्स के साथ ये सारी चीज, क्योंकि इतना 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है और इसमें

0: कौन कितना करता है, तो इस तरह का जो लोकल गवर्नमेंट का जो अधिकार के अंदर कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली तो ये फिर अपने आप में रेस्पॉन्ड करने वाले जो है ना, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है। हम तो कुछ सोचे ना भाई, खाली कंप्लेन करने से थोड़ी होगा। हम कुछ सोचे, प्रदूषण के बारे में कंप्लेन करेंगे, कचरा के बारे में कंप्लेन करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल क्या कर रहा है, हम सोसाइटी के लिए क्या कर, वो है एक जिम्मेवारी की बात है, वो बहुत जरूरी है स्वच्छ भारत मिशन के कॉन्टेक्स्ट में।
1: बिल्कुल लक्ष्य जी, आपने बहुत अच्छी चीज भी बताई है, तो हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि भारत को जीरो वेस्ट नेशन बनाने के लिए क्या मंत्र होना चाहिए।
0: जीरो वेस्ट नेशन एक तो है कि बहुत एक गांधीयन फिलोसफी था, वो बहुत अभी भी सरकार की पॉलिसी के तहत है, RRR, रिड्यूस रियूज रिसाइकल। रिड्यूस जो है गांधीवादी है, भाई आप कंजम्पशन को कम करिए ना, लोगों का कंजम्पशन का माहौल बढ़ रहा है, लेकिन रीयूज रिसाइकल जो है, ये दोनों खासकर रिसाइकल, रीयूज का भी एक लिमिटेशन है, लेकिन रिसाइकल जो है सोने कुछ भी चीजें, सर्कुलर इकोनॉमी की बात हुआ, सारी चीज को रिसाइकल करने का मैं देख रहा हूँ। वेस्ट कम से कम जनरेट करें, आपने जीरो वेस्ट कंट्री के बारे में बताया, कम से कम जनरेट करें, हमारा घर हमारा दफ्तर हमारा जगह से वेस्ट कम निकले, और जो निकले उसका निपटान होने का प्रिंसिपल लेके, स्ट्रैटेजी लेके, टेक्नोलॉजी लेके, रिसोर्स लेके, क्यों इसका निपटान तो जरूरी होगा, जितना निकले कम निकले और जब निकले निपटान हो, यही होने से जीरो वेस्ट होगा।
1: तो अंत में हम आप दोनों मेहमानों से चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे आम नागरिकों के लिए कुछ संदेश अगर देना चाहें तो।
2: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अभी ई कॉमर्स के जमाने में इतना ज्यादा वेस्ट घर पर आ रहा है, चाहे वो थैली के जरिए आ रहा है, चाहे प्लास्टिक के जरिए आ रहा है, उसका कम से कम इस्तेमाल हो, और जितने हमारी ई कॉमर्स कंपनी है उनको भी निर्देश दिया जाए कि आप जो अत्यधिक प्लास्टिक भेज रहे हैं, पैकेजिंग भेज रहे हैं, उसको कम से कम किया जाए।
1: बिल्कुल, क्योंकि बेहतर साफ सफाई से ही भारत के सिर्फ गांव के लिए नहीं मुझे लगता है अक्षय जी, बल्कि शहरों को भी आदर्श बनाया जा सकता है।
0: मेरा इतना ही मैसेज रहेगा कि आप घर के अंदर साफ सफाई का काम अपने आप करें, और अपना घर के आसपास की साफ सफाई अपने आप करें, और दूसरी बात है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल कम से कम करें या नहीं करें, और घर के कूड़े का जरूर सेग्रीगेट करें खुद।
1: तो श्रोताओं, निर्मल गुजरात ने कैसे राह दिखाई आज हमने जाना, स्वच्छ भारत ने उसे कैसे जन आंदोलन बनाया, और सूरत जैसे शहरों ने साबित किया कि अगर जन सेवा की नियत हो तो कचरे से भी कंचन बनता है। स्वच्छ भारत सिर्फ सड़कों की सफाई नहीं, हर नागरिक के सम्मान की कहानी है। इसी के साथ जन सेवा से देश सेवा की आज की कड़ी यहीं समाप्त होती है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आप स्टूडियो में रहे।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: तो फरहत नाज को भी दीजिए इजाजत, नमस्कार। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा की 7वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, स्वच्छता से सम्मान तक। इसमें भाग ले रहे थे स्वच्छ भारत अभियान के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता फरहत नाज। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 854 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़ फाजिलका, FM बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज़ कसौली, FM बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी अमृतसर, DTHD आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साडी स्टूडियो की कड़ी ते 7:45 हो रहे हैं। आओ सुनते हैं हिंदी वार्ता प्रोग्राम च हिंदी वार्ता, जिसका विषय है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। वार्ताकार ने डॉक्टर नीलम जुल्का।
4: रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य में छायावादोत्तर काल के प्रमुख कवि, राष्ट्रीयता के अमर गायक और हमारी सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक हैं। वे एक ऐसे राष्ट्रकवि के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने ओजस्वी विचारों के माध्यम से जन जन के मानस में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। भूषण के बाद दिनकर ने ही अपनी ज्यादातर रचनाओं में वीर रस का प्रयोग किया है। वस्तुतः वे एक ऐसे समय में काव्य सृजन कर रहे थे जब लोगों के मन में राष्ट्रीय भावना जोरों पर थी। दिनकर ने भी इसी राष्ट्रीय भावना की अपने काव्य में अभिव्यक्ति

की है। अन्याय और अव्यवस्था के विरुद्ध जोरदार आवाज उठाने वाले दिनकर एक क्रांतिकारी कवि के रूप में भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। 70 के दशक में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने हजारों लोगों के समक्ष दिनकर की पंक्ति सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इसको उद्धृत करते हुए तत्कालीन सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस तरह चाहे समय स्वतंत्रता से पूर्व का हो या स्वतंत्रता के बाद आजाद भारत का, दिनकर के क्रांतिकारी विचार लोगों में राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देते रहे हैं। दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के सिमारिया गांव में एक साधारण किसान के घर में हुआ। गांव में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास में बीए ऑनर्स किया। विद्यार्थी जीवन में इतिहास, राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र जैसे विषयों में विशेष रुचि होने के साथ साथ साहित्य की ओर भी उनका आकर्षण बना। वे अल्लामा इकबाल और रविंद्रनाथ टैगोर को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। उन्होंने टैगोर की रचनाओं का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी किया। शिक्षा प्राप्ति के बाद दिनकर एक स्कूल में प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए। 1934 में बिहार सरकार के अधीन इन्होंने सब रजिस्ट्रार का पद संभाला। 1947 में वे बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। 1952 में भारत की प्रथम संसद में उन्हें राज्यसभा का संसद सदस्य चुना गया और वे दिल्ली आ गए। 12 वर्ष संसद सदस्य बने रहने के बाद उन्हें 1964-65 में भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया, पर 1965 से 1971 तक भारत सरकार ने उन्हें अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त कर दिया, जिसके कारण वे पुनः दिल्ली लौट आए। दिनकर ने हिंदी में कई रचनाओं का सृजन किया। उनका पहला काव्य संग्रह विजय संदेश 1928 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद सृजन का यह सिलसिला लगातार चलता रहा। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी आदि प्रमुख मुक्त काव्य संग्रह हैं। इनके अतिरिक्त दिनकर ने प्रबंध काव्यों की रचना की, जिनमें कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी तथा उर्वशी आदि प्रमुख हैं। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर भारत की अनेकता में एकता को सिद्ध करते हुए कहती हैं, सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद भी भारत एक देश है, क्योंकि सारी विविधताओं के बाद भी हमारी सोच एक जैसी है। दिनकर को उनकी विशिष्ट रचनाओं के लिए समय समय पर विभिन्न सम्मानों से सम्मानित किया गया, जैसे साहित्य अकादमी सम्मान, पद्म विभूषण सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान आदि से समय समय पर उन्हें अलंकृत किया गया। एक प्रगतिवादी एवं मानववादी कवि के रूप में उन्होंने सामाजिक और आर्थिक समानता पर बल देते हुए शोषण के विरुद्ध कविताओं की रचना की। दिनकर के रचना कर्म का समय वह विशेष समय था जब दुनिया को 2 विश्व युद्धों का सामना करना पड़ा था। इसमें करोड़ों लोग मारे गए, विकलांग हुए, बेघर हुए तथा प्राकृतिक संपदा का भी अत्यधिक विनाश हुआ। साथ ही व्यक्तियों के आपसी स्वार्थों, संघर्षों, ऊंच नीच के द्वंद्वों तथा स्त्री पुरुष के संघर्षों ने दिनकर को उद्वेलित कर दिया था। दुनिया को युद्ध से मुक्ति दिलाने तथा न्याय पर आधारित पूर्ण शांति की चाह ने उन्हें इस बात के लिए विवश कर दिया कि वे शांति तथा युद्ध के प्रश्न पर गहराई से विचार करें तथा इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करें। दिनकर के साहित्य का बड़ा हिस्सा इन्हीं प्रश्नों के कारणों तथा समाधानों को खोजने का प्रयास है। दिनकर अपनी रचनाओं में युद्ध के विविध स्वरूपों की विवेचना करते हैं। वे स्वार्थ के लिए किए गए युद्ध और न्याय के लिए किए गए युद्ध में अंतर मानते हैं। अपनी जाति, देश, वर्ग, समुदाय के हित के लिए किए गए युद्ध को वे धर्म युद्ध एवं युद्ध करने वालों को

शूरवीर कहते हैं। शूर धर्म है अभय दहकते अंगारों पर चलना, सबसे बड़ा धर्म है नर का सदा प्रज्वलित रहना, दाहक शक्ति समेत स्पर्श भी नहीं किसी का सहना। कवि तत्कालीन भारत में चल रहे आजादी के संघर्ष, किसानों के संघर्ष, श्रमिकों के संघर्ष, दलित जातियों के संघर्ष, स्त्रियों के संघर्ष तथा जनजातियों के संघर्ष को न्याय संगत मानते हुए उन्हें धर्म युद्ध के रूप में भी मानते हैं। स्वार्थ लोलुपता के साथ साथ युद्ध के मनोवैज्ञानिक कारणों की ओर भी दिनकर संकेत करते हैं। युद्ध के बुनियादी कारण चाहे सामाजिक होते हैं, लेकिन व्यक्तियों समुदायों का मनोविज्ञान भी युद्ध की वजह बनते हैं। भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध के विभिन्न मनोवैज्ञानिक कारणों को युधिष्ठिर से बताते हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन का विजयी होना, द्रौपदी के चीर हरण के समय

0: समुदायों का मनोविज्ञान भी युद्ध की वजह बनते हैं। भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध के विभिन्न मनोवैज्ञानिक कारणों को युधिष्ठिर से बताते हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन का विजयी होना, द्रौपदी के चीरहरण के समय महाजनों का चुप रहना, शूद्र कहकर कर्ण को अपमानित करना तथा समय समय पर राजपुरुषों द्वारा अहंकार का प्रदर्शन करना। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे युद्धों में कई देशों के राजनेताओं तथा सैन्य संचालकों के अहंकार तथा द्वेष की भावना तथा कभी कभी उनकी कुंठाएं भी युद्ध के विस्फोट में महत्वपूर्ण सहायक तत्व बनकर सामने आती हैं। दिनकर अन्याय के विरुद्ध लड़ने और मरने मारने का सदैव समर्थन करते हैं और उसे न्यायोचित मानते हुए कहते हैं, किसने कहा पाप है समुचित स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खड़ग समर में अभय मारना मरना। इसलिए वो अन्याय को चुपचाप सहने की विचारधारा का घोर विरोध करते हैं। छीनता हो स्वत्व कोई और तू, न्याय तप से काम ले, यह पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। दिनकर न्यायपूर्ण युद्ध के समर्थक हैं, क्योंकि युद्धों के लिए नरसंहारक शक्तियां ही जिम्मेवार हैं, जो न्यायपूर्ण ताकतों को युद्ध करने के लिए विवश कर देती हैं। चुराता न्याय जो रण को बुलाता भी वही है। दिनकर मनुष्यता की विजय पर विश्वास करते हुए स्थायी शांति स्थापित करने के लिए इस तथ्य को आवश्यक मानते हैं कि दलित सर्वहारा शोषित वर्ग शक्तिशाली बनकर शोषक से संघर्षरत बने। रण रोकना है तो उखाड़ विषदंत फेंको, वृक व्याघ्र भीति से मही को मुक्त कर दो, अथवा अजा के छागलों को बनाओ व्याघ्र, दांतों में कराल काल कूट विष भर दो। पर साथ ही मानवतावादी जीवन दृष्टि को भी अपनाने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं, दलित मनुष्य में मनुष्यता के भाव भरो, दर्प की दुरग्नि को दूर करो बलवान से, हिमशीत भावना से आग की अनुभूति दो, छीन लो हलाहल उदग्र अभिमान से। कभी समाज में शांति स्थापना के लिए न्याय की स्थापना को अनिवार्य मानता है। न्याय शांति का प्रथम न्यास है, जब तक न्याय ना आता, जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं हो पाता। इस प्रकार दिनकर की यह स्पष्ट मान्यता है कि युद्ध और शांति का प्रश्न न्याय से जुड़ा हुआ है। वे ना तो युद्ध का समर्थन करते हैं ना ही विरोध करते हैं। वे चाहते हैं कि दुनिया को युद्ध से पूर्णतया मुक्ति मिल जाए, पूरी दुनिया में अमन चैन और शांति हो, और यह शांति न्याय पर आधारित हो। वे अन्याय पर आधारित शांति के विरुद्ध हैं। वे मानते हैं कि न्याय और बराबरी के बिना पूर्ण शांति की स्थापना कभी नहीं हो सकती।
1: हिंदी वार्ता प्रोग्राम च हिंदी वार्ता राष्ट्रकवि रामधारी सिंह धनकर ते वार्ताकार सन डॉक्टर नीलम जुल्का। आहुन समात फरमाइए चंद गजला।

मन की बात माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करनगे अपने मन की बात एतवार 27 सितंबर दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करनगे नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी कीता जाएगा प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज डीटीएच दी एआईआर पंजाबी सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज ते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो

0: ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੂੰਜੇਗਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦਮ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਰੋਮਾਂਚ ਹੁਣ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਕੌਣ ਰਚੇਗਾ ਇਤਿਹਾਸ? ਕੌਣ ਚੁੰਮੇਗਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਖਰ? ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ? ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੁਣੋ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੇਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:20 ਤੱਕ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੈਨਲਸ ਤੇ, FM ਰੇਨਬੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੈਨਲ, DRM ਤੇ DTH ਚੈਨਲਸ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟਸ ਜਾਣੋਗੇ FM ਰੇਨਬੋ ਚੈਨਲ ਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਸਿਰਫ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੇ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबने तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: लो जी, प्रोग्राम जिंदगी हसीन लैके फिर तो हाजिर हो गया थोड़ा दोस्त गगन, जिद विच असी बहुत सारियां मिठियां मिठियां प्यारियां प्यारियां गल्लां करनियां और जिंदगी नूं सही रास्ते लैके जाण वालियां गल्लां करनियां ताकि साडी भी जिंदगी हसीन हो जाए। दोस्तों, गल करदे आं मुस्कुराहट दी ताकत। मुस्कुराहट की बहुत ज्यादा ताकत है। कदे तुसीं सोचिया कि एक मुस्कुराहट किन्ना कुछ बदल सकती है? एक मुस्कुराहट किसी अजमने नूं अपना बना सकती है। कोई भी इंसान जिहड़ा तुहानूं जानदा ही नहीं है, तुसीं उहदे सामने चाहे मुस्कुराहट ही कर दो, एक प्यारी जी स्माइल दे दो उहनूं, उह तुहाडा अपना हो जाएगा, गल करेगा तुहाडे नाल। की पता उह कोई मुश्किल च होवे तुहाडे नाल गल करना ही चाहुंदा होवे। कहिंदे ने कि सलाम पहली मंजूर होंगी है। सो थोड़ी एक मुस्कुराहट शुरुआत कर सकती है थोड़ी दोस्ती की। तो कई बार एक मुस्कुराहट साढ़े अपने दिल में भी हौला कर देती है। इसलिए अज एक काम करना है, जो भी तुम किसी को मिलो अज तो शुरू कर दो। जो भी तुम किसी को मिलो दिलो मुस्कुराना, मुस्कुरा के मिलो, क्योंकि थानू नहीं पता सामने वाला व्यक्ति अपने अंदर कि लड़ाई लड़ रहा है। कई बार लोग हंस रहे होंगे ने पर अंदरों बेचारे थके हुए होंगे ने। सो दोस्तों, तुसी किसी भी अजनबी नूं मिलो, तुसी एक काम जरूर करना, तुसी हंसना है, मुस्कुराना है, ताकि अगले नूं सुकून मिले। नरमी नाल बोलो, प्यार नाल मिलो ते बिना किसी कारण किसी का दिल ना दिखाओ। किसी का हाल चाल पूछ लेना ही ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਸੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਗੀਤ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ, ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਜੀ ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ।

0: दोस्तों देखो पता ही नहीं लग गया कि अज दे इस प्रोग्राम का सफर कदों खत्म हो गया, पर जान तो पहला अज दी एक गल अपने नाल जरूर लेके जाइयो कि जिंदगी परफेक्ट होवे या ना होवे उसका इंतजार ना करियो, जो कोल मिलिया है उस विच खुशी लभनी शुरू कर दियो। फिर मिलते हैं ऐसे जोश इसे होश दे नाल, तद तक लिए दो इजाजत, नमस्कार। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, TRM 864 किलोहर्ट्स, तो DTS दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। इस वेले साडी स्टूडियो की कड़ी ते 8:30 हो रहे हैं। हुण तुसी सुनोगे पंजाबी खबरां।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन में मैं चंचल शर्मा, पहला बुलेटिन दिया खास खबर। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय हवाई सेना लिए संबंधित उपकरणों की खरीद वास्ते भारत डायनामिक्स लिमिटेड 810 करोड़ तो वध का समझौता किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज गुजरात में ब्रह्म कुमारियां के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन किया। कहा सानू ईमानदारी, जिम्मेवारी, दया, सहयोग ते देशभक्ति तो प्रेरित एक युवा शक्ति की जरूरत है। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के अखौती जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के सांझे ऐलाननामे भारत खिलाफ की गई बेबुनियाद ते तथां तों गलत टिप्पणियों स्पष्ट तौर पर रद्द किया। बैंक यूनियनों की संयुक्त फोरम वालों 28 तो 30 सितंबर तक बुलाई गई तजवीजशुदा 3 दिनों देशव्यापी बैंक हड़ताल के मद्देनज़र बैंक एतवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। सीनियर BJP आगू अनुराग सिंह ठाकुर ने पंजाब के जिला रूपनगर च BJP वालों शुरू की गई नशा मुक्त यात्रा की अगवाई की थी। जापान च हो रही एशियाई खेडों च भारत के कुल तमगे की गिनती 12 हुई। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय हवाई सेना लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार सैटसा और संबंधित उपकरणों की खरीद लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड 810 करोड़ तो वध का समझौता किया।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਹੁਣ ਵੱਲੋਂ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਲੀ ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੀਓ ਕੜੀ 'ਤੇ 8:45 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵੈਸ਼ਨਵੀ। मुख्य समाचार। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी फैसले पर अपने हितों और चिंताओं को दोहराया। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया, कहा इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में तेज बारिश हुई। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से

0: मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। न्यूयॉर्क पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी।
1: ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला एक सटीक निर्देशित ग्लाइड बॉम्ब है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 एमकेआई जैसे विमानों से दागा जा सकता है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है और इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। इसमें 60% सामग्री स्वदेशी होगी। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इसके वायुसेना में शामिल किए जाने से उसकी परिचालन क्षमता और बढ़ जाएगी। इससे देश की रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्म कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
3: युवाओं को संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। अब ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्य से भी परिपूर्ण।
0: इससे पहले राष्ट्रपति वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पिछले 12 वर्ष में 23,000 से अधिक पदोन्नतियों को स्वीकृति दी है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को काम के लिए एक बेहतर और अनुकूल माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने हाल के महीनों में देशभर में 40 नई पहल शुरू की है और विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधार किए हैं। आयोग ने कहा कि उसके सभी अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के और तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पुनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। माई भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत युवाओं की संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई है। वर्ष 2023 में शुरू किए गए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा सीखने, स्वयं सेवा, नेतृत्व, नागरिक भागीदारी और युवा केंद्रित गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ी रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार

0: ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। विशेष श्रृंखला में आज अटल इनोवेशन मिशन की।
1: अटल इनोवेशन मिशन, जिसे वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था, देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। नीति आयोग के अंतर्गत यह मिशन एक समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है। इसका उद्देश्य स्कूलों में समस्या के समाधान और नवाचार की सोच विकसित करना तथा विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, निजी क्षेत्र और MSME में उद्यमिता का एक सशक्त इकोसिस्टम तैयार करना है। वर्ष 2016 में आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से नई पीढ़ी को विज्ञान और अनुसंधान की ओर आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं।
2: नई पीढ़ी में विज्ञान के प्रति आकर्षण, टेक्नोलॉजी के प्रति रिसर्च और इनोवेशन, और इसी के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए। और इसलिए तो मैं कहता हूँ, लेटेस्ट एम टू इनोवेट। और जब मैं लेटेस्ट एम टू इनोवेट कहता हूँ, तो मेरा एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक इरादा है कि इस एम के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, पूरे देश में एक इकोसिस्टम तैयार हो, इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक सिलसिला चले।
1: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में स्कूल छात्र सार्थक गुप्ता ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से अटल इनोवेशन मिशन के अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है।
3: पिछले 3 वर्षों से अटल टिंकरिंग लैब्स का हिस्सा बनना मेरे लिए एक बहुत ही खास लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। इस दौरान मैंने सिर्फ नई टेक्नोलॉजीज नहीं, बल्कि उन्हें प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना सीखा, नए आइडियाज पर काम करा और अपने हाथों से प्रोटोटाइप्स बनाए।
1: अटल इनोवेशन मिशन देश भर में नवाचार और उद्यमिता की एक जीवंत संस्कृति विकसित करने और उसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। इसके आज रात तट से टकराने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
5: IMD ने दक्षिणी जिलों के लिए रेड वार्निंग जारी की है। कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है। उम्मीद है कि डीप डिप्रेशन आज रात और कल सुबह के बीच कलिंगपट्टनम के पास से गुजरेगा और कोरापुट और रायगढ़ समेत दक्षिणी उड़ीसा के अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़ेगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भुवनेश्वर में हालात का जायजा लिया और प्रशासन को पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया। कई संवेदनशील जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं, जबकि प्रभावित इलाकों में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे और मराठवाड़ा में भी तेज बारिश का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कल आंधी चल सकती है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में आज 2 महिलाओं समेत 3 शीर्ष माओवादी कमांडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के अनुसार ये तीनों पिछले 2 दशकों से अधिक समय से माओवादी आंदोलन में सक्रिय थे और कथित तौर पर लगभग 80 हिंसक घटनाओं से जुड़े हुए थे। सरकार पश्चिम बंगाल में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। प्याज लेकर चलने वाली कांदा एक्सप्रेस कल कोलकाता पहुंचेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए ये कदम महत्वपूर्ण है। राज्य में मोबाइल वैन के जरिए करीब 1400 मीट्रिक टन प्याज वितरित किया जा चुका है। इनकी बिक्री 35 रूपए प्रति किलो की दर से की जा रही है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के रविवलसा के पास रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 विद्यार्थी मारे गए और एक अन्य घायल हो गया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री नायडू ने अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली और घायलों को बेहतर उपचार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। पाकिस्तान

0: कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। जबरन गुमशुदगी के मामलों में कथित तौर पर वृद्धि हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर आंदोलन को दबाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ है विशेष शुक्ला।
1: एशियाई खेलों में रोशोबिना देवी वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। मीराबाई ने 28 वर्ष का सूखा खत्म करते हुए भारत को पदक दिलाया।
2: बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि एशियन गेम्स में मेरा मेडल नहीं थे, पर आज फाइनली मुझे मिल गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद में काफी इंजुरी हुए थे, तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होते। मैं इधर आके मैंने सिल्वर मेडल जीते, तो इससे अच्छा खुशी क्या हो सकता है।
1: वहीं जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस के सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा में महेश्वरी सिंह, परिणाज धालीवाल और राइजा ढिल्लों की महिला टीम और अनंतजीत सिंह नरुका, मेहराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। भारत 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ 13वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी में इस वर्ष बिहार की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को दर्शाने वाले 65 स्मृति चिन्ह शामिल किए गए हैं। इनमें मधुबनी और मिथिला चित्रकला, सिक्की और मंजूषा कला, ऐतिहासिक व्यक्तित्व तथा राज्य से जुड़े धार्मिक स्थल शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने की अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को दोहराया। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया, कहा इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में तेज बारिश हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani. I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. India reiterates its interests and concerns with United States regarding act imposing tariffs on countries buying Russian oil and gas. New Delhi rejects Organization of Islamic Cooperation's Jammu and Kashmir reference, says it has nothing to do with internal matters of India. Defence Ministry signs over 810 crore rupees contract with Bharat Dynamics Limited for 160 satellite smart anti-airfield weapons for Indian Air Force. BJP announces party in-charges and co-in-charges for all 36 states and union territories. Deep depression over Bay of Bengal intensifies. Heavy rains lash coastal Odisha and Andhra Pradesh. And in Asian Games, Indian men's badminton team settle for bronze, taking overall tally to 12 medals, including one gold. India today reiterated its interests and concerns with regard to sanctioning Russia and Iran Act. External Affairs Minister S. Jaishankar met U.S. Secretary of State Marco Rubio on the sidelines of the UN General Assembly session this evening and raised concerns regarding the act. Both leaders also discussed India-U.S. bilateral relations and Gulf and Ukraine situations. U.S. President Donald Trump signed into law the sanctioning Russia and Iran last week, which authorizes him to impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas. In response, New Delhi said that it will take all necessary steps to protect its economic interests and ensure energy security for the nation. Jaishankar, who arrived in New York City on Sunday, is leading the Indian delegation for the 81st session of the UN General Assembly. External Affairs Minister S. Jaishankar, UAE Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, and French Foreign Minister Jean-Noël Barrot participated in the India-UAE

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है भारत में समग्र स्वास्थ्य की पहल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बर्नवाल और पत्रकार सौरभ शुक्ला।
2: चर्चा में आपका स्वागत है, मैं हूँ सौरभ शुक्ला। आयुष्मान भारत को शुरू हुए 8 साल पूरे हो गए हैं। योजना के विस्तार के साथ अब 70 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को भी इस दायरे में लाया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि 8 साल में आयुष्मान भारत ने आम लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं और इलाज के खर्च को किस हद तक बदला है और आगे इसकी दिशा क्या रहेगी, इन्हीं मुद्दों पर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO डॉक्टर सुनील कुमार बर्नवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आयुष्मान भारत को 8 साल पूरे हो चुके हैं, सरकार 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों की बात कर रही है, इनमें से आप क्या मानते हैं कि असल में फायदा कितने लोगों को, कितने परिवारों को हुआ है, कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिला है?
3: अभी तक के जो आंकड़े हैं जो 8 साल पूरे होने पे उपलब्ध हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जैसा अधिकतर लोग जानते होंगे, ये विश्व की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है। इसके तहत भारत सरकार देश की आबादी के बॉटम 40% पॉपुलेशन को 5 लाख रुपए की प्रति परिवार प्रति वर्ष हेल्थ कवर उपलब्ध कराती है और आज तक 13 करोड़ से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। तो 13 करोड़ से अधिक लोगों ने विभिन्न अस्पतालों में, जो सूचीबद्ध अस्पताल हैं, हमारे 38,000 से ज्यादा अस्पताल हैं जहां इनका इलाज हुआ है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए इसके इलाज हुए हैं। तो 13 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लाभ उठाया है और अगर इसे मनी के टर्म्स में देखें तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा की बचत इन 13 लाख लोगों के परिवारों को हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है जो सरकार के

0: माध्यम से गरीब परिवारों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।
1: आम आदमी के लिए सर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आयुष्मान कार्ड होने पर 5 लाख रुपए तक का एक कवर मिलता है उसे, तो ये कवर वास्तव में काम कैसे करता है और किन किन बीमारियों के इलाज में फायदा होता है? क्या कुछ ऐसा भी है जहां ये कार्ड काम नहीं आता है?
0: देखिए, सबसे पहले तो ये कार्ड काम ही करता है जहां जो सूचीबद्ध अस्पताल है। तो जो 38,000 सूचीबद्ध अस्पताल हैं, जिसमें लगभग 18,000 प्राइवेट अस्पताल हैं और 20,000 करीब सरकारी अस्पताल हैं। दूसरा, ये जो कार्ड है ये केवल इंडोर पेशेंट के लिए कार्य करता है। ये सर्दी खांसी के इलाज की तरह आउटडोर पेशेंट के लिए नहीं है, बल्कि इसके लिए एडमिट होना होता है। भले ही वो एडमिशन केवल एक दिन भर के लिए ही हो, जैसे एनिमल बाइट है या फिर डायलिसिस है, इसमें जरूरी नहीं है कि पूरे 24 घंटा एडमिट होते हैं, लेकिन एडमिशन लेना होता है। आईपीडी पेशेंट के रूप में ही इसमें ट्रीटमेंट हो सकता है। तीसरा, ये कार्ड जिनको मिला है, जो लाभार्थी की सूची में है, इन्हें एडमिशन के समय, रादर रजिस्ट्रेशन के समय, अपने आप को आइडेंटिफाई करना होता है बायोमेट्रिक के माध्यम से। वो चाहे फिंगरप्रिंट के माध्यम से हो, फेस ऑथ के माध्यम से हो, और जहां कहीं नेटवर्क नहीं उपलब्ध हो पाता है, इवन ओटीपी के माध्यम से हो, परंतु उसे ऑथेंटिकेट होना पड़ता है कि ये जेन्यून पेशेंट है जिसकी पहले से लाभार्थी की सूची में नाम है और इन्हें उस इलाज की जरूरत है। इसके बाद ये जैसे ही इलाज की जरूरत है, अगर वो सर्टिफाई करते हैं डॉक्टर, तो उससे संबंधित कागजातों को अपलोड करना होता है एनएचए के आईटी सिस्टम पे, ताकि ये वेरीफाई हो सके कि इन्हें उस इलाज की जरूरत है। और तभी जब प्लेटफॉर्म से हम उसे ऑथराइज करते हैं, जिसे प्री ऑथराइजेशन कहा जाता है, जब ऑथराइज करते हैं तब वो ट्रीटमेंट शुरू होता है। इमरजेंसी के मामलों में जहां पे ट्रीटमेंट शुरू करना अत्यंत आवश्यक है, वैसे में ये फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि आप एडमिशन ले लें, ट्रीटमेंट शुरू कर दें, उसके बाद आप प्री ऑथराइज कर दें, जो कि ट्रीटमेंट शुरू होने के 3 दिन के अंदर का होना चाहिए। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था इसलिए की गई है कि वो लाभार्थियों का सही आइडेंटिफिकेशन हो सके, दूसरा एक्सेस या अंडर ट्रीटमेंट नहीं हो, तीसरा ये है कि ट्रीटमेंट जो है वो जितने पैकेजेज हैं, जितने हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, और अभी तक जो हमारा लेटेस्ट पैकेज है उसके अनुसार 1961 लगभग 2000 ट्रीटमेंट प्रोसीजर हैं जो कि इसके तहत एडमिसिबल हैं, और इसमें अधिकतर बीमारियां शामिल हैं, कैंसर, हार्ट डिजीज, लीवर, किडनी, इवन जो फीवर होते हैं जिसमें एडमिशन कराना होता है, डायलिसिस, ये सारे अधिकतर पैकेजेस शामिल हैं। कैंसर के ही काफी सारे पैकेजेस हैं जिसमें है, इसमें शामिल हैं। कई ऑर्गन ट्रांसप्लांट के भी पैकेजेस हैं, कैटरैक्ट है, नी ट्रांसप्लांट है, इस तरह के भी पैकेजेस इसमें शामिल है। तो ये बहुत बड़ा लाभ है जिस बीमारी की इलाज गरीब आदमी कभी सोच नहीं पाता था, और रीजन ये था कि उस बीमारी के इलाज के लिए कोई न कोई चीजें उन्हें छोड़नी पड़ती थी, चाहे वो जमीन बेचना होता था या बच्चों की पढ़ाई छोड़नी होती थी, और कई बार तो बुजुर्गों के लिए इलाज छोड़ ही देना होता था और सारी आवश्यकताओं को देखते हुए। इसके साथ ही साथ कई बार महिलाओं का इलाज पोस्टपोन होता रहता था, जो कि इस योजना के आने के बाद से, और योजना के आंकड़ों से भी पता चलता है कि लगभग 50% इलाज महिलाओं के द्वारा लिया गया है। तो ये शो करता है कि बहुत सारी बीमारियां जो कि दबा दी जाती थी, पोस्टपोन कर दी जाती थी, उनका इलाज इस योजना के आने के बाद संभव हो सका है। तो एक बहुत बड़ी सुविधा सरकार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा रही है और लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं, और हमारी सिस्टम भी ऐसी है जिसमें कि आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये सारे ट्रांजेक्शन संभव हो पाते हैं।
1: सर, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल था कि जब अस्पताल व्यक्ति पहुंचता है तो बहुत ही इमरजेंसी होती है, उसे अंदाजा नहीं होता है कि हम सही अस्पताल में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, आयुष्मान में कवर है ये हॉस्पिटल नहीं, तो ये वो कैसे पता कर सकता है?
0: इसके लिए हम लोगों ने सिटीजन एंगेजमेंट के लिए एक अच्छे पुख्ता व्यवस्था किया है, जो रोबस्ट सिस्टम है, और इसके 4 मेजर चैनल है जिससे ये सारी जानकारियां मिल सकती है, न केवल अस्पताल की और बीमारी की, इस योजना से संबंधित कोई भी जानकारी इससे ली जा सकती है। सबसे पहला तो जो सिटीजन के लिए सबसे आसान भी है, 1-4-555 टोल फ्री नंबर है पूरे देश के लिए, और इस नंबर पे फोन करने से हमारा कॉल सेंटर जो

0: 24/7 काम करता है। इसके माध्यम से योजना की सारी जानकारी ले सकते हैं, कौन सा हॉस्पिटल इम्पैनल्ड है, कौन सी बीमारी कवर्ड है, किस अपने जहां उपस्थित हैं उसके आसपास का कौन सा हॉस्पिटल है, ये भी जानकारी ले सकते हैं कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट स्पेशलिटी वाली कौन सी सूचीबद्ध हॉस्पिटल है, तो ये सारी जानकारी उससे लिए। सिमिलर जानकारी ये पोर्टल पे भी उपलब्ध रहती है, तो जिनको पोर्टल का एक्सेस है, खास करके नए जनरेशन के लोगों को जो देख पाते हैं, वो आसानी से उस पे भी सर्च कर सकते हैं। हम लोगों ने एक आयुष्मान ऐप बनाया है, जो आयुष्मान ऐप को अपग्रेड करके ऐसा सिस्टम बनाया है कि व्यक्ति अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकता है, अपना कार्ड डाउनलोड कर सकता है, अपने नियर बाय हॉस्पिटल की जानकारी ले सकता है और इसके साथ साथ अपना फीडबैक भी दे सकता है। और सेम चीज हम लोगों ने व्हाट्सएप जो है चैटबॉट के माध्यम से एक आयुष्मान सारथी भी शुरू किया है कि अगर चैटबॉट पे जैसे ही हाई करेंगे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा।
1: तो आइए सुनते हैं आयुष्मान भारत के 8 साल पूरे होने पर ये खास रिपोर्ट।
2: आयुष्मान भारत योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो भारत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की अपनी यात्रा में एक बड़ा पड़ाव पार कर रहा है। नगद रहित अस्पताल उपचार से लेकर डिजिटल स्वास्थ्य आईडी तक यह योजना लाखों लोगों के इलाज तक पहुँचने के तरीके को बदल रही है। 8वें वर्ष में प्रवेश करते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ भारत की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में उभरी है, जो हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का नगद रहित अस्पताल उपचार कवर देती है। 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक देश की लगभग 33% आबादी शामिल है और 21 सितंबर 2026 तक 48 करोड़ 51 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। 38,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों के नेटवर्क के जरिए ABPMJ अब तक 13 करोड़ 25 लाख अस्पताल भर्तियों को कवर कर चुका है, जिनकी कुल लागत 2.03 लाख करोड़ रुपए है। इससे कमजोर तबके के परिवारों पर पड़ने वाला निजी स्वास्थ्य खर्च काफी कम हुआ है। योजना 27 विशेषताओं में 1961 प्रक्रियाओं को कवर करती है और अब आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी स्टाफ, 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों समेत कई अन्य वंचित समूहों को भी शामिल करती है। लेकिन आयुष्मान भारत सिर्फ अस्पताल कवर नहीं है, यह 4 स्तंभों पर टिका है जो मिलकर काम कर रहे हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को समुदायों के करीब लाते हैं, जहां मुफ्त दवाएं, जांच और डेली परामर्श उपलब्ध हैं। इन केंद्रों पर अब तक 540 करोड़ से अधिक फुटफॉल और 50 करोड़ टेली परामर्श दर्ज किए गए हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 97 करोड़ 61 लाख से अधिक आभा स्वास्थ्य आईडी बनाई गई है, जिनसे लगभग 120 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जुड़े हैं, ताकि अस्पतालों में कागज रहित और सुचारू इलाज संभव हो सके। वहीं पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ शहरी और ग्रामीण भारत में लैबों, क्रिटिकल केयर ब्लॉक और रोग निगरानी प्रणालियों को मजबूत कर रहा है। इन सभी पहलों के जरिए गांव के स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक एक सतत देखभाल प्रणाली तैयार हो रही है, जो भारत को सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य के करीब ले जा रही है। 8 साल बाद आयुष्मान भारत सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच बन चुका है, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी परिवार को स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा के बीच चुनाव न करना पड़े।
1: कई बार लोगों की शिकायत ये होती है कि योजना का दायरा तो उन्हें पता है लेकिन अस्पताल में उनसे ज्यादा पैसे मांग लिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या मैकेनिज्म हमने बनाया है कि उनकी शिकायतों को का निपटारा हो सके या शिकायतें सही जगह पहुंचे कैसे?
0: 4 माध्यम रखा है जिससे कोई भी व्यक्ति न केवल जानकारी प्राप्त कर सकता है बल्कि शिकायत भी कर सकता है, तो शिकायत के लिए भी ये 4 चैनल्स ओपन है। दूसरी बात कि ये जो शिकायत स्पेसिफिक केस है जिसमें किसी व्यक्ति को एलिजिबल रहने के बावजूद ट्रीटमेंट डिनाई कर दिया गया या फिर पैसे मांगे गए या कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे केसेस को हम लोग SOS कैटेगरी में रखते हैं और इन केसेस को 5 घंटे के अंदर ही निपटारा करना होता है, क्योंकि अगर ये ज्यादा समय लगेगा तो वो एक तरह से जो शिकायत है वो चाहे उसका रिजल्ट आउट मतलब ऑलरेडी हो जाएगा, चाहे तो ट्रीटमेंट नहीं होगा या

0: फिर पैसे दे देगा या कुछ इस तरह का होगा। तो इसलिए इन्हें SOS कैटेगरी में रखा गया है और 5 घंटे के अंदर इसका निपटारा करना है। और ऐसे केसेस को हम लोग न केवल ये IT सिस्टम में रखते हैं बल्कि हम डायरेक्टली नेशनल लेवल से स्टेट को और डिस्ट्रिक्ट को कॉल करते हैं, साथ ही साथ हॉस्पिटल को भी कॉल करते हैं ताकि उन्हें पता चले कि इस तरह का कंप्लेन आया है। और हमने देखा है कि 90% से ज्यादा केसेस में ये चीजें रिजॉल्व हो गई हैं। और ये मैं नागरिकों को भी अवगत कराना चाहता हूं कि ये सुविधा उन्हें उपलब्ध है। जहां भी आयुष्मान कार्ड देने के बावजूद 1 रुपये की भी मांग की जाती है तो वो पहले तो उनसे रसीद मांगे ताकि ये पता चले किस चीज के लिए उन्होंने पैसे मांगे हैं। वो इलाज अगर आयुष्मान भारत में कवर्ड है तो 1 रुपये भी नहीं लगने चाहिए। और अगर वो रसीद दिए बिना पैसे की मांग कर रहा है तो निश्चित रूप से इस पे शिकायत की जाए और इसका निपटारा 5 घंटे के अंदर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की जो पूरी टीम है कॉल सेंटर और ये लग करके करती है और हमें अधिकतर मामलों में सफलता मिल जाती है।
1: आज के दौर में तकरीबन कितने सरकारी और निजी क्षेत्र के अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़े हुए हैं और क्या ग्रामीण और छोटे शहरों में इसे और बढ़ाने की योजना है हमारी?
0: देखिए, ये जो अब तक की स्थिति है 38,000 से ज्यादा हॉस्पिटल जो है ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सूचीबद्ध है, इम्पैनल्ड है। इसमें से 18,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, 20,000 के आसपास सरकारी अस्पताल हैं जिसमें मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिविजनल हॉस्पिटल, CHCs ये सारे इम्पैनल्ड है। ये 38,000 हॉस्पिटल पूरे देश में स्प्रेड आउट है। जाहिर सी बात है कि शहरों में ज्यादा हॉस्पिटल है, परंतु इस योजना के माध्यम से जिसको सरकार फंड कर रही है हमने इवन रूरल एरिया में बहुत ज्यादा हेल्थ सर्विस की डिमांड बढ़ाई है। मतलब लोग जो है अब इलाज करने आ रहे हैं जो पहले इलाज नहीं कर पा रहे थे। और जब इलाज करने आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि जिस क्षेत्र में डिमांड है वहां हॉस्पिटल स्थापित करें। तो इस योजना के माध्यम से रिमोट एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में काफी हॉस्पिटल्स खुले हैं, कई खुलने की भी प्रक्रिया में है। शायद ही कुछ जिले बचे हों जहां पे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल अभी तक ना पहुंचा। सरकारी अस्पताल तो निश्चित रूप से सरकार की योजना के तहत ही खुल रही हैं, परंतु ये सुविधा इस योजना के आने के बाद से बढ़ी है। इवन सरकारी अस्पताल जो इसमें सूचीबद्ध है वो ऐसे तो निःशुल्क इलाज सभी लोगों की करते हैं, लेकिन वो आयुष्मान कार्ड धारी को आयुष्मान कार्ड मांग करके इलाज करना है ताकि इलाज तो उन्हें निःशुल्क मिलेगा लेकिन सरकारी अस्पताल को बाद में इस योजना के तहत राशि मिल जाएगी, क्लेम अमाउंट मिलेगा और इसका उपयोग करके सरकारी अस्पताल अपने आप को ज्यादा सुदृढ़ कर सकते हैं। जो आकांक्षी जिले हैं उसमें जो हॉस्पिटल स्थापित हैं वहां अगर कोई इलाज करता है तो जो क्लेम अमाउंट होता है उस पे हम एक्स्ट्रा इंसेंटिव देते हैं ताकि वो वहां पे न केवल सर्वाइव करे वो बेहतर कार्य कर सके।
1: इन अस्पतालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है किसी इलाज के लिए उसकी मॉनिटरिंग नेशनल हेल्थ अथॉरिटी किस तरह से करती है?
0: देखिए, हम लोग जब भी किसी हॉस्पिटल को सूचीबद्ध करते हैं, इम्पैनल करते हैं, तो उसके विभिन्न क्राइटेरियाज रखे हैं। जैसे मिनिमम नंबर ऑफ बेड्स होने चाहिए, ज्यादातर स्पेशलिटी में 20 बेड है। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या स्पेशलिटीज हैं जिसके लिए वो इम्पैनल कर रहे हैं। मतलब अगर एक हॉस्पिटल में 4 स्पेशलिटी है तो उन्हें चारों के लिए इम्पैनल होना पड़ेगा। एक चूज नहीं कर सकते कि जिसमें ज्यादा फायदा है, जिस बीमारी के इलाज में उसको चूज नहीं कर सकते, बल्कि जो स्पेशलिटी है सभी को रखना पड़ेगा। स्पेशलिटी जैसे ही डालेंगे उन्हें बताना पड़ेगा डॉक्टर्स कौन कौन है, उनके क्वालिफिकेशंस क्या है, ये जो डॉक्टर्स हैं ये फुल टाइम है या पार्ट टाइम है। और ये चीज हम लोगों ने अब इवन हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री पे उन डॉक्टरों का रजिस्टर होना मैंडेटरी किया है ताकि वहां से हम सारे इंफॉर्मेशन निकाल पाए कि जो डॉक्टर की ये नाम बता रहे हैं वो डॉक्टर सच में वेरीफाइड है, वो डॉक्टर और कहां कहां है। इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री पे भी उसे रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, जिन राज्यों में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है उसके तहत रजिस्टर होना चाहिए, फायर की जो क्लियरेंसेस हैं, बिल्डिंग लॉज के क्लियरेंसेस हैं, बायोमेडिकल वेस्ट के क्लियरेंसेस हैं, ये सब मैंडेटरीली जो रिक्वायर्ड है वो उसमें निश्चित रूप से होना चाहिए। साथ ही साथ हमने इस वर्ष अब नए हॉस्पिटल इम्पैनल

0: करने के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसे भी मैंडेटरी किया।
1: सर, इस का आंकड़ा रहता है जहां पर इलाज चल रहा होता है, दावे आ रहे होते हैं आप लोगों के पास में क्लेम्स में, तो ऐसे में एक आशंका यह भी रहती है कि कहीं ये दावे फर्जी तो नहीं आ रहे हैं, कहीं अनावश्यक इलाज तो नहीं किया जा रहा है।
0: अच्छी बात है इस आयुष्मान भारत पीएमजे में कि हर इलाज को बंडल्ड पैकेज के रूप में बनाया गया है। मतलब अगर आपने कैटरेक्ट सर्जरी कराई है तो उसमें दवा का कॉस्ट अलग और कंज्यूमेबल्स का अलग, ऑपरेशन का अलग नहीं है, वो सब मिला करके एक बंडल्ड कॉस्ट है। नी ट्रांसप्लांट का बंडल्ड कॉस्ट है, डायलिसिस का बंडल्ड कॉस्ट है। तो अगर आपने ज्यादा इलाज कराया तो भी आपको ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। मतलब अगर कोई हॉस्पिटल सोचता है कि इसे ज्यादा इलाज करा दें, ज्यादा दिन रख लें, तो उससे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि उसके कॉस्ट फिक्स्ड हैं। दूसरी बात यह है कि अब जब वो क्लेम सबमिट करते हैं तो ऐसे कई शिकायतें आई और कई ऐसे पाए भी गए जिसमें हॉस्पिटल्स ने क्लेम गलत सबमिट किए, एक्स्ट्रा सबमिट किए, गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किए। इसमें तीन कैटेगरी आता है। एक तो है जिसमें एरर्स मिल जाते हैं, दूसरा है जिसमें एब्यूज हुआ है, मतलब कि ट्रीटमेंट चाहिए था थोड़ा सा, उसको और दो तीन पैकेज बुक करके ट्रीटमेंट कर दिया, इलाज एक चीज के लिए गए थे साथ में दो और इलाज कर दिए, एक्स्ट्रा बुक कर दिए, इस तरह के एब्यूज हैं। थर्ड है फ्रॉड है, जिसमें पेशेंट कोई और है, ऑथराइजेशन किसी का है, फोटो किसी और का लगाया है, डॉक्यूमेंट जो लगाया कैटरैक्ट में लेंस या नी ट्रांसप्लांट में जो इम्प्लांट लगाया है वो पता चला कि वो लगा ही नहीं है, या लगा है तो एक ही इम्प्लांट चार जगह लगाए हैं या एक ही लेंस चार जगह लगाए हैं, वो पकड़ना जरूरी है।
1: डुप्लीकेसी
0: हो गई
1: या कह लीजिए
0: तो
1: डबल।
0: हम लोगों ने एक नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट बनाया और जिस तरह से वो दिमाग लगा रहे किस तरह से चीट कर सकते हैं, हमारी टीम ने इस पे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बहुत सारे ऐसे केसेस को सबसे पहले क्लेम प्रोसेसिंग शुरू होने के पहले इसे नाफू ट्रिगर से गुजरना पड़ता है और ऐसे हम लोगों ने 61 ट्रिगर्स लगाए हैं और इसमें वो सारे चीजें जिसमें फोटोग्राफ्स बदले गए हैं, डॉक्यूमेंट गलत लगाए गए हैं, इम्प्लांट के बार कोड मिसमैच हो रहे हैं या बार कोड कई जगह यूज हुए हैं, ऐसे करके हम लोगों ने कई सारे केसेस को पकड़े हैं और अब तक 670 करोड़ के आसपास का क्लेम हम लोगों ने प्रिवेंट किया। वो क्लेम को हम पे नहीं करके उसे रिजेक्ट किए और ऐसे मामले को हम लगातार वॉच करते हैं। जो भी हमारा ट्रिगर जो है सस्पिशियस बताता है उनसे हम स्टेट्स को भेजते हैं कि उसे वेरीफाई किया जाए। उनके यहाँ भी स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट है जिसमें डॉक्टर्स होते हैं जो चेक करते हैं फिर से, या जरूरत पड़ने पे हॉस्पिटल इंस्पेक्ट भी करते हैं, और अगर वो फ्रॉड निकलता है तो उसे न केवल क्लेम रिजेक्ट होता है, फ्रॉड के केस में वो डी इम्पैनल हो सकते हैं, 5 times तक उस पे पेनाल्टी लग जाती है क्लेम के अमाउंट पे। तो इस तरह की कार्रवाइयां भी होती है, कुछ केसेस में इवन FIR भी दर्ज होते हैं। तो ये चेक्स है, अब इसमें हमारे ट्रिगर्स और ज्यादा एक्यूरेट हो रहे हैं बिकॉज हम अब मशीन लर्निंग और AI का यूज कर रहे हैं, जिससे कि टूल भी ये समझने लगता है कि इस तरह की टेंडेंसी बढ़ रही है, इस तरह के क्लेम्स ज्यादा आ रहे हैं और हम जो डॉक्यूमेंट हैं उसको OCR टेक्नोलॉजी से पढ़ पाते हैं और इसलिए इस तरह के ट्रिगर्स को अप्लाई कर पाते हैं। तो ऐसी कई व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा हम लोगों ने एक नई चीजें और शुरू की है जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लेम हैं जो बहुत छोटे अमाउंट के हैं, मतलब वॉल्यूम बहुत है वैल्यू बहुत कम है, तो अब हम लोगों ने AI को यूज करके ऑटो एडजुडिकेशन करना शुरू किया है कि सिस्टम ही उसको एडजुडिकेट कर देती है बेस्ड ऑन जो रिपोर्ट्स देते हैं। तो ऑटो एडजुडिकेशन के बाद से लगभग 30% ऑफ द क्लेम्स इन वॉल्यूम टर्म्स अब ये ऑटो एडजुडिकेशन से क्रॉस कर रहा है। तो ये एक अच्छा सिस्टम बना है, आने वाले दिनों में और भी सारे पैकेजेस जो कि हाई वैल्यू भी हों उनको भी ऑटो एडजुडिकेशन के माध्यम से ले जाने का प्रयास किया जाएगा और इसके लिए हम लोगों ने एक हैकाथॉन किया था जिससे हमें अच्छे सॉल्यूशंस मिले और तभी हम इस चीज को लागू कर पाए हैं। आने वाले वर्षों में जब हम 9th year में जा रहे हैं इस योजना के, इसका उपयोग और बढ़ाएंगे।
1: सर, कोई ऐसा भी जिला या राज्य है जहां पे लग रहा है आपको कि इस योजना को लागू करना चुनौतीपूर्ण है, उन जगहों पे किस तरह से काम कर रहे हैं क्या? और
0: हमारे लिए जो एक तो अब पूरा देश इस योजना से लाभान्वित हो रहा है, जो अंतिम राज्य था वो पश्चिम बंगाल था जो कि 16 अगस्त

को इस योजना पे आ गया है, तो अब तो पूरे देश में इसे लागू किया गया है। जो हमारी कठिनाई आती है वो किसी राज्य विशेष में ज्यादा नहीं है, बट कुछ क्षेत्र जरूर हैं जो काफी रिमोट हैं। वो ट्राइबल एरियाज में भी हो सकते हैं, हिली रीजन्स में आते हैं, फॉरेस्ट रीजन्स में आते हैं, जहां पे नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। और ये नेटवर्क की प्रॉब्लम हॉस्पिटल्स तो जब बनाते हैं तो हॉस्पिटल किसी न किसी व्यवस्था से नेटवर्क सुनिश्चित कर लेती है, बट हमें आयुष्मान कार्ड बनाने में कई बार कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कार्ड भी ऑनलाइन ही ऑथेंटिकेशन के बाद बनता है। तो हम लोगों ने ऐसे केसेस में ऑफलाइन भी व्यवस्था की है। इसके अलावा जो चैलेंज ये आ रही है कि कुछ रिमोट क्षेत्रों में अभी

0: किसी व्यवस्था से नेटवर्क सुनिश्चित कर लेती है। बट हमें आयुष्मान कार्ड बनाने में कई बार कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कार्ड भी ऑनलाइन ही ऑथेंटिकेशन के बाद बनता है। तो हम लोगों ने ऐसे केसेस में ऑफलाइन भी व्यवस्था की है। इसके अलावा जो चैलेंज ये आ रही है कि कुछ रिमोट क्षेत्रों में अभी भी सभी स्पेशलिटी के हॉस्पिटल्स नहीं मिल पाते हैं, जो हमारी सुपर स्पेशलिटी है, जैसे कैंसर है, हार्ट डिजीज है, किडनी, लीवर, कई दूरस्थ क्षेत्रों में ये स्पेशलिटी नहीं हो पाती है, और इसलिए लोगों का डिपेंडेंस फिर दूसरे बाहर जाकर के इलाज कराने पे हो जाता है। तो ये चैलेंजेज हैं, बट इसको धीरे धीरे हम ओवरकम कर रहे हैं और हमें लगता है आने वाले दिनों में ये बेहतर ही होता चला जाएगा। दूसरी एक ये स्थिति है कि हम डिजिटल मिशन जो रखे हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके माध्यम से पेशेंट को हम एम्पावर कर रहे हैं, सो दैट कि दे हैव ऑल हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑन देयर मोबाइल। अब ऐसा होने से इनका लाभ ये हो रहा है कि वो कहीं भी इलाज करते हैं तो उन्हें रिकॉर्ड कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मोबाइल से शेयर कर पाते हैं। इससे ये बेहतर डायग्नोसिस में फायदा होता है और ये पीएमजे के भी बेनिफिशियरीज को बहुत लाभ हो रहा है। तो हम इसके माध्यम से लोगों को ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड ऐप है और भारत सरकार ने जो लॉन्च किया है आरोग्य सेतु 2.0, ये लोगों के लिए बहुत बड़ा सुविधा है, जिसके माध्यम से सारे रिकॉर्ड अपने मोबाइल में रहता है और उससे हिस्ट्री भी बनती जाती है, इलाज भी बेहतर हो पाता है, डायग्नोसिस बेहतर हो पाता है। तो ऐसे थोड़े बहुत अभी चैलेंजेज हैं, परंतु हमारा देश काफी बड़ा है, आबादी बहुत है, क्षेत्र भी अलग अलग तरह का है, चैलेंजेज अलग है, कल्चरली डिफरेंट है, ज्योग्राफिकली डिफरेंट है, इसलिए इस योजना में हमेशा थोड़ी बहुत तो चैलेंज रहेगी, परंतु हम उसे इतने बड़े सिस्टम में नेशनल लेवल पे काफी हद तक सॉल्व करने में सफल रह रहे हैं।
1: सर, 70 साल और उससे ज्यादा की उम्र के लोगों को भी योजना के दायरे में लाया गया है अब, तो ये क्या मुश्किल रहा, कुछ चैलेंजेस आए यहाँ भी?
0: एक तरह से चैलेंज से ज्यादा ये अपॉर्चुनिटी है। हम 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को, जबकि ऐसे उम्र में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी इंश्योरेंस देना बंद कर देती है, कई घरों में परिवार वाले भी इलाज कराना नहीं चाहते हैं और वो बुजुर्ग व्यक्ति भी छोड़ देता है कि अब हमारा समय आ गया, बच्चों पे ध्यान दो, इस तरह की बात करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने ये योजना वै वंदना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अधीन लाई है और ये अब 2 वर्ष पूरा होने को है, अक्टूबर 2024 में चालू किया गया था। 6 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग को इसमें लाभ मिलेगा ऐसी उम्मीद की जा रही है। 1.36 करोड़ कार्ड लोगों ने क्रिएट कर लिया है। लगभग 20 लाख से ज्यादा लोगों ने, 70 वर्ष से ज्यादा के लोगों ने इलाज का लाभ भी लिया है और 5000 करोड़ तक की राशि का उनका बचत भी हो चुका है जो सरकारें खर्च कर रही है। तो ये देख के लग रहा है कि जिन लोगों को स्वास्थ्य की सबसे जरूरत है, सबसे ज्यादा, उनके लिए सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। और हमें सबसे ज्यादा क्वेरी ऐसे ही लोगों से आती है जो कि 70 वर्ष से ज्यादा है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी आय वर्ग से हो, उनको ये लाभ मिल पा रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें चैलेंजेस थोड़ी आती है, क्योंकि काफी बुजुर्ग लोग जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो कई बार उनका फिंगरप्रिंट नहीं काम करता, तो हम लोगों ने फेस ऑथ की व्यवस्था की है। इस तरह से हमें छोटे मोटे व्यवस्थाएं और इम्प्रूव कर रहे हैं। हॉस्पिटल में जैसे वो पहुंचते हैं तो उनकी बैठने की व्यवस्था, उन्हें ऐसा सुविधा हो जिससे वो अनकंफर्टेबल नहीं हो हॉस्पिटल में जाकर के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि कई बुजुर्ग है, कई बार अकेले ही आते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये जरूरी है कि हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो सूचीबद्ध अस्पताल है उनमें भी उनकी आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। तो ये कार्य भी NHA कोशिश कर रहा है करने का।
1: एक आखिरी सवाल सर, जल्दी से उसका जवाब आपसे चाहूंगा कि 8 सालों में क्या सीखने को मिला हमें और अगले 4-5 सालों की अगर बात करें तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी?
0: पिछले 8 वर्षों की जर्नी में ये पता चला कि हमें अगर इतने बड़े स्केल पे लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करानी है तो IT सिस्टम रोबस्ट होना चाहिए, जिससे कि हम हर तरह के डिफरेंट टाइप के केसेस को हैंडल कर सकें। अब जो आने वाले समय में हमें ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि पिछले 8 सालों में जैसे हम लोगों ने 13 करोड़ पेशेंट का इलाज करा है, इनके ट्रीटमेंट की हिस्ट्री से रिलेटेड आंकड़े उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों को एनोनिमाइज करके, इससे पर्सनल इंफॉर्मेशन हटा करके, इन आंकड़ों की बहुत ज्यादा वैल्यू है रिसर्च के लिए।

0: डिजीज सर्विलेंस के लिए, पूरे देश की डिजीज मैपिंग के लिए, किस क्षेत्र में किस तरह की बीमारियां बढ़ी है या हैं, किस एज ग्रुप में किस तरह की बीमारी है, किस जेंडर में कौन सी बीमारी बढ़ रही है, ऐसी तरह की एक्सरसाइज की जा सकती है। और हम जल्द ही एक ऐसा सिस्टम ला रहे हैं जिससे कि जो सिक्योर डेटा एनवायरनमेंट कहलाता है, जिसमें हम इन आंकड़ों को बिना दिए, बिना इसका एक्सेस किए, हम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को, यहां तक कि जो प्राइवेट कंपनीज भी हो सकती हैं, टर्म्स कंडीशन ऑफ कोर्स अलग से डिसाइड की जाएगी, मतलब ये डेटा पे अपने एल्गोरिदम रन करके रिजल्ट्स ले सकते हैं। ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई है और ये फर्दर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेवरेज करने में फायदा आएगा, जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने, इसके माध्यम से नए नए टूल्स, चाहे वो स्क्रीनिंग का हो, डायग्नोसिस का हो, डेवलप करने में भी सुविधा होगी। तो आने वाले वर्षों में हम नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एक बहुत ही डेटा ड्रिवन आईटी एक्सपर्टीज हासिल करेगा और इसका उपयोग इस योजना के बेहतर और क्वालिटी हेल्थ केयर डिलीवरी में कर पाएगा।
1: जाहिर है इसका फायदा हम लोगों को भी होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।
0: थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत में समग्र स्वास्थ्य की पहल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बर्नवाल और पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है।

0: गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: इंटेंसिटी, इंटेग्रिटी एंड इंटेलिजेंस, दीज आर द थ्री आईज विच द इंडियन कंटिंजेंट नीड्स एट द एशियन गेम्स एंड दे हैव बीन डिस्प्लेइंग दीज एट्रीब्यूट्स विद देयर ट्रेमेंडस परफॉर्मेंसेस। हेलो एंड वेलकम टू द एशियन गेम्स आईजी नगोया 2026 रिपोर्ट ऑन आकाशवाणी। माय नेम इज अभिनव पुंछी एंड आई विल बी टेकिंग यू थ्रू ऑल द एक्शन फ्रॉम द एशियन गेम्स टुडे एंड हियर आर द हेडलाइंस। It was another exciting day as our nation won 5 medals. Mirabai Chanu starring with the silver, ending her Asian medal drought. While 4 bronzes came from Jayameena in soft tennis, the men's badminton team, the women's skeet shooting team and the men's skeet shooting team. There was disappointment though as the star-studded 10-meter women's air pistol contingent ended medalless. However, Wushu athlete Roshabina Devi meanwhile is on the cusp of history as she looks to convert her 2023 Asian silver to gold tomorrow after winning her semi-final today. In Kabaddi, there were wins for both the men's and women's teams. While the Indian women's hockey team continued their goal-scoring spree by thrashing Thailand. The best moment for India came from the weightlifting arena. So let's hear what Vijeta Chaturvedi had to say.
2: भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। मीराबाई चानू ने कुल 198 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने स्नैच में 87 किलोग्राम, क्लीन एंड जर्क में 111 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उनका कुल स्कोर 198 किलोग्राम रहा। गोल्ड मेडल नॉर्थ कोरिया की री सोंग गुम ने जीता। उन्होंने कुल 215 किलोग्राम वजन उठाया, स्नैच में 94 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 121 किलोग्राम। लेकिन भारत के नजरिए से मीराबाई का ये सिल्वर मेडल बेहद महत्वपूर्ण है। ये उनका एशियन गेम्स में पहला मेडल है। इससे पहले हंगजाऊ एशियन गेम्स 2023 में मीराबाई चौथे स्थान पर रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने पोडियम पर जगह बनाकर एशियन गेम्स में अपने मेडल के सूखे को खत्म कर दिया। मीराबाई के सिल्वर मेडल ने भारतीय वेटलिफ्टिंग के 28 साल के इंतजार को भी खत्म कर दिया। भारत ने आखिरी बार 1998 में बैंकॉक एशियन गेम्स में कर्णम मल्लेश्वरी के जरिए वेटलिफ्टिंग में मेडल जीता था। मीराबाई चानू के साथ भारत की वेटलिफ्टिंग टीम में भारत की भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी

0: राजेश्वरी यादव का महिलाओं के 53 किलोग्राम स्नैच राउंड में पहले प्रयास में 84 किलो और दूसरे प्रयास में 87 किलोग्राम का वजन उठाया था, लेकिन तीसरे और आखिरी प्रयास में वो विफल रही। वो 90 किलो का वजन नहीं उठा सकी, यानी कि स्नैच राउंड में 87 किलो उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा। क्लीन एंड जर्क में 108 किलोग्राम का वजन उठाया। उन्होंने कुल 195 किलोग्राम का संयुक्त भार उठाकर अपने अभियान को 8वें स्थान पर समाप्त कर दिया।
1: We also had great news from Wushu and Sakshi Manwal has a report.
2: Rashivana Devi secured her place in the women's 60kg final after beating Indonesia's Thania 2-0 in the semi-final. The Indian Wushu star will now compete for the gold medal in tomorrow's final on 23rd September. With this victory, India now stands assured of a medal from the world of Wushu in the ongoing Asian Games 2026.
1: There was history made for India in soft tennis, and here's a report of how the action unfolded. Jemina won the bronze medal in men's singles at the 2026 Asian Games in Aichi, Nagoya, becoming the first Indian to win an Asian Games medal in soft tennis. Mina's historic run ended in the semi-finals, where he lost to Japan's Takuya Kurosaka 3-5, 1-4, 1-4, 4-1, 6-4, 1-4. The Indian had earlier beaten the Philippines' Sherwin Nagut in a thrilling 7-game quarterfinal to assure India of its first medal in the sport at the Asian Games. The bronze adds to Mina's steady rise on the international soft tennis circuit. Let's now hear from the Indian athlete who created history in Japan. He's speaking exclusively on Akashvani.
3: बिल्कुल भरोसा था, और सबसे बड़ी चीज कि हम स्टार्टिंग में क्वार्टर फाइनल्स भी हारे, हम मिक्स डबल्स में भी प्री क्वार्टर फाइनल्स हारे, तो उसके बाद यहाँ पर मेडल निकालना ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि जब मेंस इवेंट में हम जीता जीता मैच हारे थे तो रात रात नींद नहीं आ रही थी और मेंटली बहुत प्रेशराइज भी हो रहे थे, और उसके बाद मिक्स डबल्स इवेंट्स में भी हम जीता हुआ मैच हार गए तो और डिसअपॉइंट हुआ मैं खुद से बहुत। मैं ही जान पा रहा हूँ कि वो कितना मुश्किल था मेरी टीम के लिए, मेरे कोच के लिए, मेरे घर वालों, स्पेशली इंडिया के लिए, इंडिया के सॉफ्ट टेनिस के जो बच्चे थे, जो करोड़ों भारतीयों की उम्मीद है उस पर खड़ा उतरना सर, ये मेरे लिए ओलंपिक मेडल से बराबर है। आकाशवाणी से जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, इट वॉज अ मोटिवेशन, मौका दिया था मेरे सपने और मेरी इच्छा जाहिर करने का दुनिया के सामने। तो सुधे सर और हमारा सपना था सर, आज हम यहाँ पर खड़े हैं, तो वाकई में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आकाशवाणी का, टीम का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: टाइम नाउ टू हेड टू द शूटिंग रेंज, वेयर शाहिद आजमी हैज अ रिपोर्ट फ्रॉम अ मिक्स्ड डे फॉर द इंडियन कंटिंजेंट।
4: शूटिंग रेंज से भारत के लिए डबल ब्रॉन्ज की खबर सामने आई है। स्की टीम इवेंट में भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला और पुरुष दोनों टीम स्पर्धाओं में कांस्य पदक अपने नाम किए। सबसे पहले बात महिला स्की टीम की, राजा ढिल्लोन, परिणाश धालीवाल और महेश्वरी चौहान की तिकड़ी ने शानदार निशानेबाजी करते हुए 331 अंक हासिल किया और भारत की झोली में कांस्य पदक डाल दिया। और इसके बाद पुरुष स्की टीम ने भी कमाल कर दिया। ओलंपियन अनंतजीत सिंह नारुका, मेराज अहमद खान और भौतेक सिंह ने कुल मिलाकर 346 अंक हासिल किए और भारत को एक और कांस्य पदक दिलाया। वहीं महिला स्कीट के व्यक्तिगत फाइनल में राजा ढिल्लोन भी चौथे स्थान पर रही, जबकि शूटिंग के एक बड़े मुकाबले में मनु भाकर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में 181.1 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर रही। यानी शूटिंग रेंज पर भारत ने आज दो कांस्य पदक जरूर जीते, लेकिन राजा ढिल्लोन, अनंतजीत सिंह नरुका और मनु भाकर के व्यक्तिगत मुकाबलों में पदक से चूकने का मलाल भी रहा। निराशा ईशा सिंह और सुरुचि सिंह के प्रदर्शन से भी हुई। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल इवेंट के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। आपको बता दें, ईशा सिंह ने 572 और सुरुचि ने 568 अंक हासिल किए। भारत को शूटिंग से अब तक कुल 7 मेडल मिले हैं, जिनमें 4 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। हालांकि गोल्ड से अभी भी दामन खाली है। आपको ये भी बता दें, पिछले एशियन गेम्स में भारत ने 7 गोल्ड सहित कुल 22 पदक जीते थे।
1: The Indian women's team was in action in hockey, and well, it was another one-sided encounter. India continued its unrelenting form in the women's hockey competition at the ongoing Asian Games after blanking Thailand 21 in a Pool B fixture. This win joins the list of India's thumping 19-0 and 17-1 victories over Uzbekistan and Indonesia respectively. Forward Deepika starred with 9 goals, while Namneet Kaur scored 4, Rutuja Pistol bagged a hat-trick. India won bronze in Hangzhou 2023 and is in hunt for their first Asian Games gold since 1982. Time now to check out what happened in the boxing arena. Courtesy Shahid Azmi.
4: भारत के अंकुश पंघाल आज मुक्केबाजी स्पर्धा में सर्वसम्मति

0: हुए फैसले में जीत के साथ पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पहली बार एशियाई खेलों में उतरे 21 वर्षीय राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता पंघाल ने बहरीन के हमसा ओगेल को प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 5-0 से हराया। पिछले साल विश्व मुक्केबाजी कप में रजत पदक जीतने वाले अंकुश अब पदक पक्का करने से एक कदम दूर हैं। वो क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान के नेहरूज सालिमेव से खेलेंगे।
1: Time now for all the action from the Indian contingent from table tennis. Sakshi Manwal has a report.
2: Harmeet Desai and Yashaswini Ghorpade booked their place in the mixed doubles quarterfinals with a 3-1 victory over Hong Kong's Yu Kuan Tho and Wing Lam. The Indian pair won 11-6, 11-5, 10-12, 11-7 to advance to the last eight. Manu Shah and Dia Chitale stormed into the mixed doubles quarterfinals with a dominant straight games victory over the Maldives' Ahmed Musa and Nazim Eshat. The Indian pair won 11-0, 11-7, 11-6 in just 15 minutes, wrapping up a commanding performance to book their place in the last eight. Harmeet and Yashaswini will face Lin Shidong and Kuai Man of China, while Dia and Manish will face Wang Chun and Du Hoi of Chinese Taipei.
1: The Indian contingent has been giving their best in fencing. Vijeta Chaturvedi has more.
3: फेंसिंग मतलब तलवारबाजी का खेल। इंडिविजुअल सेबर में गीशो निधि कुमार सेन पद्मा ने राउंड ऑफ 32 में शानदार प्रदर्शन करते हुए लाओस के क्विंटम सेसाना को 15-8 से हराया और प्री क्वार्टर यानी कि राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। राउंड ऑफ 16 में उनका मुकाबला कजाकिस्तान के आर्ट्योम से हुआ। यहां भारतीय फेंसर ने कड़ी चुनौती दी, लेकिन मुकाबला 11-15 से हार गए। इस परिणाम के साथ कुमार सेन पद्मा का इंडिविजुअल सेबर अभियान समाप्त हो गया। वहीं बात करें महिलाओं की व्यक्तिगत फॉइल स्पर्धा की तो मीना देवी नौरेम और आशिता स्टेलिन राज जॉयस राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गयी।
1: द इंडियन मेन बैडमिंटन टीम वर ट्राइंग टू क्रिएट हिस्ट्री टुडे। Let's hear what Sakshi Manwal has in her report.
2: India lost 1-3 to China in the men's team semi-final at the Asian Games and settled for the bronze medal. Shi Yukui defeated Lakshya Sen in straight games, winning 21-16, 21-18 in the opening match of the men's badminton team semi-final. Later, Sathvik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty made a strong start against China's Liang Weiqing and Wang Chang, defeating them in straight games 2-0, 21-11, 22-20. They helped India level the score with China at 1-1. However, Li Shifeng beat Ayush Shetty 21-19, 21-13 in straight games to put China 2-1 ahead of India. Arjun and Hariharan went down 21-16, 17-21, 21-9 in the fourth match of the semi-final tie. The Indian pair showed some resistance in the second game, but the Chinese duo quickly stopped the fight back. India's bronze is only its second ever Asian Games medal in the men's team badminton event.
1: India war in action in the kabaddi competition. Vijeta Chaturvedi has more.
3: भारतीय महिला टीम का मुकाबला ईरान से हुआ और भारतीय टीम ने ये मैच 37-23 के अंतर से अपने नाम कर लिया। मुकाबले के पहले हाफ में भारत 19-15 से आगे था। दूसरे हाफ में भारतीय खिलाड़ियों ने डिफेंडिंग और रेडिंग दोनों में बेहतर तालमेल दिखाया और बढ़त को लगातार मजबूत किया। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम ने ग्रुप स्टेज में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अब बात करते हैं भारतीय पुरुष कबड्डी टीम की। पुरुष टीम का सामना बांग्लादेश से हुआ और भारत ने यहां भी बड़ी जीत दर्ज की। भारत ने बांग्लादेश को 48-25 से हराया। पहले हाफ में ही भारत ने 29-9 की मजबूत बढ़त बना ली थी। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष टीम ने ग्रुप स्टेज में अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज की। बांग्लादेश पर जीत के बाद भारत ने ग्रुप ए से सेमीफाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। अब भारतीय पुरुष टीम का ग्रुप स्टेज में आखिरी मुकाबला 24 सितंबर को चीनी ताइपे के खिलाफ होगा। वहीं महिला टीम भी 24 सितंबर को जापान से भिड़ेगी। इसके बाद 25 सितंबर को सेमीफाइनल मुकाबले होंगे। एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का मेडल तो पक्का हो गया है।
1: India were trying to make an impact in swimming after a disappointing day yesterday. Sakshi Manwal has a report.
2: Sajan Prakash missed the swimming men's 100-meter butterfly heats. Meanwhile, his compatriot Benedictin Beniston had finished fourth in the heats with a timing of 53.08 seconds. Anish Sunil and Vedant Madhavan finished fourth and sixth respectively in their men's 200-meter freestyle heats. Anish clocked 1 minute 22.65 seconds.

0: ahead of Madhavan's 1:23.67.
1: There were a lot of hopes from the Indian equestrian contingent. Vijeta Chaturvedi has more.
2: भारतीय घुड़सवारों ने इवेंटिंग के क्रॉस कंट्री चरण में हिस्सा लिया. भारत की ओर से फवाद मिर्जा, अर्जुन सिंह नागरा और आशीष लिमई मैदान में उतरे. इसमें ड्रेसेज, क्रॉस कंट्री और शो जंपिंग जैसे चरण शामिल होते हैं. यानी सिर्फ घोड़े की रफ्तार ही नहीं बल्कि नियंत्रण, सटीकता और बाधाओं को पार करने की क्षमता भी महत्वपूर्ण होती है. हालांकि भारतीय दल का प्रदर्शन आशा अनुरूप नहीं रहा, इसलिए भारत का क्रॉस कंट्री इवेंट में अभियान आज समाप्त हो गया.
1: A lot of the Indian contingent were in action in the squash competition. Well, Sakshi Manwal will tell us how they fared.
0: Indian squash players Abhay Singh, Veer Chotrani and Tanvi Khanna all advanced to the round of 16 in their respective singles events on the opening day of squash at the 20th Asian Games, H.E. Nagoya 2026. Tanvi Khanna made quick work of South Korea's Kim Dami, cruising to a 3-0 victory in just 16 minutes. The Indian won 11-5, 11-7, 11-5 to book a place in the round of 16. Abhay Singh defeated Thailand's Arkaradit 11-1, 11-0, 11-2, cruising to a 3-0 easy victory for himself. Veer Chotrani defeated Sri Lanka's Shamil Vakil 11-8, 11-3, 11-3, then also securing a place for himself in the round of 16 men's singles in squash.
1: There was a lot at stake for the Indian contingent in rowing. Shahid Azmi tells us how it unfolded.
3: रोइंग से भारत के लिए अच्छी खबर है. एशियन गेम्स में भारतीय रोवर्स ने चार स्पर्धाओं के फाइनल में जगह बना ली है. पुरुषों के सिंगल स्कल्स में बलराज पवार ने 6:52.84 के समय के साथ हीट में तीसरा स्थान हासिल किया. वहीं पुरुषों के डबल स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी 6:15.63 के समय के साथ दूसरे स्थान पर रही और फाइनल ए में पहुंची. लाइटवेट डबल स्कल्स में रोहित और उज्जवल कुमार सिंह ने चौथा स्थान हासिल करते हुए फाइनल में जगह बनाई. क्वाड्रपल स्कल्स में अरविंद सिंह, कुलविंदर सिंह, नवदीप सिंह और जकार खान की टीम ने फाइनल में जगह बनाई. अब भारतीय रोवर्स की नजरें पदक पर हैं. डबल स्कल्स का फाइनल कल सुबह खेला जाएगा.
1: फॉर इंडिया टू स्टे इन कैनो कॉम्पिटिशन दे हैड टू डू वेल टुडे. साक्षी मानवाल टेल्स अस हाउ द इंडियन कंटिंजेंट फेयर्ड.
0: India's men's kayak 4-500 meter team finished third in the heats and qualified for the final A. Arun Singh, Harshvardhan Singh, Shaktawat, Varinder Singh, Nucha Singh Oinam combined for a timing of 1:29.447 in the heats. Megha Pradeep finished fifth in the women's canoe single 200 meters heats with a timing of 49.675 and qualified for the semi-final. Sonia Devi and Parvati Geeta ended 6th in the women's kayak double 500 meter heats with 2:02.538. They have qualified for the semi-finals. In the men's kayak double 500 meter heats, Chempadel, Satya Prakash, Prasanna Kumar and Prohit Baroy finished on the 5th spot with the timing of 1:41.141 and qualified for the semi-finals. In women's canoe double 500 meter heats, Megha Pradeep and Neha Devi finished on the 5th spot with a timing of 2:08.713 and qualified for the semi-finals.
1: The Indian contingent is really trying their best to make an impact in Sepak Takraw. Let's hear what Vijeta Chaturvedi has for us in her report.
2: फुर्ती, संतुलन और किक के खेल सेपक टैक्रो में आज भारतीय अभियान में भारत के पुरुष टीम रेगु का मुकाबला फिलीपींस से हुआ. भारत के लिए ये मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण था. भारत ने खेल का आगाज शानदार अंदाज में किया. पहले मुकाबले में भारत ने फिलीपींस को 2-0 से शिकस्त दी. उसके बाद दूसरे मैच में भी भारत ने कड़ा मुकाबला करते हुए स्कोर 2-1 कर दिया. लेकिन तीसरे और निर्णायक रेगु में भारत को झटका लगा. फिलीपींस ने वापसी करते हुए तीसरा रेगु 2-0 से जीत लिया. इस तरह भारत ने मुकाबला तो 2-1 से जीत लिया, लेकिन अपने पहले मुकाबलों में भारत जापान और मलेशिया से हार के चलते सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाया. भारत का टीम रेगु अभियान यहीं समाप्त हो गया, लेकिन सेपक टैक्रो के अन्य इवेंट्स में अभी संभावनाएं बाकी हैं.
1: Well, you've heard all the special reports. So, where is India in the medal standing? Well, Vijeta Chaturvedi will just tell us.
2: भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीत लिए हैं. क्रिकेट में 1 स्वर्ण

0: Good evening, Delhi, and good evening, India. Yes, this is 102.6 megahertz Akashwani FM Rainbow India, and the program live right now is called Rainbow Classics. Time by the studio clock is 20 minutes past 10 p.m. It's a beautiful, lovely evening in September, and September is about to end, and we want the month to end with great music your way. Yes, so the program is all about classics from the 1950s and the 1960s from the Western world, and so beginning the show with the track called Lemon Tree, and it's sung by the
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, डीआरएम 864 किलो हर्ट्स, डीटीएच डीएआर पंजाब सेवा दा एक जलंधर केंद्र है, तो तुसी ट्यून कीता जलंधर केंद्र, और हुण वेला हो गया प्रोग्राम थोड़ी फरमाइश दा, थोड़ी फरमाइश प्रोग्राम लैके असी हाजिर हो गए हैं, और असी थोड़ियां फरमाइशां लवांगे व्हाट्सएप राही। साडा जिहड़ा व्हाट्सएप नंबर है 94655 36077, जी हां मैं एक बार दोबारा बोल देवां 94655 36077 ते सानू व्हाट्सएप ते मैसेज भेजो, और अपनियां फरमाइशां असी थोड़ियां फरमाइशां पूरियां करांगे। लो जी, इस दे नाल ही सानू साडे जिहड़े पहले स्रोता दा जिहड़ा मैसेज आ गया, पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा सानू मैसेज करदे ने, बहुत बहुत जी आयां नू आखदे आ। कहने कोई भी गीत लगा लो, जलालाबाद वैस्ट तो सानू सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी ते निमित आहूजा मैसेज कर रहे ने, जी आयां नू आखदे आ तुहाडा साडे इस प्रोग्राम दे विच। पिंड फरांसी जिला हिसार तो राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार

मैसेज है, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, पखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सूरभी शाह, अश्विनी शाह, मंगल बैन शाह, राजेंद्र जी शाह। इस तों बाद जिहड़ा मैसेज है तुहाडे जिहड़ी तुहाडी फरमाइश प्रोग्राम करन वाले नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत तहे दिलों धन्नवाद करदे आ। मैसेज करदे ने गोविंदगढ़ तों मांझी वाला श्री करनपुर राजस्थान तों राजू टुटीजा, गुड्डू, जीनू, मनु, शिव, सेठी, अमृत, बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा सा इस प्रोग्राम च जुड़न वास्ते। लो जी, इस दे नाल ही हुण वेला हो गया प्रोग्राम दे अगले गीत दा। जे तुसी भी साढ़े तक जुड़ना चाहुंदे हो इस प्रोग्राम दे विच, ते अपने फोन ते व्हाट्सएप राही सानू मैसेज कर सकते हो। जिहड़ा साडा व्हाट्सएप नंबर है 94-655-36-077। जी हाँ, साडा फोन नंबर है 94-655-36-077 ते व्हाट्सएप सानू मैसेज तुसी कर सकते हो, अपनी फरमाइश दस सकते हो और असी थोड़ी फरमाइश पूरी करांगे।

सौ पचवंजा 36070 मिला के साढ़े तक पहुँचो तो अपनी फरमाइश पूरी करवाओ। लो जी सानू जिहड़े मैसेज करते हैं मैसेज कर रहे हैं कहते हैं कि फिल्म फर्ज के मुहम्मद रफ़ी की आवाज़ में तुसी सुना दो सानू, तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत नाम ने करनी थी। जी हाँ बिल्कुल सुनावांगे। शास्त्री नगर बीड शहर तो मैसेज कर रहे ने किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल, विशाल सपकाल मैसेज कर रहे ने। बहुत ज़्यादा धन्यवाद है थोड़ा। जी आयान आखद साढ़े इस प्रोग्राम दे विच तुहाडी फरमाइश विच कहिंदे कोई भी अपना गीत अपने मन पसंदीदा गीत सुना दिओ। नर्मदा पार्क मंगल वेड़ा तो मैसेज करते हैं मास्टर अलिम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पले पटेल, बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा साढ़े इस प्रोग्राम जुड़न वास्ते। और हुण वेला हो गया साढ़े अगले गीत का जी, आनंद माणो जी इस गीत का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। इस तरह से के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर L69 परामर्शी मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ जयशंकर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील देशों पर पड़ रहा है, जबकि संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में विफल रहा है। L69 परामर्शी मंत्री स्तरीय बैठक एक उच्च स्तरीय राजनयिक बैठक है जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार पर विशेष रूप से चर्चा की जाती है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए के से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाले सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्म कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: युवाओं को सशक्त संस्कारवान आत्मनिर्भर शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान टेक्निक और कौशल से जो साथी आत्मविश्वास आत्म अनुशासन सकारात्मक सोच संवेदनशीलता और नैतिक मूल्य से भी परिपूर्ण।
0: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति

थैंक यू जी। सो बिल्कुल दोस्तों, एक नज़र असं अपने वट्सअप मैसेजेस के वाल भी मार रहे हैं, क्योंकि वट्सअप से भी दोस्तों के मैसेजेस जोड़े ने साढ़े तक पहुँचने शुरू हो गए हैं। सो सब तो पहला मैसेज जोड़ा साढ़े तक पहुँचा है जी, ये मैसेज आया है साढ़े को अनारकली बाजार जगराऊ तो, ये भेजन वाले ने जी सुनील पाठक जी, इन्होंने नाल कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, काव्य मल्होत्रा, भाई सुचा सिंह पाठक। और इस एक मैसेज साढ़े तक होर पहुँचा है जी, ये मैसेज आया है साढ़े को कुमार हेड़ा सहारनपुर तो, भेजा है सैयद मसरूर साहब ने, इन्हों जी शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया आफिया, तो इब्राहिम सदाम। तो एक मैसेज होर पहुँचा जी, ये मैसेज भी देख लेंगे कितों आया जी, ये मैसेज साढ़े तक आया है मजनू का टीला तो, भेजन वाले ने जी कमल बालूजा जी, इन्हों मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, कुड़िया माही मलिक, तो इशिता अरोड़ा। तो आओ जी फिर इन्होंने सारे दोस्तों की फरमाइश से सुनते हैं प्यारा जगीत अमरिंदर गिल साहब के अभ्यास के।

0: बिल्कुल जी, काले रंग का परां दा मेरे सजना ने आंदा की ते जगह रे सुरेंद्र कौर और नरेंद्र कौर जी दे वास्ते भी ते प्रोग्राम चल रहा जी। सो कार ते अगले दोस्त भी आ गए ने। हेलो, सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम सुकात विच।
1: ओके सर जी, और ठीक ठाक
0: जी? बहुत वधिया जी। कौन गल कर रहे हो ते कित्थों गल कर रहे हो?
1: जी मनजीत फायर।
0: हां जी मनजीत जी, की हाल चाल है जी थोड़े?
1: वधिया जी, तुसीं सुणाओ?
0: बस ठीक ठाक है जी।
1: वधिया हो गया
0: जी जी, अज जल्दी वारी लग गई, तुहाडे नंबर जल्दी लग गया अज। हां
1: जी हां जी,
0: चलो बहुत वधिया जी। ते केड़े गीत दी फरमाइश लेके आए हो अज?
1: हरविंदर करेवाल वाला, वधिया जी।
0: बिल्कुल ठीक है जी, तुहाडी फरमाइश मैं पूरी करन जा रहा। कोलकंदरी, बहुत बहुत शुक्रिया जी।
1: ओके सर,
0: थैंक यू जी, थैंक यू। सो बिल्कुल दोस्तों, एक नज़र असी वट्सअप मैसेज द्वारा भी मार लेनी, क्योंकि दोस्तों के मैसेजेस बहुत पहुँच रहे हैं तो आप किसी ने नाराज़ नहीं करना। सो अगला मैसेज देखते हैं जी कितों आया साढ़े ताई। अगला मैसेज पहुँचा है जी आदर्श नगर मलोट पंजाब तो, भेजे है राज शर्मा जी ने। इन्हों के नाल जी मीना शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा ते मैंडी शर्मा। तो इस एक मैसेज होर पहुँचा जी, ये देखते हैं कितों आया है जी। ये मैसेज आया साढ़े को पिंड नथाणा बठिंडा तो, भेजन वाले ने जी हरजिंदर शिंदा जी। इन्हों के नाल जसवीर जसी, सीता और गीता। तो एक मैसेज होर पहुँचा है जी, इस मैसेज में भी असं शामिल कर लेंगे। ये मैसेज भी साढ़े ताई बठिंडा तो आया है जी। ये भेजा है रविंदर सिंह जी ने। इन्हों के नाल ने जी गगनदीप कौर, जसमीन कौर, गुरलीन कौर, शिंदरपाल। तो आओ जी फिर इन्होंने सारे दोस्तों की फरमाइश से सुनते हैं अगला प्यारा जहा गीत।

0: बिल्कुल जी, टॉवर बढ़ जाओ, साडी टॉवर बढ़ जाओ। गीत एंजॉय कर रहे हो रविंदर ग्रेवाल साहब की आवाज़ से, इतने प्रोग्राम चल रहा है जी सौगात। मैं थोड़ा दोस्त अरुण इस वे थोड़े नाल बने हुए हैं, तो साडा नंबर है जी 0181 88 13074, यानी कि 0182813074। सो यही नंबर डायल करके अगले दोस्त भी आ गए हैं जी। हेलो,
1: हेलो सर जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम सौगात।
1: थैंक यू जी महाराज
0: जी। कौन जी? बहुत बहुत शुक्रिया जी थोड़ा भी कॉल करने के लिए। कौन गल कर रहे हो, कितों गल कर रहे हो? फरमाइश लेके पहुंचो जी। बिल्कुल ठीक है जी, मैं थोड़ी फरमाइश पूरी करने जा रहा हूं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी, थैंक यू।

0: बिल्कुल जी, चला जी। हाँ, मैं तो भी चली मिल के गीत जगह गुरनाम भुलर साहब की आवाज़ से बैठे प्रोग्राम चल रहे जी सौगात। तो मैं थोड़ा दोस्त रहूँ थोड़े नाल, अगले दोस्त भी आ गए ने जी। हैलो,
1: हेलो, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम सौगात विच।
1: थैंक यू सर।
0: जी कौन गल कर रहे हो, कितों गल कर रहे हो?
1: मैं सर जिला गुरदासपुर रेंज नवीपुर कॉलोनी नीटा मेंबर पंचायत।
0: हाँ जी नीटा जी, की हाल चाल?
1: हाँ ठीक है सर।
0: चलो वधिया, ठीक ही होने चाहिए। तो गर्मी के की हाल चाल है तुहाडे?
1: बहुत गर्मी है जी।
0: गर्मी हैगी? अच्छा
1: नहीं थोड़ी लगती है।
0: थोड़ी रहेगी हुण। ते केड़ा गीत सुनोगे?
1: मैं सर सबर को बता दूँ।
0: बिल्कुल ठीक है जी, थोड़ी फरमाइश में हूँ तो कुछ पलों के बाद पूरी करेंगे। कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया।
1: ओके सर।
0: ओके जी, ओके। सो बिल्कुल दोस्तों, एक नज़र असी वट्सअप मैसेज वाले मार लें कि दोस्तों के मैसेज आए हैं जी, आओ देखते हैं। मैसेज साढ़े तक पहुँचा है जी। शिवाजी चौंक कटनी तो भेजा है अनिल तामरकर जी ने। इन्हों के नाल जी अमर तामरकर, दिलीप वर्मा, राजू तामरकर, रजन रजक, विपिन गुप्ता, प्रकाश सोनी, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना मोना, हनी, यस और सौम्या। तो इस नाल एक मैसेज साढ़े तक होर पहुँचा है जी। मैसेज आया है साढ़े को सरहिंदी बाजार पटियाला तो भेजा है प्रेम कुमार रहेजा जी ने। इन्हों के नाल ने कांता राणी, चरण रहेजा, डैनी, नीतू, ज्योत, सजनी। तो आओ जी फिर इन्होंने सारे दोस्तों की फरमाइश से सुनते हैं अगला प्यारा जहा गीत।

0: सो बिल्कुल दोस्तों, तुम इंजॉय कर रहे जी प्रोग्राम स्वागत अपने दोस्तों के नाल। साडा नंबर है जी 0181 2813074, यानी कि 0181 2813074। सो यह नंबर डायल करके तुम भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो, तो कर सकते हो जी अपने पसंदीदा गीतों दी फरमाइशा ते नाल दे नाल करना वादा। सो बिल्कुल उस तरह जी एक दोस्त साडे नाल जुड़ गए ने जी। हेलो, सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम स्वागत विच। हाँ जी राजू जी, की हाल चाल ने जी थोड़े? चलो वधिया होने चाहिए थे। और चंडीगढ़ के की हाल ने?
1: मैं ठीक है सर जी, मौसम चेंज हो रहा है
0: सर। हाँ बिल्कुल, मौसम तो थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया। तो काम काज कैसे चल रहा है?
1: ठीक है जी, काम काज
0: चलो चलना चाहिए जी। तो किहड़े गीत की फरमाइश लेके पहुंचे हो? बिल्कुल ठीक है जी, मैं थोड़ी फरमाइश पूरी करने जा रहा हूँ। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद,
0: थैंक यू जी।

मेहडी मल्होत्रा जी ने, इन्हों नाने जी रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप ते कालका तो शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज ते बिट्टा बजाज। तो इस एक मैसेज होर पहुँचा है जी, ये मैसेज आया साढ़े को महस गेट नाभा तो भेजन वाले ने जी सोमदत्त जी, इन्हों के नाल ने जी कैरव ज्योति राणी ते गुरमनत। तो आओ जी फिर इन्होंने सारे दोस्तों की फरमाइश से सुनते हैं अगला प्यारा जहा गीत।

बिल्कुल जी, दस मेरे दिल पर आवे तू किड़े अर्श दा तारा। कितने जो कह रहे थे आशा जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ से बीते प्रोग्राम चल रहे जी सौगात, मैं थोड़ा दोस्त अरुण इस वे थोड़े नाल हाँ। सो साडा वट्सअप नंबर है जी 9465536077 यानी कि 9462536077 और इस नंबर के उपर लगातार दोस्तों दरमाइशा जीडिया साढ़े तक पहुँच रही ने जी और मैसेजेस जोड़े लगातार आ रहे हैं। सो अगला मैसेज साढ़े तक पहुँचा है जी, गांव फ्रांसी जिला हिसार तो भेजे है राजकुमार डूडी जी ने, इन्हों के नाल ने प्रमोद कुमार डूडी तो पुष्पेंद्र कुमार डूडी। तो आओ जी फिर इन्हों की फरमाइश तो सुनते हैं अगला प्यारा जहा गीत सतेंद्र सरताज साहब की आवाज़ के।

0: बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम स्वागत है जी।
1: मेहरबानी जी
0: जी, कौन गल कर रहे हो ते कितों गल कर रहे हो?
1: भूषण कटारिया मलोट तो बोलदा जी।
0: हाँ जी कटारिया साहब, की हाल चाल है जी थोड़े?
1: बड़े वधिया ने हाल जी।
0: चलो वधिया होने चाहिए थे, मौसम च फर्क पिया नहीं वैसे खास, पर मलोट दे की हाल चाल है?
1: मलोट गर्मी थोड़ा 19 का फर्क है, ज्यादा बिल्कुल गर्मी हैगी है।
0: शाम दे वेले थोड़ा जिहा ठंडा होने लग गया मौसम ना।
1: हाँ मामूली फर्क पै गया।
0: बिल्कुल। सो होर सुनाओ सर, हाल चाल, सेहत कि ठीक ने जी? सब
1: सेहत ठीक ने, काम कर है नहीं गा, हाल वधिया ने।
0: काम काज तो इतने जी इस वे, बाकी हूँ देखो त्योहारों का सीजन आ रहा, तो काम कितने ना कि हौली हौली शुरू हो जाएंगे। सो
1: शराब शुरू, शराब तो वैसे ही नहीं कम निकलता।
0: ये भी गल सही है जी, बिल्कुल सही गल।
1: परसों चौथे शराब शुरू होने,
0: बिल्कुल सर
1: ये फिक्र लग गया वैसे को।
0: चलो कोई नहीं जी, रब दे हाथ च रोटी तो चली जानी अपनी।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, कोई चक्कर नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, केड़ा गीत सुना गया जी?
1: जैसमीन अख्तर दा ते सब्बा दा करके फलाई आवां जी।
0: बिल्कुल ठीक है जी, थोड़ी फरमाइश ते मैं गीत प्ले करने जा रहा हूँ, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: मेहरबानी जी,
0: थैंक यू जी, थैंक यू।

अपने सतगुर के बलिहारे, आगे सुख पाछे सुख सहजा, कर आनंद हमारे। गुरबाणी विच सच्चे गुरु तो वार ने बलिहार ने होण दा शुभ संदेश प्राप्त हुंदा है। सच्चा गुरु या सतगुरु उही है जिसनू सतपुरख या अकाल

0: बल बल जाओ श्याम सुंदर काओ, अकत कथा जाकी बात सुनी। इस शब्द गायन की तसी पाई जुझार सिंह ते उनादे रागी जत्थे ने। वड़े किया वड़े आईया, किच कहना कहन ना जाए, सो करता कादर करीम दे जिया रिजक संभाहे। इस महावाक अनुसार इस विच कोई संदेह नहीं कि प्रभु दी उपमा बयान तो परे है, पर इस तो ए पाव नहीं कि उसकी उस्तत नहीं करनी चाहिदी, बल्कि उसकी महिमा या वड्याई करनी ता लाजमी है। गुरबाणी प्रभु दा गुण गायन ही ता है, ता ते फिर बेनती है कि हे प्रभु जी, मेरी हंकार वाली बुद्ध दूर करो, मेरे मन विच निम्रता दा वासा करन वास्ते अपनी भक्ति दी दात प्रदान करो, ताकि प्रभु मिलाप संभव हो सके। गुरबाणी रब्बी सिफत सलाह करन दा सुंदर उपदेश बख्शिश करदी है। फरमान है, हर हर हर गुण गावो, करो कृपा गोपाल गोबिंदे, अपना नाम जपावो। सुनदिया मनप्रीत सिंह होरां पासों ए वार्ता।
1: हर हर हर गुण गावो, ए उपदेश आत्मक बेनती दे भाव वाला फरमान साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी की रचना है, जो केदारा राग विच शोभनीक है। ए इलाही संदेश पावन शब्द की आरंभ पंक्ति वाला पहला भाग है। संपूर्ण पंक्ति है, हर हर हर गुण गावो, करो कृपा गोपाल गोबिंदे, अपना नाम जपावो। विचार वाली पंक्ति केवल एक फरमान ही नहीं, एक आत्मक आदेश भी है, जो मनुखता नूं सच्चे मार्ग ते तुरन दी जुगत दसदा है अते उत्तम जीवन मार्ग दर्शाउंदा है। ये पंक्ति दे सधारण अर्थ ए ने, मनुख नूं परमात्मा दे गुणा दा गायन करना चाहिदा है, उस प्रभु दी सिफत सलाह करनी चाहिदी है, उसका नाम सदा चेते रखना चाहिदा है अते सिमरना चाहिदा है। पर सब कुछ करन दे लई प्रभु कृपा दी लोड़ हुंदी है, पर ए भी यकीनी है कि उस दी वड्याई करन दी लोचा मन विच होवे तां जीव कृपा दा पात्र बन ही जांदा है, उस दे जीवन विच वड्डी तब्दीली आ जांदी है, आत्मक शांति प्राप्त हो जांदी है। अजोके समय विच मनुख बहुत दौड़ भज वाली जिंदगी जी रहा है, दौलत दी दौड़, उच्ची पदवी दी दौड़, मान सन्मान आदि बहुत सारिया इच्छावां दी पूर्ति वास्ते इधर उधर भज रहा है। मुकदी गल ए भटकना दे विचों बहुत बेचैन है, कारण एक ही है, उसका सफर उसकी यात्रा बाहर मुखी है, अंतरमुखी नहीं है। असल खुशी ते सुख मन दे अंदर ही वसिया होया है, पर इस दे लई अपने मूल नूं पछानन दी लोड़ हुंदी है। राग आसा विच साहिब श्री गुरु अमरदास जी बड़ी चंगी तरह समझा गए ने, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। जदों मनुख अपने अंदर मन विच झाती मारदा है, प्रभु नूं सब कुछ जानदे होए उस दे गुणा दा गायन करदा है, तां मन कुदरती तौर ते शांत हो जांदा है, क्योंकि मन दा मौलिक रूप चंचलता वाला है। ये मन बेलगाम है अते दिशाहीन है, पर जदों इस मन नूं गुरु जोत दा पता लगदा है तां ये मन वाहिगुरु दा जाप करदा करदा परम ईश्वर नाल जुड़ जांदा है, ते सहजता आप मुहारे आ जांदी है, क्योंकि प्रभु दा नाम अमृत है, जिस दी प्राप्ति सतपुरशां पासों हुंदी है। अमृत नाम निधान है, मिल पीवो भाई, जित सिमरत सुख पाईए, सब तिखा बुझाई। ए सच है, जिन्हां ने नाम नाल प्रीत जोड़ी ओ हर समय चढ़दी कला विच ही रहे। हर हर हर गुण गावो फुरमान सानू ए भी जांच सिखाउंदा है कि मुख राही उस्तत करन तो इलावा शुभ करमन दी राह भी अपनाउणी चाहीदी है। जेकर असी दया वाली बिरती रखिए, सच दे धारनी होइए, निम्रता नाल जीवन बतीत करिए, तां ही असी प्रभु दे गुण गायन कर सकते हाँ। यही सरमखंड है, यही कालना है। गुरबाणी आदेश है, जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। अज दे अशांत युग विच ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਨਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਰੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਤਪੁਰਖ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਛੁ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹੀ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੇ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸੁਹੇਲਾ ਜੀਓ। ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਧੀ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਸੰਗਤ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ

प्रभु की जय। कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे। इस शब्द गायन की तसी पाई जसबीर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

हर कबीराय नाथ हो तुम ही खेवई खेवैया। बहुरी दया को डांड घाट पर आवे नैया। ओ

तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच पाछा नानक सच तहन सच जो मर जमे सो कच निकच महला।

किया सगल जहान सेवक सेवा करम चढ़ाओ पिनी रहन जिन्ना मन चाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी करम लंघाए पार कोलू चरखा चक

मुसलमाना सिर्फ शरीयत पढ़ पढ़ करे बेचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखन को दीदार हिंदू सलाही सालाहन दर्शन रूप अपार तीर्थना वे अर्जा पूजा करवास बेकार जोगी सुनते आवन जेते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया काकार सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जारा तै कुड़ियारा खारा बावे कार एक होदा खाए चले अथाऊ तिना पीकाई कार जल थल जिया पुरिया लोहा करा कर ओए जे आखे सो तुहे जाने तिना पी तेरी सार नानक भगता भुख सलाण सच नाम आधार सदा आनंद रह।

सच काल कूड़ वर्त्या काल कालक बेताल बियों बीच बत ले गए आग की उगवैदा जेक होए तो उगवै रुति हो रुत होए नानक पाहे बारा कोरे रंग ना सोए पै बिच कुंभ चढ़ाई है सरम पातन होए नानक भगती जे रपै कूड़े सोए ना कोए।

दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम ना हो तू करता करना मैं ना जाओ करी ना हो बलहारी कुदरत वसे आ तेरा अंत ना जाए।

शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है, खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं जे कौ जाने पहेव, नानक ताता दास है, सोई निरंजन देव महला दूजा।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

आत्म परगाथ का वेद बाणी सहत बिरंत जा।

देखत दारस पाटक भ्रम भाजत, दुख पर हर सुख सहज बिगासे, सेवक सिख सदा अत लुभत, अल

ਰੱਖਿਆ ਗਿਣ ਕਾ ਪਰਪੁਰ ਤਹਿ ਕਾਜ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਪਰਸਨ ਕਲਯੁਗ।

ਆਖਿਆ ਗਨਕਾ ਭਰਤਪੁਰ ਤਹਿਕਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਪਰਸਨ ਕਲਯੁਗ।

वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोप कहत मज सोद जिसे दही पात खाए जियो देख रूप अत अनूप मोह महा मग पई किनकनी शब्द चनतकार खेल पाए जियो काल कलम हुकम हाथ कह कौन मेट सके ईश्वर ज्ञान ध्यान तरत ही है चाहे जियो सत साच श्रीनिवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।

जिन शब्द कमाए परम पद पायो, सेवा करत ना छोड़ो पास, ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारो, दुख दरिद्र अंधियार को नाश, कब कीरत जो संत चरण मुड़ लागे, तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास, जिव अंगद अंग संग नानक गोर, तिव गोर आ

भगत प्रेम लेवलाई ताते अंगद अंग संग पयो सायर तिन शब्द।

प्रकाश गौर अंगद दियो निधान अकथ कथा ज्ञान पंचभूत वास किने जमत ना त्रास गौर अमर गुरु श्री सत काल जुग राखी पात अघान देखत गात।

ਅਗਮੇ ਅਨੰਤ ਅਨਾਦੇ ਆਦਿ ਜਿਸ ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਸਿਵ ਬਰੰਚ ਤਰ ਧਿਆਨ ਨਿਤੈ ਜਿਸ

0: बस राखो सरनाई।
1: सो कहो टल गुर सेविए एहन सहज सुभाय, दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय। हो सिफत

जप हर हर हर उर तारी हर हर हर औखद जग पूर जप हर हर हौमै मारी।

जुज मैं जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात कोपी लै आया पिंदरा बन मैं रंग किया कल मैं बेद अथर बन हुआ।

सिमल रुख सरायरा अत धीरक आत्मच ओए जियावे आसकर जाय निरासे कित फल फके फुल बक बके कामना आवे पत मिठत नीवी नान।